0: आ चुका हूं मैं लंच बॉक्स लेके, लिटरली लंच बॉक्स लेके। पास्ता बनाया आज मेरे घर पे, खुशबू ने पास्ता बनाया, वो खाऊंगा मैं। हाहा, पर ये साहब बने रहिए, मेरा नाम केतन है, केतन कुमावत, एंड मैं हूं अभी से लेके तीन बजे तक। केरला नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बुला आपका दिल से स्वागत करते हैं हम के इस सेगमेंट में, हम के इस शो में। हम 104.2 एफएम के जरिए, 104.2 एफएम के जरिए आप सुनते हैं मुझे, रोआ ऐप के जरिए भी सुनते हैं, और कुछ सिटीज में 87.7 के जरिए भी सुनते हैं। पर यस, आप बने रहिए, बहुत सारी बातें करनी है। होम सिक रेमेडीज के लिए कुछ कॉन्टेंट आप भेज सकते हैं मुझे यहाँ पे, इफ यू वॉन्ट मी टू रीड आउट सम नाइस टेक्स्ट, कोई भी हो जो अपनी बात यहाँ पे रखना चाहे तो फील फ्री, आप कब डेफिनेटली कर सकते हैं। उसके थ्रू हो सकता है कुछ ऐसा टॉपिक आ जाए जो आपके साथ मैं शेयर करूँ। बट यस, आई हैव सो मेनी थिंग्स टू शेयर विथ यू। आप बस कहीं मत जाइएगा, आप बस ट्यून इन रहिए, एंजॉय करिए मेरा शो। शुरुआत करेंगे, स्पीकर फट जाए, नहीं एक्चुअली नहीं फटेगा, बिकॉज गाना जो है बहुत ही दमदार, हार्डी संधु और अबूजर अदिति सिंह की कोलैबोरेशन जुगलबंदी के साथ ये गाना बना है, स्पीकर फट जाए। बहुत ही दमदार और एनर्जेटिक गाना है जो शुरुआत करेंगे मेरे शो की। अब मेरे शो एक पावरफुल तो होनी चाहिए ना, शुरुआत एक पावरफुल वाली होनी चाहिए, बट उसके बाद एक रोमांटिक सा डिस्को वाला गाना मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए प्ले करने के लिए। बट यस, क्या नमस्ते, बने रहिए आज के दिन अंटिल थ्री।
1: बचाओ क्या,

Welcome back. You are listening to Lunchbox Homesick Remedies के segment में आपका स्वागत है. आप मुझे call कर सकते हैं, share कर सकते हैं regarding anything you would like to homesick remedies के लिए. कौन सी ऐसी चीज है जो आप बहुत ज़्यादा miss करते हैं यहाँ पे? I know Auckland में बहुत options available हैं, but still there is one thing which you definitely feel that यार ये तो cover up नहीं कर सकता. Even though there are like many options around, but still you feel like नहीं यार ये उसमें वो मज़ा नहीं है. So yes, आप मेरे साथ share कर सकते हैं 5599 पे. एक message आया, वो पढ़ लेते हैं. राहुल का, वो कहते हैं, Kia ora Ketan, looking outside the window today in Auckland, it's just endless rain, grey skies and freezing cold wind. Ooh, कहाँ पे हो सर जी आप? मैं तो आया तो वार्म था यार पापड़ोटे में, तो मतलब वार्म इन द सेंस एक्चुअली आज थोड़ा वार्म लग रहा है मुझे. राइट, द होल फैमिली वुड गैदर ऑन द पॉर्च ईटिंग हॉट दाल पूरी एंड चैटिंग फॉर आवर्स. अरे नाइस. माय फ्लैटमेट फ्रॉम इंडिया वाज टेलिंग मी दैट रेनी डेज बैक होम मेंट हिज मॉम मेकिंग अदरक चाय एंड हॉट पकौड़ास फॉर द एंटायर हाउस. Sitting here in my room with a heater that barely helps. Looking at the grey sky, I feel super isolated and homesick. How do we battle this gloomy weather homesickness in New Zealand? यार अगर आप आज आपकी छुट्टी है तो मुझे तो लगता है कि काफी बढ़िया इसमें जवाब मिल सकता है. ये बात एक्चुअली सुनकर है ना, ऑकलैंड की आधी से ज़्यादा देसी आबादी जो है वो एक साथ हमारे भारी होगी. वेल यस, ये जो ठंड है बाहर, उसका जो काला स्काई और ये जो ग्रे लगातार जो है, जो कभी आती है बारिश कभी नहीं आती है, ये मौसम ही ऐसा है जो हमें ज़बरदस्ती नॉस्टैल्जिक बना देता है. मतलब यहाँ आके मैंने ये चीज़ तो देखो फील की है. इंडिया में क्या होता है कि बारिश होती तो वी ऑल यूज़ टू वेट कि भाई कब बारिश का मौसम आएगा, कब सीज़न आएगा, और उसके बाद घर पे पकौड़े बनेंगे उस स्पेशल मोमेंट पे. और सबसे पहले इंडिया में एक चीज़ हमें बचपन से कहा जाता था दैट पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए. आई डोंट नो मतलब क्या लॉजिक क्या है, बट जो मुझे बताया गया वो ये कि पहली बारिश वो कहते हैं ना कि कोई नई चीज़ आती तो उसको पहले चढ़ावा देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं. तो ये खैर मेरे नाना नानी जी दादी जी यही मुझे बता देते कि पहली बारिश एसिड से भरी होती है, ऐसे ऐसी बातें करते थे. तो आई डोंट नो व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड इट कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, बट हम बच्चे कभी अपने आप को रोक नहीं पाते थे और हम सचमुच कूद ही जाते थे. और इंडिया की जो छत भी हुआ करती थी उसमें दैट प्रॉपर डोली बनी हुई होती थी सो दैट द वाटर डजंट गो द अदर साइड. इस तरह से सेफ्टी पर्पज के लिए होता था. और हम सारे जो होल होते थे जिसके थ्रू ड्रेनेज सिस्टम पूरा बैलेंस रहता, हम उसको ब्लॉक कर देते थे, कुछ कपड़े डाल देते थे, कुछ ये करते, तो

0: क्या होता है, बारिश का पानी इतना जम जाता था और एक तरह से हमारे लिए लिटरली 4-5 इंच का स्विमिंग पूल बन जाता था और वहीं पे हम फिसला करते थे। सो यस, वो चीज़ का मज़ा तो आता था वहाँ पे। एंड सेम टाइम पकौड़े बनते थे, देन यू नो फ्राइज बनती थी, चाय बनती थी, इतने तरह तरह के व्यंजन। यहाँ आने के बाद ये चीज़ मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ कि बारिश का जो वो मज़ा है वो थोड़ा सा मिस आउट होता है। दैट आई ऑनेस्टली मिस अलॉट, स्पेशली जो पहली बारिश या दूसरी बारिश जो भी होती है उसमें जो स्मेल आती है वो अलग ही सुगंध होती है यार। मतलब मज़ा आ जाता था ना, स्पेशली अगर मैं जब नानी के यहाँ होता तो वहाँ बारिश आती थी फिर तो, क्योंकि विलेज है। अब तो खैर वो थोड़ा बढ़िया हो गया, बाकी पहले तो रोड भी कच्ची कच्ची हुआ करती थी। तो बचपन का मेरे को टाइम याद है जब बारिश आती थी, पूरा बारिश की वजह से धूल भी थोड़ी बिखरती जब तक पूरा वेट नहीं हो जाए, और उसके बाद जो स्मेल आती थी दैट वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। वो चीज़ यहाँ डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि वो जो मज़ा है बारिश का वो आई पर्सनली फील इज नो मोर लाइक इन ऑकलैंड। क्योंकि यहाँ पे हर टाइम ही बारिश आती है, लाइक यू नो ऑलमोस्ट वंस अ वीक और आती रहती है। वैसे आपका क्या ख्याल है, आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं 5599 पे। वैसे यस, आपका जवाब मेरे रह गया। ठंड हो या फिर ग्लूमी हो, यू नो आगे सरने करना सोल्यूशन नहीं है। अपना जो वाइब है उसको घर के अंदर मत रखिए, थोड़ा आज आप बाहर घूमने जाइए अपनी फैमिली के साथ, एज लॉन्ग एज बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश हो रही तो आप इन हाउस चाहे किसी मॉल में घूमने चले जाओ, कोई मूवी देख लो। अगर आपके बच्चे आर यू नो गुड इनफ टू वॉच जो आपकी मन पसंदीदा मूवी हो वो आप देखने जाइए, और थोड़ा सा अपने आप को आउटस्पोक करिए, और आपका जो इंडियन फ्रेंड है उसे भी लेके जाइए, शायद हो सकता है चलते चलते आपके साथ कुछ बातें शेयर हो जाए। चलिए फ़ोन उठा लेते हैं, फ़ोन भी आ गया है। हेलो,
1: हाय
0: हाय सपना जी।
1: नहीं मैं, मेरी बेटी है केतन जी।
0: अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटी का?
1: रोशनी।
0: हाय रोशनी।
1: तो आपने एसिडिक रेन के बारे में, लाइक एसिडिक रेन नहीं बट पहली बारिश के बारे में बोला, तो मुझे एक मोमेंट याद आया कि आई वाज स्टडीइंग अबाउट वेदर इन साइंस।
0: हाँ,
1: एंड मेरे टीचर ने मुझे ये चीज बताई कि पहली बारिश में नहीं रहना चाहिए।
0: राइट,
1: मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि एसिडिक रेन होती है एंड ऐसा ऐसा होता है। मम्मा बोलती है कि
0: अच्छा, मतलब ये सही में
2: तो हाँ ऐसा बोले। अब एक्चुअली हमारे कल्चर में तो है कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको पहली बारिश में थोड़ा पानी कुनकुना करके नहलाते हैं जरूर, तो वो आई मीन दैट इंक्रीजेस द इम्यूनिटी फॉर द किड। ऐसा अब वो सबका अपना अपना है ना, बट साइंटिफिकली ये है कि एसिडिक होती है फर्स्ट रेन।
0: मैं एक्चुअली तुक्का मारा, मैं वो सिर्फ नानी जी और दादी वो पढ़ी लिखे नहीं है, तो मैं तो तुक्का मारा था कि क्या पता वो क्या बोल रहे थे। अरे नो, कि ये एक्चुअली लॉजिक भी हो सकता
2: है। नहीं, जो वो लोग बोलते थे तो उसमें लॉजिक होता था, वो तब हमको लगता था कि अंधविश्वास है, बट नाउ एवरीथिंग इज कमिंग ट्रू इफ इट हैज टू बी सीन साइंटिफिकली।
0: यस, बट डू यू मिस इंडियन, या जहां से भी आप हैं, डू यू मिस द रेन वहाँ के कंपेयर में? यहाँ पे तो हमेशा ही होती रहती है,
2: तो हाँ तो होती ही नहीं थी दुबई में, तो होती ही नहीं थी।
0: अच्छा, आप दुबई से?
2: तो
0: नाइस,
2: यहाँ पर तो हाँ तो ऐसा, बट आई मिस जब एमपी में थी तब, हाँ आई मिस द ट्रेन। और यहाँ तो कभी भी हो जाती है, तो यहाँ कुछ पहली दूसरी तीसरी नहीं है, यहाँ हर दूसरे दिन ही बारिश,
0: हर दूसरे दिन। आज भी हो जाएगी क्या पता।
2: हाँ क्या पता, सही है। और अब वो जैसे जैसे एज यू ग्रो अप तो अडल्टिंग इज की कपड़े नहीं सूख रहे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, तो वो टेंशन रहता है।
0: ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कपड़े हार्डली बाहर सूखते हैं। थैंक यू सपना जी, थैंक यू रोशनी, यू हैव अ वंडरफुल डे, एंजॉय दिस न्यूजीलैंड वाली बारिश बाहर।
2: थैंक यू, बाय बाय। लंच बॉक्स
3: विद केतन, मुझे पसंद है लड़का। कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग लंच बॉक्स। थोड़ी जगह अरिजीत सिंह की आवाज में ये बात आई है। पहले एक चीज मैंने नोटिस की है, कल ही की बात है, जब आवर अपन टू का जब गाना आया था, लोगों को कितना कंसर्न होता है दूसरों की लाइफ में। ये कोई अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात नहीं हो रही है, लेकिन एक दूसरी चीज भी हुई थी कि अरिजीत सिंह का एक गाना रिलीज हुआ अभी आवर अपन टू का। अरिजीत सिंह खुद से ज्यादा लोगों को उनकी चिंता है कि भाई उसने तो रिटायरमेंट ले लिया है तो वो फिर से गाना क्यों गा रहा है, वो दोगलापन क्यों है, ये सारे सवाल आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे स्पार्क हो रहे हैं। आप टाइम जब भी मिले आपको तो आवर अपन टू का जब गाना रिलीज हुआ तब उसके कमेंट सेक्शन में जाना और चेकआउट करना। मतलब ऑनेस्टली दिस इज दैट वाज हाइट कि पहली बात तो ये, रिटायरमेंट लेना उनका अपना पर्सनल चॉइस है, वो चाहे नहीं चाहे वो उनकी पर्सनल चॉइस है। और अगर रिटायरमेंट से अगर वापस भी आते, मान लो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में किया इन्होंने, तो भी ये उनकी पर्सनल चॉइस है। हम कोई नहीं होते हैं उनको ये बताने वाले कि भाई तुमने तो रिटायरमेंट ले ली अब क्यों आ गए तुम, ये सब वो सब। भाई उसने इतने सालों से सर्व किया है, और इट डजंट रियली मैटर अबाउट अरिजीत सिंह ओनली, इट मैटर्स अबाउट अदर पीपल एज वेल, जिनका इतना बड़ा नाम ना हो बट वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, एज लॉन्ग एज सामने वाले को दिक्कत ना हो रही। तो ऑनेस्टली यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एंड यस, हो सकता है ये गाना पहले ही रिकॉर्ड कर दिया हो, यू नेवर नो राइट, बट यस माय पॉइंट इज ये उनका पर्सनल चॉइस है वेदर दे ही वांट टू कंटिन्यू द रिटायरमेंट। अगर उन्होंने रिटायरमेंट के बाद गाना रिकॉर्ड किया ये भी उनकी पर्सनल चॉइस है। बट एनीवेज, हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। अभी आज के दिन 1987 की बात है जब न्यूजीलैंड में पहली बार लोटो टिकट सेल के लिए लॉन्च हुई। वैसे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कितने लोग लॉटो खेलते हैं और कितना पैसा अभी तक आप जीत चुके हैं, जस्ट जनरल क्वेश्चन, लाइक नथिंग पर्सनल, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। मेरा फ्रेंड अभी रिसेंटली जीता है एंड ही वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि फाइनली मैं जीत चुका हूँ, एंड आई वॉज लाइक वाह ब्रो क्या बात है। एंड देन उसने बताया अमाउंट, तो उसको आई थिंक समवेयर अराउंड $500 to $600 इतना उसके बीच में कुछ मिला है। सो वो बता रहा था कि बहुत बड़ी बात है इतना जीतना। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा सही है, नाइस। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा अपने लिसनर से कि अगर आप खेलते हैं तो आपने कितना जीता है। बट यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, बहुत ही एक्साइटमेंट यू नो लोगों में आ गई थी जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था। न्यूजीलैंड में पहली बार लॉटो टिकट्स जो है वो सबके सामने आए थे, काफ़ी लंबी लाइन भी खड़ी हो गई थी टिकट खरीदने के लिए। और पहला ड्रॉ जो था वो करीबन सबसे ज़्यादा उसका टॉप प्राइस था $360,000 $360,000। समय के साथ लूटो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया और इसके प्रॉफिट्स को स्पोर्ट्स, आर्ट्स और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए भी यूज करने लग गए। वेल गेस, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज के बताइए।
1: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर, पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। हम

0: dynamic
1: position. Liverpool investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: डेफिनेटली पढ़ेंगे, बट यस अभी के लिए आपको मैं बता देता हूँ, जल्दी से जाइए इस वेबसाइट पे dryTickets.com पर, बिकॉज वहाँ पे जाएंगे तो आप एक अमेजिंग सा शो जो इस वीकेंड होने वाला है उसके टिकट आप खरीद सकते हैं. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन की ओर से ये अमेजिंग सा शो होने जा रहा है. द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं यहाँ पे ऑकलैंड में एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक लेके, एक बहुत ही बढ़िया टाइमलेस हिट्स जहाँ पे एक से बढ़कर एक कवाली होंगी, एक से बढ़कर एक सूफियाना अंदाज होगा और एक से बढ़कर एक आपके मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स सॉन्ग बाय नन अदर देन राहत फतेह अली खान हिमसेल्फ. सो यस, वो आ रहे हैं यहाँ पे परफॉर्म करने. वो सारे गाने, ऑलमोस्ट सारे गाने, ऑलमोस्ट मोस्ट पॉपुलर गाने आप सभी के सामने गाएंगे अलॉन्ग विथ उनके खुद के बेटे. द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में ये होने वाला है 25 जुलाई को ये शो होने जा रहा है. तो यस, अगर आप टिकट ले चुके हैं तो जस्ट गेट रेडी फॉर दिस अमेजिंग नाइट, या फिर अगर नहीं लिए तो जल्दी से जाइए बिकॉज शो कभी भी फुल हो सकता है. dryTickets.com पर जाके आप टिकट ले सकते हैं.
3: लंच बॉक्स विद केतन.
4: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
3: इसके पीछे
5: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
6: Fiji is on sale now at Flight Center. Take the family to Plantation Island with 7 nights plus flights from $1,499 per person. Book in store today. Departs Auckland, fees, T's and C's apply. Flight Center, your center for travel.
7: Home loan ke saath thoda cash bhi pana chahte hain? Naya home loan lena ho ya maujooda loan ka review karwana ho? Squirrel aapko dilayega ek aisi zabardast deal ki aapki ho jayegi balle balle. Janiye power of the squirrel effect. Squirrel.co.nz.
8: Winger Motors Manara.

0: चेरी सुपर हाइब्रिड सिस्टम रेंज कम फ्यूल बिना फ्लेक्सिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज किए विजिट विंगर मोटर्स वेस्ट ऑकलैंड ग्रीन लेन मानुको और पोकेकोई या winger.co.nz ऑफर 31 जुलाई तक टीज एंड सीज अप्लाई
1: Hi, and welcome to the 80s. We love acid wash jeans and overpowering aftershave as much as the next guy. But we also have some out-of-date notions about HIV you don't want to keep. Fact is, HIV can't be passed on through everyday contact, like shared food, hugging, or kissing. And with your modern-day treatment, people with HIV can stay well and have zero chance of passing it on to partners. Out of date on HIV? Get the facts. At healthnz.govt.nz/HIV.
2: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number यार.
3: क्यों? क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया. No response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी. दैट्स 0800 564 424.
4: Lunchbox with Ketan.
5: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी.
6: चटनी शॉट्स.
7: चटनी शॉट्स के सेगमेंट में स्वागत है. वेल, चलिए अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं. ऑकलैंड पुलिस एक 20 साल की लड़की वॉल्वेरी डेंग को ढूंढ रही है जो पिछले हफ्ते से लापता है. पुलिस और उसके परिवार को उनकी सेफ्टी को लेकर काफ़ी चिंता है. वॉल्वेरी को आखिरी बार 17 जुलाई सुबह लगभग करीबन 8:20 पे देखा गया था स्वेंसन के बर्ड वुड रोड पर चलते हुए. और पुलिस ने पब्लिक से अपील की है कि अगर किसी ने भी वॉल्वेरी को देखा हो या उसके बारे में कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं. छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकती है. जस्ट लेट यू नो, उनका लास्ट जो अटायर था वो मेरे ख्याल से ग्रे कलर का हुडी टाइप लुक लाइक है. अगर आपको कुछ दिखता है या फिर कुछ भी जानकारी होती है तो आप प्लीज़ पुलिस को बताइए.
4: दिल से

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हालचाल 16 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 8 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 10% चांस है बारिश के, लेकिन 5:29 पे होगा आज का सूर्यास्त।
0: लंच बॉक्स विद केतन।
2: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
0: लंच के मंच पे।
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. मेरा नाम केतन है, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के खूबसूरत शो में। Lunchbox show it is. Well, yes, बने रहिए, because आज इस आर में भी आपको काफी अपडेट देने हैं। वैसे आज और भी बढ़िया चीज हो रही है, एंड सबसे पहले गाना जो है वो फ्रेंड जोन। वेल, फ्रेंड जोन जो शब्द है इतना ज्यादा पॉपुलर है यंगस्टर में, अभी तो खैर फ्रेंड जोन हो नहीं सकता, बट ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज काफ़ी चीज़ें यू नो, जैसे स्कूल्स में होते हैं या फिर कॉलेज में होते हैं, एक चीज़ होती है जब आप हमेशा अप्रोच करते हो कि यार वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या फिर वो मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, बट एक चीज़ से आप हमेशा डर, एक नहीं एक्चुअली दो, पहले के टाइम होता था भैया ये भैया बहन जो भी है, बट आज के टाइम पर मुझे लगता है फ्रेंड जोन ज़्यादा चर्चा में है। मैं एक्चुअली जेन जी वालों से पूछना चाहूँगा कि ऐसा आज भी चलता है क्या। बढ़िया सभी नहीं, ये गाना पहले चलाएंगे, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा, आप मुझे कॉल करिए और बताना मुझे कि आजकल का माहौल क्या चल रहा है, लाइक यू नो एग्जैक्टली जेन जी वाले आजकल क्या ट्रेंडिंग पे है जिससे आपको डर लगता है उस जोन में ना घुसने का। सो यस, थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गाना।
0: बचाओ क्या

0: बताएं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस आए हैं, जब तक फोन नहीं आता किसी का वो मैं बताता हूँ। कुछ कह सकते हैं लाइक यू नो एनीथिंग यू फील लाइक इस बारे में शेयर करना चाहते हैं। डजेंट मैटर कि आप जेन जी वाले हो, अगर आप उससे पहले वाले भी हो, मिलेनियन या फिर ऑब्वियसली बेटा तो हो नहीं सकता। बेटा तो अभी आजकल मेरे ख्याल से 25 के बाद ही शुरू हुआ है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट मिलेनियन वाले भी हों अगर तो वो भी शेयर कर सकते हैं, उससे पहले वाले हों तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बट यस, मुझे कॉल करिए 0800-004-866 पे और शेयर करिए आपके थॉट्स। मैसेज आया है, इन्होंने डेफिनेटली नाम नहीं लिखा अपना। कहते हैं हॉलीडे गोल फाइनली टेल, अच्छा सॉरी, हॉलीडे गोल इनका था टू फाइनली टेल माय क्रश हाउ आई फील। रियलिटी शी इंट्रोड्यूस्ड मी एज माय बेस्ट फ्रेंड। ओ आगे की कहानी ऐसे ही रही या बड़ी आगे? हाँ, जो जिसने भी मुझे मैसेज भेजा है, डू लेट मी नो, बताइए। प्रिया कहती है, वाओ, वेंट ऑन अ डेट, रियलिटी एंडेड अप हेल्पिंग माय क्रश चूज अ गिफ्ट फॉर समवन एल्स। ओ नो नो नो नो नो नो, ये बहुत ही बड़ा झटका होता है। और यहाँ पे तो फिर वो गाने भी चलते हैं। एक गाना है ना, कौन सा था, एक दिल टूटने वाला, मैं जब छोटा था, वो नई मूवी आई थी ओम शांति ओम, उसका एक गाना था छंद से जो टूटे कोई सपना। उस टाइम अरिजीत का इतना वो था नहीं, तो हम उसी गाने को सुन के इतना रोते थे कि भाई मेरा भी दिल टूट गया, ये टूट गया, छंद से जो टूटे कोई सपना, ये वाला गाना हम सुनते रहे। और फिर मुझे रियलाइज़ होता था यार मेरी लाइफ में तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर मैं क्यों रो रहा हूँ, फिर वो सोच के फिर और रोना आता था मैं। बढ़िया। एक और मैसेज आया है यार, कॉल करके अगर आप शेयर करते कुछ थॉट तो मज़ा आता है यार। 0800-004-866 पे आप नीडर हो के शेयर करिए। आई नो हो सकता है मेजॉरिटी केसेस में आपकी शादी हो चुकी होगी, इस वजह से हो सकता है आप फ़ोन नहीं कर रहे हो, बट नाम मत बताइए, ऐसे ही फ़ोन कर लीजिए, मैं खुद भी नहीं पूछूंगा आपसे नाम। सो यस, एक ने मैसेज लिखा है, ओके ये सॉरी, मैं थोड़ा सा उन्होंने जिस तरह से लिखा मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैं सोचा कि पढ़ने से पहले एक बार मैं खुद पढ़ लूँ। सो यस, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आई वॉज लकी इनफ टू गो आउट फ्रॉम फ्रेंड जोन बट द रियलिटी टुक मी बैक टू द ब्रदरहुड। अरे बाप रे, ये तो ज़्यादा, मतलब ब्रदरहुड के बाद तो फुल स्टॉप लग जाता है। फ्रेंड जोन में एटलीस्ट ये तो होता है कि हाँ कोशिश फिर भी जारी रहती है, भाई बनने के बाद तो फिर भाई हो जाता है फिर। But yes, call करिए 0800-004-866 if anyone would like to share something regarding कुछ कहानी कि आपने अगर किसी को अप्रोच किया है तो आपके साथ क्या हुआ था, whether you have been successful or you have been put in the category of brotherhood or या फिर friend zone वाली कहानी। 0800-004-866 पे आप मुझे call करिए। एक और मैसेज आया है, एक नहीं एक्चुअली दो मैसेज आए हैं, और वो कहते हैं स्पेंड मोर टाइम विद माई क्रश बट देन आई बिकेम देयर अनऑफिशियल फोटोग्राफर ऑल वीकेंड। अरे बाप रे, ये तो यार आपका डायलॉग है ना यहाँ पे परफेक्टली फिट होता है क्रिश मूवी का, क्रिश नहीं एक्चुअली, हाँ क्रिश मूवी का ही ना, जिसमें ऋतिक रोशन बोलते हैं
1: मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल किया माँ, माँ मैं आ रहा हूँ माँ।
0: करण कहते हैं, करण का भी मैसेज आया, वो कहते हैं प्लीज मेक इट ऑफिशियल, आई डोंट माइंड। अरे वाह क्या बात है, ये होती है ना बात यार, ये ऐसे तो नीडर बंदा आया है यहाँ पे। कहते हैं दे आस्क इफ आई कुड इंट्रोड्यूस देम टू माय बेस्ट फ्रेंड। अरे भाई, जब घर में हो बंदा तो क्यों बाहर ढिंडोरा, क्यों पीटे बाहर ढिंडोरा, थोड़ी राइम नहीं बनी बट या आप समझ गए होंगे मेरी बात। यार कॉल करते मज़ा आता है यार, मतलब मैसेज तो मिले हैं मुझे, कॉल नहीं किया किसी ने, चलो कोई बात नहीं। फिर से अगर इफ यू वांट मी टू कॉल, लाइक इफ यू गाइस वांट टू कॉल मी ड्यूरिंग ऑफ एयर, देखते हैं अगर तब कोई कॉल आता है तो। बट यस, एंजॉय करिए एंड थोड़ी देर में एक और अमेजिंग सा गाना लेके आता हूँ।
2: लंच बॉक्स विद केतन।
3: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई
2: है। इसके पीछे हम।
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी,
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना हो,
4: और कानों में जस्ट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
2: IKEA.
3: If you've got an injury like a sprain or strain, don't just think that rest is best. Staying active can support your recovery and help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279 439 और विजिट legalassociates.co.nz.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
8: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
9: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swad bhi, sehat bhi.
10: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
11: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
10: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड इस्तमा की लाइट्स, पापा टोटो.
12: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
13: लंचबॉक्स विद केतन.
14: मुझे पसंद है लड़का.
13: हम लंच के मंच पे. टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: चोरी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
2: वेलकम बैक। चलिए पॉडकास्ट की कुछ बातें कर लेते हैं। अभी एक नया पॉडकास्ट आया है जहाँ पे शनी लाल यहाँ आए थे, रुजबे और सैंडी से बात की और काफ़ी अच्छे से उन्होंने डिस्क्राइब किया है खुद को और ऑफ कोर्स अबाउट ट्रांस नॉन बाइनरी और यू नो हिजरा जैसे शब्द सुन के कैसा लगता है उन्हें। ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी हार्श वर्ड। LGBTQ के बारे में उन्होंने काफ़ी बताया है, किस रेसिज्म को फेस करते हैं, कितना इम्पोर्टेंस मिलता है, इक्वालिटी है या नहीं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बात की है। मैं तो कहता हूँ कि आपको ये डेफिनेटली सुनना चाहिए। वैसे यस, आप इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए हमें 5599 पे टेक्स्ट भेज सकते हैं जहाँ से आपको ये पॉडकास्ट सुनने को मिल जाएगा, एक ऑडियो पॉडकास्ट आपके फ़ोन पे आ जाएगा। सो यस, 5599 इज द नंबर जहाँ पे आप ड्राइव लिखिए और भेज दीजिए। बढ़िया। साथ में अगर आपको विजयन पूजा के बिट्स एंड कन्वर्सेशन भी अगर सुनने हैं तो 5599 पे आप बस BF लिख के, यानी कि इनिशियल है ब्रेकफास्ट शो का, BF वो लिख के हमें 5599 पे भेज दीजिए। And of course, मेरा गाना Sapphire 2.0 is almost about to get closer to 60,000 views. और बिना आपके प्यार के, बिना आपके सहयोग के, बिना आपके शेयर के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप उनमें से एक हैं जिन्होंने नहीं देखा है, या फिर आप उनमें से हैं जिन्होंने देख लिया है, तो फिर से जाइए, फिर से देखिए Sapphire 2.0। आप बस सर्च करिए Sapphire केतन YouTube पे और आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने अपनी आवाज़ दी है। पूरा वीडियो कॉन्सेप्ट मैंने ही बनाया है और साथ में मनप्रीत भाई जो कि पापा टोए टोए उस गाने के लिखारी है, लिरिसिस्ट है, तो उन्होंने भी इस गाने के बोल जो हैं उन्होंने ही लिखे हैं। तो आप जाइए, एक ट्रिब्यूट था, एक परफेक्ट ट्रिब्यूट था टू अरिजीत सिंह एंड ऑफ कोर्स एड शीरन को भी। मेरा मेन गोल तो यही कि एक वीडियो एक बार उन तक पहुँच जाए और वो इसे शेयर करें, यही मेरा गोल है। और ऑफ कोर्स आई विल नीड डेफिनेटली योर हेल्प एज वेल। तो यस, यूट्यूब पे जाइए 5599 पे आप, सॉरी यूट्यूब पे जाइए और Sapphire केतन के नाम से आप सर्च करिए। एंड प्लीज अगर आप वहां पे वीडियो देख के रिव्यू दे सकें तो वुड बी सो ग्रेट, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने लाइक्स आते हैं, जितने शेयर्स आते हैं, जितने कमेंट्स आते हैं यूट्यूब पे, उससे भी उसकी जो व्यूअरशिप है वो और बढ़ती है और एल्गोरिदम जो बाकी के चैनल पे होता है वो भी दिखाने लगता है, वो तभी दिखाता है जब ये पॉपुलर होता है। तो यस, 5599 पे आप ड्राइव लिखिए ताकि आपको पॉडकास्ट आ जाए, उसके बाद 5599 पे अगर आप मुझे BF लिखेंगे तो आपको बिट्स एंड कन्वर्सेशन अबाउट विजन पूजा के कन्वर्सेशन मिल जाएंगे। एंड यस, Sapphire 2.0 Sapphire केतन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाइए, शेयर करिए, प्यार दीजिए।

Well, अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। लेटेस्ट खबर यह है कि न्यूजीलैंड के फंगराई सिटी सेंटर में क्राइम को रोकने के लिए फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास लगाने की मांग की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बिजनेसमैन पॉल योविच का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ क्राइम रिकॉर्ड नहीं करेगी बल्कि क्रिमिनल्स को पहले ही रोकने में मदद भी करेगी। वाह, दैट लुक्स अमेजिंग यार। फिलहाल सिटी में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं लेकिन फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम इन्हें और इफेक्टिव बना सकता है। जस्टिस मिनिस्टर पॉल गोल्डस्मिथ ने भी कहा कि सुपरमार्केट्स में इस टेक्नोलॉजी से अच्छे रिजल्ट मिले हैं और अगर प्राइवेसी रूल्स का ध्यान रखा जाए तो लोकल काउंसिल्स इस ऑप्शन पर विचार कर सकती है। हालांकि इस प्रपोजल को लेकर प्राइवेसी और सिविल राइट्स से जुड़ी चिंताएं भी सामने आ रही है। अब फैसला लोकल काउंसिल के साथ में है कि इस टेक्नोलॉजी को सिटी सेंटर में लागू किया जाए या नहीं। व्हाट डू यू थिंक, अगर ये टेक्नोलॉजी आए तो लगता है आपको कि इट विल गोइंग टू वर्क? और अगर हाँ तो आई मीन आर यू इन फेवर ऑफ हैविंग द कैमरा जो हर टाइम रिकॉर्ड तो करते ही हैं बट साथ में एक ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें जो आपका फेस देखते ही पहचान लेगी कि कौन है ये। ऑब्वियसली इसमें द अदर साइड वुड बी दैट लोगों की प्राइवेसी भंग हो सकती है बट आई थिंक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज ऑल्सो वन ऑफ दैम कि सोशल मीडिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपकी डिटेल्स ऑलरेडी जा चुकी है वहाँ पे, तो वो सोशल मीडिया को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस केस पे डेफिनेटली उन्हें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस पे विचार करना चाहिए कि ये प्राइवेसी एक्ट को लेके कितना सिक्योर रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी बातें जो है उस पे डिपेंड करती है। बट यस, ऑन दिस साइड अभी मैच चल रहा है बिटवीन वेस्ट इंडीज वर्सेज न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज अभी खेल रही है हाल फिलहाल। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 268 रन बनाए हैं 9 विकेट खोकर 50 ओवर में, जिसमें सबसे बढ़िया पारी खेली है विल योंग ने 56 बनाया है, निक केली ने 64 बनाया है, टॉम लेथम ने 69 रन बनाया है। विल योंग अच्छा खेल रहा है यार। सो यस, इन टोटल 268 बना है, जवाब में 199 रन बना चुकी है, यानी कि 72 बॉलों पे 70 रन ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब चेक किया था तब ओवर 6 था RPO रिक्वायर्ड रन रेट बट नाउ इट इज अंडर 6, दैट मींस वेरी पॉसिबल दैट न्यूजीलैंड ये मैच हार सकती है। बट यस, यू नेवर नो यार कब एंड में आके, बिकॉज दिस क्रिकेट तो कभी भी पलट सकता है। सो लेट्स होप कि आप कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो ताकि यहाँ पे फटफट करके विकेट गिर जाए वेस्टइंडीज के एंड देन न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाए। वैसे यस, ये पांचवा और आखिरी ओडीआई है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका, आपको अपडेट देता रहूंगा मैं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Disney Ushies are now playing at Woolworths. Treat your Disney Ushies like VIPs with the exclusive collector's case. It includes two exclusive glow-in-the-dark Ushies and a game board. Available now for $12. T's and C's apply while stocks last.
2: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
3: DVS, huge winter sale on now. Huge savings across all DVS ventilation systems. Say no to crying windows. Say yes to the huge winter sale on now. DVS. T's and C's apply.
4: Lunchbox with Ketan.
5: Iske piche na 3-4 ladkiyan padi hui hain.
4: Iske piche. Lunch ke munch pe.
6: चलिए बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। बॉलीवुड में काफी सितारे जो हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी फिल्म क्या कमाल कर रही है। धमाल 4 काफी बढ़िया कर रही है। स्कोर कार्ड तो ऑफकोर्स मैंने आज ही देखा है, आई थिंक ऑलमोस्ट क्लोज टू 150 करोड़ INR, इंडिया की करेंसी के हिसाब से 150 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। लेकिन यहाँ पे जो रिपोर्ट्स आई है वो अभी भी पेंडिंग है, दैट मीन्स अभी भी टाइम ले रहे हैं वर्डिक्ट के लिए। बट 130 यहाँ पे इन फ्रॉम इंडिया ओनली अलोन कमा चुकी है 130 करोड़, जो कि बढ़िया है, यानी कि ये हिट हो सकती है या फिर एवरेज होगी। अल्फा फ्लॉप हो चुकी है, 56.9 करोड़ का ही कलेक्शन किया है। जी हाँ, ये फिल्म जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। उसके बाद बेबी डू डाई डू 5.89 करोड़ का ही कलेक्शन किया है, ये भी फ्लॉप रही है। साथ में और भी मूवी आई है, जैसे कि नवचक्र 0.062, ये भी फ्लॉप हो चुकी है। तेरा मेरा नाता 0.07, ये भी फ्लॉप हो चुकी है। कॉकटेल 2 एवरेज रही है, 91.94 का कलेक्शन किया है इसने। सो यस, ये फिल्म जो है वो एवरेज रही है। वेल, अभी आने वाली फिल्में जो हैं उनमें से मैं बता देता हूँ कौन कौन सी। मैं एक्चुअली ये एक हॉलीवुड फिल्म है जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, जो इस महीने रिलीज होने वाली है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार, बहुत ही हद से ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यार। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइडरमैन की, न्यू लाइफ ऐसा कुछ करके टाइटल, सब टाइटल राइट। बट यस, 23 जुलाई यानी कि कल के दिन जान नेता रिलीज होने वाली है, उत्तर द पुत्तर होने वाली परसों, उसके बाद द इंडिया स्टोरी भी परसों रिलीज होने वाली है, दुल्हनिया ले जाएंगे भी 24 को होने वाली है, उसके बाद तेरा यार हूँ मैं 24 को होने वाली है, और बंटवारा 1947 15 अगस्त को यानी कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे पे ये होने वाली है। यानी कि ऑफकोर्स बंटवारा हुआ था तो दोनों के लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है। आवर अपन 2 भी सेम दिन रिलीज हो रही है, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड तो नहीं है। और ईथा है जो एक नई फिल्म आ रही है श्रद्धा कपूर की, 28 अगस्त को वो रिलीज़ होने वाली है।

0: ask Jiggy. Throwback.
1: Well, अभी का सवाल ये है कि आप 5599 पे इसका जवाब दीजिए कि लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन आपका क्या रहा है अभी तक. जी हाँ, इसका जवाब मुझे 5599 भेज दीजिए. व्हाट इज द बेस्ट डिसीजन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ अंटिल नाउ. आप शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने रिव्यूज ऑन 5599, जिसके ऊपर बात होगी, चर्चा होगी.

0: हुकुम जेगी।
1: क्या रहा, नमस्ते, सत श्री अकाल, आपका स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वैसे यस, इट हैज़ बीन, इट इज़ गोइंग एक्चुअली वेरी वेरी गुड। अभी आपको थोड़ी देर में इस आर में ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक अमेजिंग सा वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सेलिब्रेशन जो होने वाला फेस्टिवल, उसके डबल पास कैसे जीत सकते हैं, इस आर में आपको बताने वाला हूँ। और यस, राहत फतेह अली खान के अपडेट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, जो इस थोड़े दिन ही बाकी हैं, कहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। और अभी मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का, तो काफ़ी क्लोज आ चुका है मैच, रिजल्ट बहुत ही जल्द आ सकते हैं। अपडेट के लिए बस आप कनेक्टेड रहिए और सुनते रहिए हमारा लंच बॉक्स शो।
2: बचाओ क्या,
3: यो यो हनी सिंगर, चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा एतबार।

0: up.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, जल्दी से आपको अपडेट देता हूँ क्रिकेट का मैच काफी रोमांच हो चुका है, रोमांचिक रोमांच घड़ी पे आ चुका है. वेस्ट इंडीज वर्सेज न्यूजीलैंड. पहले लग रहा था वेस्ट इंडीज बहुत ही करीब है जीत के, बिकॉज ऑब्वियसली 6 से कम की रन रेट थी और 4 विकेट ही गिरे थे. बट अभी अभी लास्ट के लिटरली 5-6 अगर देखें आप तो मतलब 218 तक तो 4 ही विकेट थे, लेकिन उसके बाद 218 पे 5 में गिरा, फिर 239 पे 6, 248 पे 7 एंड 248 पे 8 विकेट. यानी कि लेस देन 5 ओवर में 4 विकेट खो चुकी है वेस्ट इंडीज. मैंने कहा था ना कि कुछ कमाल हुआ तो ही कुछ रिजल्ट में या फिर ये जो मैच है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है. इंटरेस्टिंग तो था ही ऑब्वियसली,

0: का है जीतने के लिए। अभी रन रेट बहुत ही कम है, 4.28 की रन रेट हो चुकी है, जो ऑब्वियसली रनों के हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रेशर अभी वेस्ट इंडीज पे बहुत ही ज्यादा होगा। अभी उसका हाँ 4 विकेट ही गिरे थे और अब सिर्फ 2 विकेट ही बचे हैं हाथ में। बट यस, कनेक्टेड रहिए, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा।
1: लंच बॉक्स विद केतन।
2: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन,
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
3: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
5: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
6: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
5: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
6: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
5: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
7: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
8: Branchy Group, Tree Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Marine Prastut Kare Chhe Raj Gadvi Live in Auckland.
9: Hey, hello, bhai, hello, hello.
8: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજગઢવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજગઢવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.
10: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
11: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
12: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
13: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz।
14: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
15: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
14: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
15: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: with Ketan.
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: skip या replay
3: स्किप बाद में करते रहेंगे, लेकिन अभी आपको अपडेट देता हूं। अब वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के पास बहुत ही टाइट हो चुका है, नो डाउट रन रेट बड़ी है, प्रेशर थोड़ा और डालने में सक्सेस हुई है, लेकिन यस अभी एक भी विकेट नहीं गिरा है। अभी भी वेस्ट इंडीज के हाथ में दो विकेट है, यानी कि उनको जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 रन ही चाहिए 24 बॉलों पे। क्या लगता है आपको, न्यूजीलैंड बाजी मार पाएगी इस बार या रह जाएगी आखिरी ओडीआई पे? वेल यस, बहुत ही कम बॉले बची हैं अभी हाल फिलहाल तो, बट यस प्रेशर इज ऑन, लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है। बट लेट मी गिव यू एन अपडेट, एक बहुत ही बढ़िया इवेंट होने जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर, जो कि गरबा विद सेंसेशनल राजगढ़ भी लाइव होने जा रहा है 1st of August को महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में। टिकट्स बहुत ही तेजी से फिल आउट हो रही है, events.tickets.co.nz पे जाइए और टिकट खरीद लीजिए। खुद भी कोई भी दिक्कत हो स्वप्निल शाह को कॉल करिए 0224394736 पे, 0224394736 पे। यहाँ पे हमारे लिसनर के लिए एक डबल पास है, बट उससे पहले आपको बताता हूँ ये जो इवेंट है लेके आए हैं

0: by Lotus Productions, Shri Event New Zealand, Vinay Mehta and Pranshi Group आप सभी के लिए लेके आए हैं. बहुत ही बढ़िया गरबा नाइट, जी हाँ, जो आपको डेफिनेटली मिस नहीं करनी चाहिए. बस मुझे टेक्स्ट लिख के भेज दीजिए RG. काफी लोगों को मैंने देखा है RJ लिख देते हैं वो, बट नहीं, ऐसा मत करिए. आप RG लिखिए. जी बोले तो ग्रैप्स, ऑब्वियसली राज गढ़वी का इनिशियल है RG, और उसे मुझे 5599 पे भेज दीजिए ताकि आप ड्रॉ में शामिल हो जाए और जीत सकें डबल पास. बट यस, अभी भी आपके पास एक और है. वैसे अब मैच और टाइट हो चुका है. 21 बॉल पे 11 रन ही चाहिए, यानी कि हिटमेयर भाई साहब बढ़िया खेल रहे हैं वो. मेरे को लग रहा है न्यूजीलैंड को उदास करवा के ही भेजेंगे, लग रहा है मुझे. सिर्फ 11 रन चाहिए वेस्ट इंडीज़ को 21 बॉलों पे, बट नामुमकिन कुछ भी नहीं है. यहाँ पे कुछ भी चमत्कार हो सकता है. हमारे बॉलर्स ऑब्वियसली, एक्चुअली उन्होंने छक्का मार के उन्होंने पूरा एकदम फिर रुख बदले, जो प्रेशर है वो फिर से रिलीज कर दिया. बट होपफुली न्यूजीलैंड के बॉलर कम नहीं है, हो सकता है कुछ जादू ही दिखा दे यार यहाँ पे. बट यस, एक और मैच, एक और शो होने जा रहा है 25 जुलाई को, इस सैटरडे. डोंट मिस इट आउट. आप जल्दी से टिकट ले लीजिए drytickets.com पर, बिकॉज JK स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं एक अमेजिंग सा इवेंट. द ट्रस्ट अरेना में आ रहे हैं वन एंड ओनली द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान. आ रहे हैं ऑकलैंड एक अनफॉर्गेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक लेके. द ट्रस्ट एरिना में होने जा रहा है ये 25 जुलाई को. आपको मिस डेफिनेटली नहीं करना चाहिए. अभी भी 10 रन बाकी हैं 21 बॉलों पे, यानी कि गाना चलाऊं नहीं चलाऊं, क्या करते, क्या बोलते हो बताओ. अरे रे रे रे, अब तो गया मैच हाथ से. एक और छक्का मार दिया भाई साहब ने, एक और छक्का मार के वेस्ट इंडीज की झोली के और भी करीब ला दिया है हिटमेयर ने. कौन कर रहा है बॉलिंग भाई, नाम बताओ. नाम जेकब डफी ने तीन विकेट भी लिए. उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, ऐसा नहीं कि उन्होंने की है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पिटे हैं. 8 से ज़्यादा की रन रेट से उन्होंने रन दिए हैं. अब तो गया मैच, क्योंकि ऑब्वियसली 20 बॉले हैं वेस्ट इंडीज के पास, 4 रन ही चाहिए, यानी कि एक चौके का ही डिस्टेंस है. एक बैट से मारा और चौका लगा और हार गए न्यूजीलैंड. चलो गाना चला ही लेते हैं, माशू का वो सुन लीजिए. ये गाना खत्म होता है तो रिजल्ट आ ही जाएगा. क्या ही पॉइंट रहा. बट यस, बने रहिए, बताता रहूंगा अभी थोड़ी देर में.
1: टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

क्रिकेट जगत से खबर है, वेस्ट इंडीज मैच जीत चुकी है दो विकेट से मैच जीत चुकी है. ऑफ कोर्स नॉट अ ग्रेट न्यूज, बट यस उसके अलावा और कौन कौन से स्पोर्ट्स है उस पर मैं बताता हूँ. लेकिन यस एक अभी हाल फिलहाल मैच चल रहा है श्रीलंका अंडर 19 वर्सेस इंडिया अंडर 19, जिसमें इंडिया अंडर 19 ने 105 मेरे ख्याल से टेस्ट मैच है ये 105 ओवर में 411 रन बना चुकी है और श्रीलंका अंडर 19 122 रन पे खेल रही है. 8 विकेट उनके गिर चुके हैं. नॉट बैड बढ़िया से स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या और कौन कौन से है. फीफा खत्म हो गया तो क्या हो गया, और भी स्पोर्ट्स हैं जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं. अभी मैच तो ये न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का भी जो ओडीआई सीरीज़ है वो ख़त्म हो चुकी है. बढ़िया आज जो है 22 तारीख के हिसाब से आप टूर दे फ्रांस रोड साइकिलिंग इसको एंजॉय कर सकते हैं. स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ये आप देख सकते हैं, फ्रांस में हो रहा है. उसके अलावा UCI BMX Racing World Championship भी चल रही है, उसे आप enjoy कर सकते हैं. Hamburg European Open Tennis Women ये भी आप enjoy कर सकते हैं. ICF Canoe Slalom World Championship भी चल रही है, आप इसे enjoy कर सकते हैं. Fencing World Championship यहाँ से शुरू हो रही है, हांगकांग में हो रही है, इसे भी आप enjoy कर सकते हैं.

0: वेल गेस्ट, न्यूजीलैंड की एनर्जी कंपनी वेक्टर की मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंट्रस्ट का कहना है कि देश का इलेक्ट्रिसिटी मार्केट कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी सही तरह से काम नहीं कर रहा है। उनका मानना है कि बढ़ती बिजली की कीमत और कम कंपटीशन की वजह से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एंट्रस्ट का कहना है कि कुछ बड़ी पावर कंपनीज मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से नए रिटेलर्स के लिए कॉम्पिटिशन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो मार्केट रिफॉर्म्स की मांग कर रही है ताकि कंज्यूमर्स को सस्ती बिजली और बेहतर चॉइस मिल सके। फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और कॉमर्स कमीशन भी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार और रेगुलेटर्स इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं। क्या लगता है आपको, मतलब क्या कदम उठाएगी यहाँ पे? अगर आप इस पे रिव्यू देना चाहते हैं तो 5599 द नंबर।
1: Lunchbox with Ketan.
2: मुझे पसंद है लड़का।
1: हम
3: driving you home.
4: The drive show with Sandy and Rusby.
5: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
6: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
7: वो भी आई लव यू वाला।
6: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
7: अच्छा आप दिलजीत हो?
6: आए आए बताओगे यार।
4: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
8: Spark Satellite, powered by Starlink satellite to mobile technology, is officially live. With an eligible phone and line of sight to the sky, you can now send texts and use data on select satellite-ready apps while you're out exploring off the beaten path. With Spark Satellite, the best coverage just got better. Go to Spark to find out more. As awarded by Open Signal, requires eligible phone, SIM and plan. T's and C's apply.
9: If you don't play Instant Kiwi, it's just another day. If you do play Instant Kiwi, you have absolutely no idea what could happen next. Instant Kiwi, you never know. Play at your local lotto store or online today. R18.
10: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
1: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
11: हम
1: TikTok.
0: Welcome back. You are listening to Lunchbox. हमारे बीच आ चुकी हैं यहाँ की सेलिब्रिटी गेस्ट, तो नहीं बोल सकता मैं। कैसे हो सैंडी?
13: बढ़िया है केतन, सेलिब्रिटी बोला तुमने मुझे।
0: यार सेलिब्रिटी क्यों नहीं आप?
13: हाँ नहीं ठीक है, अच्छा लगता है।
0: चलते यार, जब रास्ते में जाते हो चलते चलते लोग या फोटो के लिए आते हैं यार।
13: अच्छा
0: हाँ। फिर बोलते हैं भाई बिल पे नहीं किया आपने।
13: वही ना, इसके लगाओ मोस्ट वांटेड में।
0: और क्या,
13: अरे उसे याद आया मेरे को एक दो बिल पे करने थे। गुड रिमाइंडर यार, थैंक यू।
0: मेरे को चेक भेज देना आप।
13: सही
0: चेक,
13: है
0: ब्लैंक चेक मैं भर के दे दूंगा, इतना अमाउंट चाहिए।
13: हाँ कोई चक्कर ही नहीं है।
0: कैसा जा रहा आपका दिन?
13: दिन अच्छा जा रहा है यार, वेरी गुड। इट्स बिट क्लाउडी आज का दिन वैसे, बाहर का
0: राइट।
13: हाँ, मेरा तो दिन तो ब्राइट है।
0: ब्राइट है
13: हाँ।
0: तो और किसका नहीं है?
13: बाहर का एक्चुअल वेदर जो है वो क्लाउडी है, मेरा डे ब्राइट है।
0: अच्छा, लाइक आपका कहने का मतलब है कि दिन अच्छा जा रहा है।
13: हाँ दिन अच्छा जा रहा है।
0: राइट, बढ़िया है यार। कोई नई टेक्नोलॉजी आपके आपको बहुत ज्यादा फैसिनेट की हो?
13: फैसिनेट या फैसिनेट, मेरे को आजकल AI तो बहुत कर रहा है। मैं AI में आजकल क्लाउड यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने जेमिनी ट्राई किया हुआ है, मैंने ChatGPT ट्राई किया हुआ है। तो जब से हमने वो पॉडकास्ट किया ना AI का, विच वॉज एडिटेड बाई यू बाय इंस्पायर मीडिया वर्क्स, अगर आपको भी अपनी एडिटिंग करवानी है कि तुमसे आप बात कर सकते हैं।
0: और आपको भी अगर मार्केटिंग करने का सीखना हो तो समय के बाद सैंडी ही है जो बहुत बढ़िया मार्केटिंग करती है।
13: सो तो मैंने क्लॉड, क्योंकि उस पॉडकास्ट में यही बात हुई थी कि क्लॉड ट्राई करना चाहिए, तो मैंने क्लॉड ट्राई किया है। एंड क्लाउड ना मेरे को डिफरेंस लगा है कि बड़ा इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। जैसे ChatGPT में हम ऐसी बातें कई बार पूछ रहे हैं ना, तो क्लॉड में ऐसी बातें पूछने में हिचकिचाहट होती है. ऐसा लगता है बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा लगता है किसी ना एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट पर्सन से आप बात कर रहे हो क्लॉड से बात करते समय.
0: मतलब ऐसा लगता है कि कोई उस सॉफ्टवेयर के पीछे कोई बंदा बैठा है.
13: हाँ,
0: जो जवाब दे रहा है,
13: जो जवाब दे रहा है कोई कॉर्पोरेट पर्सन बैठा है, ऐसा लगता है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर. अगर आपने गाइस अभी तक ट्राई नहीं किया तो अपने काम के रिलेटेड आप ट्राई कर सकते हैं. CLAUDE इज अ स्पेलिंग. मैं तो फ्री वर्जन अभी ट्राई कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है वो, एंड सीखने को बहुत कुछ वहाँ से मिल रहा है. बट एक मैं यहाँ पे चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब आप किसी भी ChatGPT, Gemini, Claude, कोई भी और हो गया, अगर अपने काम की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो वहाँ पे कुछ ईमेल्स को लेके या कुछ भी, तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक जा रही है. तो मेक श्योर कि आप कुछ भी कॉन्फिडेंशियल डाटा वहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हो. सो ऐसा डाटा, ऐसी ईमेल्स जो आपकी कॉन्फिडेंशियल है, वो अगर आप उस सॉफ्टवेयर में जाके शेयर कर रहे हो, इट मींस कि वो अभी कॉन्फिडेंशियल
0: नहीं रही. ये काफी इंटरेस्टिंग बात है यार,
13: क्योंकि उस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा.
0: एक थिन लाइन है वहाँ पे, दैट
13: 100%
0: मतलब कहते हैं कि फ्लो में बहुत ही ज्यादा बहक जाते हैं लोग.
13: हाँ.
0: कि यार ये पूछ रहा है इसका भी, या मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता हूँ, मेरे साथ ये हुआ है, इसका क्या जवाब भाई तेरी इन्फॉर्मेशन जा रही पब्लिक. वही पूछो जो आपको डर ना हो कि अगर बाय चांस कल को पब्लिक होती है.
13: Exactly.
0: पब्लिक ऐसा नहीं कि भाई बिलबोर्ड लग जाएगा उसका, ऐसा नहीं. आपका डेटा कहाँ यूज हो रहा है,
13: आउट देयर. एग्जैक्टली.
0: हाँ, आपका डेटा, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज हो रहा है, कुछ नहीं पता.
13: जहाँ पे आप काम करते हो, काम का अगर कोई ऐसा डाटा है जो एम्बार्गो है, कॉन्फिडेंशियल है, एंड उसको बाद में एम्बार्गो होता है, मतलब कि आप इस डेट तक इस डाटा को रिलीज नहीं कर सकते पब्लिक के लिए, या फिर इस टाइम तक आप रिलीज नहीं कर सकते.
0: एम्बार्गो. एम्बार्गो. यू गो, आई कम. बट थैंक यू सैंडिया, थैंक यू. बहुत ही नॉलेजफुल बात है. मैं इसलिए कहता हूँ सेलिब्रिटी आपको यार. मतलब क्या चलता फिरता येलो पेज है.
13: अरे वाह.
0: नहीं येलो पेज नहीं, वो तो अलग हो गया. गूगल
13: येलो पेज तो क्लाउड
0: है. चलता फिरता क्लाउड है.
13: हाँ सही है.
0: क्योंकि बाहर भी क्लाउड है ना, यहाँ पे भी क्लाउड है.

0: आवाज गूंजेगी। हम
1: थ्रोबैक। वेलकम बैक। वेल वेलकम बैक तो करूंगा बाद में, बट यस अभी हाल फिलहाल जाने का टाइम आ चुका है, कॉफी पीने का भी मन कर रहा है, सो यस मैं तो कॉफी लेता हूं, बट यस आप कहीं मत जाइए, कॉफी ब्रेक में आपका स्वागत करेगी सैंडी थोड़ी देर में। मैं निकलता हूं, मिलते हैं कल सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू। AI सीख लो, AI AI।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: ओग्रिम, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan, Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
7: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only. Starts Thursday.
8: It's a mum wanting a free kid's haircut for her adult son. It's another chewing gum and hair mishap. It's someone asking if frosted tips are back in fashion. There's a lot on the line starting a business. To see how ANZ can help, search ANZ How To. Eligibility criteria, T's and C's apply.
9: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
10: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
11: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The phase out of open plan classrooms appears to be keeping teachers happy. Nigel Jordan reports.
12: Nearly 200 schools have begun the process of reinstating walls. Education Minister Erica Stanford says they're reporting overwhelmingly positive feedback, like less noise and stronger student concentration. Minister Stanford says the benefits are also being felt by neurodiverse learners.
11: Another union is throwing its weight behind MB workers who want better pay. Taxpayer Union's mascot Porky has joined a picket line outside the ministry's head office. The group says a botched $35 million immigration project costs the same as a $6,000 pay rise for every employee and wants an explanation. OpenAI has revealed its systems broke out of a locked environment and hacked another company. It was testing advanced AI models on their ability to carry out cyber attacks. During the process, the artificial intelligence gained access to online platform Hugging Face, where it was eventually contained. South Waikato's iconic sheep and dog-shaped buildings have a new owner. The corrugated iron animals in Tiro just sold at auction for about $1.5 million. To sport, a nervy 2-wicket win for the West Indies in the final cricket ODI against the Black Caps. The Windies chased down 269 with 15 balls to spare. Wellington Phoenix defender Mackenzie Barry will play for Auckland FC's invitational team against Chelsea. And in a completely different football world, Chelsea is reported to have paid $270 million for Aston Villa's England international Morgan Rogers.
10: Sports News, brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
13: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14.1 डिग्री से और आज को ओवरनाइट 8 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का थोड़ा सा क्लाउडी है। सनसेट आज का 5:29 पर।
10: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
10: Coffee break with Sandy.
13: 3:02 हो चुके हैं। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है। यू हमिंग अलोंग विद सैंडी और अभी से लेके 4 तक मेरा और आपका साथ है कॉफी ब्रेक में। 4 के बाद कंटिन्यू रहेगा साथ ड्राइव शो में। केतन वैसे अभी जा ही रहा है, लेकिन बात करके थोड़ी जाते हैं। केतन, लंच बॉक्स में तुम्हें आई थी, लेकिन मेरे को बताओ कि तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है आफ्टर सैफायर 2.0?
14: अच्छी चल रही है यार। मैं लाइक आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मैं मतलब मेरे यार देखो कोई भी गोल करते हो। अच्छा, इसमें आवाज़ नहीं आ रही क्या?
13: नहीं आई आ रही है आवाज, वो तुम्हारा हेडफोन एडजस्ट करने वाला है।
14: अरे वाह यार, क्या आवाज लगती है। वेल जोक्स अपार्ट, उम्मीद थी कि लोगों तक पहुंचे, उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आए, बड़ी एक ख्वाब होता है। टेंशन फिर भी थी कि क्या सचमुच वो ये वो चीज करके देगा नहीं देगा वो चीज, लेकिन आज मैंने देखा है ऑलमोस्ट अबाउट टू हिट 60,000 व्यूज ऑन यूट्यूब, सो दैट इज वेरी बिग थिंग फॉर मी। आई नो पहली बार नहीं है बट और हो सकता है यहाँ पे जितने भी लिसनर है आई एम प्रीटी श्योर वो काफी फॉलोअर्स होंगे काफी लोगों के, और ये कोई बड़ा नंबर नहीं है।
13: अरे यार, ये मेरे को लगता है बहुत बड़ा नंबर है।
14: हाँ मतलब मैं कल मैंने एक वीडियो बनाया था जो ऑब्वियसली मैं खुद ही अप्रूव नहीं किया। मैं डालने वाला था 50,000, कल 50,000 हुए था तो मैं डालने वाला
13: था 100,000 पे डालो अभी तुम।
14: होपफुली यार जल्दी हो जाए
13: 100,000 अगर तुम्हारे वीडियो के व्यूज हो गए
14: हाँ
13: तो क्या करोगे?
14: मैं केक काटूंगा।
13: केक काटोगे?
14: और ये मेरा पहला होगा 100K। ऐसा नहीं कि व्यू पहली बार है, पुराने मेरे म्यूजिक वीडियो है उसमें भी।
13: पर दिस इज स्पेशल ना?
14: ये स्पेशल इसलिए बिकॉज़ लोगों की वजह से ये पहुंचेगा, क्योंकि लास्ट टाइम सिर्फ उसे मेरा ही इन्वॉल्वमेंट था, बट यहाँ पे इस वीडियो में कितने लोगों ने किया, प्लस ऑफकोर्स जहाँ पे जिस देश का मैं नमक खा रहा हूँ
13: उस देश की को वीडियो है ये।
14: हाँ, उस देश की है, प्लस उस देश को मैं और आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड सिर्फ फोटो वीडियो में ही खूबसूरत नहीं, यहाँ के लोग भी कितने खूबसूरत है, कितने सपोर्टिव है।
13: गाने के लिरिक्स भी एक्चुअली में जैसे तुमने वो लाइन है ना जो मनप्रीत ने इसमें लिखी है कि सूरज की पहली किरण जहाँ पे आती है, मतलब कि पहला सनराइज दुनिया में जहाँ पे होता है, टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड, तो उसमें से लिरिक्स भी है।
14: हर एक लाइन
13: जो है वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करती है, और वीडियो में गाइज हर एक सीन हर एक फ्रेम जो है वो न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट करता है। बहुत कम गाने ऐसे बनते हैं।
14: और मेरे को एक्चुअली एक कमेंट आया था जो मैं काफी खुश हुआ वो कि पब्लिक ने नोटिस किया है, क्योंकि मेरे को भी ऑप्शन आया था, काफी लोगों ने बोला तू ट्रैवल क्यों कर रहा है, जस्ट AI यूज कर ले बना ले। मैंने कहा यार मूवी बनती है, कोई भी कहानी बनती है, जब आप खुद ही फील नहीं कर पाओगे तो क्या लोगों को कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो भी फील करें। तो माय इंटेंशन वाज टू ट्रैवल अराउंड।
13: हां, तुमने ट्रैवल अराउंड किया न्यूजीलैंड में टू शूट एवरीथिंग।
14: हां जी, इसीलिए इतना टाइम लगा इसको, एक साल लगे हैं फ्रॉम लिटरली राइटिंग द फर्स्ट लेटर।
13: बाय द वे गाइस, इस वीडियो में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है क्रिस्टोफर लक्सन।
14: हाँ, वो बहुत खुश हुए थे। खैर, उनको
13: एक सेलिब्रिटी की मदर भी है।
14: हाँ, कौन है वो बताओ यार, मतलब
13: वो भी है, एंड एक सिंगर भी है, बॉलीवुड सिंगर भी है इसमें एक। अरे बॉलीवुड सिंगर भी है।
14: अरे हाँ हाँ हाँ, हाँ, हाँ। कैसे
13: मतलब वो तो लाइन भी एकदम सही, बहुत ही मस्त
14: और एक्चुअली उनका वो पॉपुलर हुए थे न्यूजीलैंड के ही गाने पे।
13: न्यूजीलैंड के गाने पे
14: मतलब न्यूजीलैंड पे शूट हुआ था उस गाने पे, और एक्चुअली काफी रिलेटेबल भी है।
13: आई एम टॉकिंग अबाउट लकी अली।
14: पहले ही रिवील कर दिया।
13: हां ना, तो ढूंढो ना वीडियो में जाके।
14: अच्छा, सेलिब्रिटी की मदर कौन है ये आप 5599 में बताइए।
13: वो भी है, एक सेलिब्रिटी है, बहुत ही सुपर सेलिब्रिटी है, उसकी मदर भी है, ठीक है। वो है, प्राइम मिनिस्टर है हमारे, एंड ऐसे बहुत, और हर एक केतन ने खुद शूट किया है इनको, ऐसा नहीं कि कहीं से ये लिया है, ये केतन उनके साथ है तो उनका उससे वीडियो लिया है। और कौन है बीच
14: में? मतलब कोई भी स्टॉक वीडियो नहीं है, कोई भी मैंने कहीं से उठाया नहीं है।
13: भंगड़ा वाला ग्रुप कौन सा है?
14: भंगड़ा वाला है पंजाब करके ग्रुप है, शरण जी, शरणदीप जो है ना, उन्होंने हेल्प करी है मेरे को। तो ऑब्वियसली बहुत ही डाउन टू अर्थ बंदा है, और उसने शरण भाई ने इतनी ज्यादा हेल्प करी है।
13: वो साथ में ढूंढ रहा है ग्रुप का नाम क्या है।
14: नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले पंजाबी में लिख के भेजा, पाजी पंजाबी पढ़ने नहीं आती मेरे को। फिर मैंने ट्रांसलेटर, क्योंकि उनका वो बहुत बिजी है, वो रिप्लाई बहुत टाइम लगता है।
13: बैक टू बैक इवेंट्स है।
14: सुरिंदर संधू फ्रॉम रू पंजाब दी, ये मनुरेवा में है।
13: या, और ये बहुत सारे भंगड़ा कॉम्पिटिशन, गिद्दा कॉम्पिटिशन करवाते रहते हैं।
14: एक्चुअली खास बात पता क्या, मैं एक्चुअली बोलूंगा, अगर रू पंजाब अगर जाना है, रू पंजाब दी, अगर लोगों ने अभी वैसे GTA 6 आ रहा है गेम, राइट, अगर जिन्होंने भी GTA 5 खेला है तो वो काफी रिलेटेबल लगेगा। जो एक कैरेक्टर होता है जिसके पास जो थोड़ा हट्टा कट्टा होता है, यंग होता है कैरेक्टर, GTA 5 आपने खेला है?
13: नहीं,
14: उसमें तीन कैरेक्टर होते हैं, एक होता है विलेजर, एक होता है एकदम रिच वाला, और एक होता है मिडल वाला। वो मिडल वाला यंग होता है, उसका एक घर होता है, घर में एक डॉग भी होता है, बुलडॉग बोले पता नहीं क्या क्या कैटेगरी मुझे पता नहीं। उस घर में रू पंजाब दी, वो एक्चुअली उन्होंने घर को वैसा बना रखा है कि वहां पे ड्रेसेस पंजाबी के, तो वहां पे सेम कुत्ता, सेम डॉग, कुत्ता पता नहीं
13: होता है, कोई
14: कुत्ता बुरा मान जाएगा। कुत्ता किसका बुला रहे? बट एनीवेज, वो सेम डॉग सेम लुक लाइक घर भी एंड बाउंड वो बाइक भी पड़ी उनके पास
13: रूपन जाति के पास okay.
14: हाँ मतलब अंदर है बाइक वो भी सेम मैं कहा बंदा मैं कहा आपने मेरे को लग रहा है काफी टाइम बिताया है तो वो भी स्माइल हंसने लगे जवाब तो खैर दिया नहीं उन्होंने कुछ वो तो यहाँ के कलेक्टिव जो गुजराती हैं कुछ पंजाबी हैं
13: वो है
14: ड्रेस जो उन्होंने पहनी है वो रूप पंजाब दी है
13: वो उनकी है एंड वो जो बॉलीवुड डांस जिन्होंने किया है वो कौन है
14: वो है केशा का ग्रुप केशा खोटे सिक्के
13: ओके खोटे सिक्के सो देयर आर मल्टीपल ओवर देयर इनफैक्ट आप जाके वीडियो देखिए एंड देन यू विल फिगर आउट बहुत कुछ है उसमें सो व्हाट यू हैव टू डू इज यूट्यूब पे जाओ सफायर 2.0 केतन सर्च करो एंड यू विल गेट द वीडियो
14: यार एक अपन भी वीडियो बनाते हैं इस पे और अभी डालते हैं सोशल मीडिया पे
13: एंड यहां पे ये गाना भी आपके लिए प्ले कर रही हूं मैं इन केस यू मिस्ड आउट

0: चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avana.co.nz.
6: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस, एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक, योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एट अश्योर वन, नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड, नथिंग इज मिस्ड, नथिंग फॉरगॉटन, बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस, द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल। अश्योर वन, प्लान फॉर टुमारो टुडे। कॉल 0800-77-HEERA। नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड, ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर।
7: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
8: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है, सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
7: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए, मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
8: पर डेवलपमेंट के पैसे
7: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा।
5: NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800-4

3:23 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं you're humming along with Sandy right now and आपके सुपर सिटी में इसी सैटरडे को राहत फतेह अली खान ये लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. बहुत ही सुपर्ब शो इनका रहने वाला है आपके सुपर सिटी में. सो इससे पहले कि टिकट्स आपके हाथ से निकल जाए, मेक श्योर कि ये टिकट्स आप यहाँ पे ज़रूर खरीद रहे हैं. राहत फतेह अली खान 25 जुलाई ट्रस्ट अरीना में इनकी जो परफॉर्मेंस है ये होने वाली है. एंड जितना मैंने सुना है शो के बारे में कि इस शो का जो फॉर्मेट है बहुत ही डिफरेंट होने वाला है. डिफरेंट सेगमेंट्स में इस शो को डिवाइड किया गया है जहाँ पे यू कैन एन्जॉय इवन सूफी गाने, कवाली भी, बॉलीवुड सॉन्ग्स, एवरीथिंग एक्चुअली में आप जो है इन्जॉय कर सकते हैं वहाँ पे. सो ट्रस्ट अरीना में 25 जुलाई को शाम को ये शो शुरू हो जाएगा 7 बजे. सो जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शेरजादा प्रोडक्शंस आपके लिए लेके आ रही है शो. टिकट्स अपनी बाय कर लीजिए फ्रॉम dryticketsdotcom. राहत फतेह अली खान की आवाज में दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. इमेजिन कीजिए ये गाना लाइव एक जगह पे ट्रस्ट अरीना में इस गाने को सुनना. इट्स एक्चुअली अ टोटल डिफरेंट फील. बट फॉर नाउ एंजॉय ऑन रेडियो.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स Breakfast show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The breakfast show with VJ and Pooja.

3:37 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं 26 जुलाई इट इज। वाइल इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बोला है कि वो प्रोटेस्ट रोकने नहीं वाले हैं, तो पुलिस का जो क्रैकडाउन हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स जो है इनकी हालत ख़राब है, काफ़ियों को एडमिट किया गया है। वन गर्ल एक्चुअली में ICU में है, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि इससे ये जो किया गया है इससे वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं एंड अब वो प्रोटेस्ट इतनी जल्दी तो रोकने नहीं वाले हैं। वेल बैक हियर इन न्यूजीलैंड यूथ के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है इसे अब पब्लिक किया जाएगा। जो वेट टाइम है बेसिकली फॉर यूथ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इसे पब्लिक किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है ये शुरू कर रही है पब्लिकली रिपोर्टिंग द वेट टाइम्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हु आर सीकिंग स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ एंड एडिक्शन सर्विसेज। सो ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इम्प्रूव कर सके एंड अकाउंटेबिलिटी ले सके। इट्स ऑल अबाउट अकाउंटेबिलिटी। हेल्थ मिनिस्टर जो है साइमन ब्राउन, इनका कहना है कि जो फैमिलीज है ये डिजर्व करती है टू नो कि कितने यंग लोग जो है वेट कर रहे हैं फॉर स्पेशलिस्ट मेंटल हेल्थ सपोर्ट। ये जो डाटा है ये शो करेगा कि कितने क्विकली बच्चों को और टीनेजर्स को असेस किया जा सकता है बाय स्पेशलिस्ट सर्विसेज एंड उनको कितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिल सकता है। जो एम है ये है टू आइडेंटिफाई एरियाज जहाँ पे सर्विसेज अंडर प्रेशर है एंड इनक्रेज कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट अक्रॉस द हेल्थ सिस्टम। नाउ ये मैटर क्यों करता है, बिकॉज जो यंग पीपल है वो आर करंटली एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट वेट फॉर द स्पेशल मेंटल हेल्थ कंपेयर्ड विद अदर एज ग्रुप। जो लेटेस्ट मॉनिटरिंग है ये शो करती है कि ओनली 69.9% ऑफ पीपल एज बिटवीन 0 to 18 दे वर सीन बाय स्पेशलिस्ट सर्विसेज विद इन 3 weeks एंड कम्पेयर टू 80.9% अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप। अब जब हम 0 to 18 कहते हैं तो ऑफकोर्स 0, 1, 2, 3 ईयर के तो वहाँ पर नहीं जा रहे होंगे, बट देन इट्स अ डाटा विच एक रेंज होती है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो रिपीटेडली उन्हें वॉर्न किया गया है, उन्होंने वॉर्न किया है अबाउट द लॉन्ग वेटिंग लिस्ट एंड लिमिटेड एक्सेस है, जिसकी वजह से काफ़ी यंग लोग जो है उन्हें उस समय पर हेल्प नहीं मिल पाती है जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसी को इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअली में काम किया जा रहा है। इन केस यू डोंट नो, अगर आपको कभी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, इमीडिएट सपोर्ट, एग्जांपल आपको चाहिए, यू नॉट फीलिंग गुड, आपको यू नो कभी कभी होता है कि करियर को लेके, लाइफ को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके ओवरवेल्म फील करते हो, एंक्शियस फील कर रहे हैं, यू वरीड अबाउट समथिंग विच इज़ गोइंग ऑन, दुनिया में कुछ चल रहा है वो आपके ऊपर अफेक्ट हो रहा है, तो देर इज़ हेल्प अवेलेबल इन न्यूजीलैंड जो कि टोटली फ्री होती है। आप इमीडिएट सपोर्ट भी ले सकते हैं। इफ़ यू नीड टू टॉक यू कैन कॉल एंड यू कैन टेक्स्ट ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट अ कॉल पर्सन, आप हमेशा टेक्स्ट कर सकते हैं। इट इज़ 24/7 अवेलेबल, 1737 इज़ अ नंबर। ये एक फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट है फ्रॉम ट्रेंड काउंसलर्स। 1737 इज़ अ नंबर। मैं तो कहती हूँ कि इस नंबर को ना आपको याद रखना चाहिए, और ये जो नंबर है अगर आपके बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं अगर आपके बच्चे, तो उनको भी इसके बारे में आपको एजुकेट करना चाहिए। बट रिमेंबर यूथ लाइन भी है यंग लोगों के लिए, दे कैन ऑलवेज कॉल ऑन 0800-376-633 और दे कैन टेक्स्ट ऑन दिस नंबर 234। ये जो सपोर्ट है ये यंग लोगों के लिए है एंड ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स फॉर नाउ एंड द फ्रेंड्स हु आर सपोर्टिंग दैम। एंड एक और वैसे सर्विसेज है जिसका नाम है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप जो है ये बच्चों के लिए और यंग लोगों के लिए है अगेन, जहाँ पे ऑनलाइन चैट भी अवेलेबल होती है। सो व्हाट्सएप की जगह व्हाट्सअप है ये। बाकी और भी बहुत सारी एक्चुअली में सपोर्ट ऑप्शंस है, बट फ्यू नंबर्स यू कैन जस्ट रिमेंबर एंड सेव, बिकॉज कभी अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या फिर किसी नोन को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो नंबर्स है आप उनको रेफ़र कर सकते हैं।

0: Bollywood.
1: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: It's time for the bad boys chilling like a willy.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 14 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। मौसम आज का थोड़ा क्लाउडी जरूर है, बारिश होने के चांसेस बने रहेंगे। सनसेट आज का 5:29 पर।

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Ooper. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj katenge, garda paad denge. Ow!
3: 4:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप और आपका डे आज का कैसा जा रहा है? अगर आज आपका बर्थडे है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है तो अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. आपको बता दें कि हमारा जो बाली एंड बैंकॉक का ट्रिप है ये अगले मार्च में होने वाला है. सो 2027 में जब ईस्टर वीकेंड होगा उस समय पर ये ट्रिप होने वाला है सन टूअर्स के साथ जो हम कर रहे हैं मैं और रुज़बे. एंड इस ट्रिप में एक फुल पैकेज जो है सन टूअर्स ने बनाया है जिसमें फ्लाइट टिकट्स है, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं, 5-star अकोमोडेशन है, तीनों टाइम का खाना है, सब कुछ है. सो एक ही बार बेसिकली आपको पे करना है. एंड इस फुल पैकेज को आप मेरे और रुज़बे के साथ वहाँ पे एक एडवेंचरस ट्रिप में जिसे हमने ज़िंदगी ना मिले कि दोबारा टाइप ऑफ ट्रिप का नाम दिया है वो आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं. सो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 0800 सन टूअर्स आप इस पर भी कॉल कर सकते हैं और यू कैन जस्ट टाइप ड्राइव ऑन 5599. ऑटो रिप्लाई में आपको फॉर्म मिलेगा जो आपको फिल करना है. इसमें आपको अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम फिल करना है, दैट्स इट. सो दैट अनिल भाटिया फ्रॉम सन टूअर्स ये आपसे बात कर सके, आपको जो चार्जेस है, जो प्राइस है इस ट्रिप की वो आपको वो भेज सके. सो ड्राइव लिख के आपको भेजना है 5599 पर. और भी ढेर सारी बातें करेंगे. वैसे आज हम स्क्विरल मॉर्गेजेस में भी हम बात करने वाले हैं. अगर इस टाइम पे आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, बेचने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इस सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. उसके लिए भी स्टे ट्यून बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में इस सेगमेंट में आपके लिए रहती है. अभी चाहे वैलिड हो ना हो आपकी लाइफ में वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसे काफ़ी कुछ आपको समझ में आता है जो आने वाले फ्यूचर में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यहाँ पे एक शो जो होने वाला है अगले महीने अगस्त में होने वाला एक शो, उसके लिए पास जीतने का मौका भी आपको मिलने वाला है. एनी गेस कौन सा शो है ये जिसके बारे में हम काफ़ी समय से वैसे यहाँ पे बात कर ही रहे हैं? वेल, वो शो के पास जीतने का मौका भी आज आपको यहाँ पे मिलने वाला है. Stay tuned. 3, 4.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rova, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
3: Trades and business owners can now build big rewards with new PowerPass Pro Rewards by Bunnings. Earn Pro Reward dollars on eligible items to redeem off future purchases. The more you spend on qualifying items, the closer you get to that next level of rewards. Unlock tiered benefits to access fuel discounts with mobile card. Plus get exclusive member gifts, offers and loads more. Minimum spend limits and exclusions apply. See website for eligibility and all T's and C's. Sign up to PowerPass Pro Rewards today.
4: What if your next holiday wasn't just a holiday,
5: but the adventure everyone talks about?
4: Imagine chasing waterfalls,
5: wandering lush rice terraces,
4: catching unforgettable sunsets,
5: and relaxing at iconic beach clubs.
4: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
5: discovering incredible temples,
4: tasting world-famous street food.
5: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
6: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
7: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
8: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
7: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
9: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
10: Are you ready to go home?
11: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Bukikoi. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
12: 4:19 हो चुके हैं. सुपर से ऊपर आप यहाँ पर सुन रहे हैं. एक इवेंट आपके सुपर सिटी में होने वाला है, गरबा नाइट. गरबा नाइट विथ राज गढ़वी, जो कि 1 अगस्त को होगा महात्मा गांधी सेंटर में. तो जल्दी से टिकट खरीद लीजिए eventstickets.co.nz पे जाके, बिकॉज ये जो इवेंट है ये एक अनफॉरगेटेबल नाइट रहने वाली है, डांस मस्ती की एंड ढेर सारी सेलिब्रेशन की भी. सो टिकट्स आर एक्चुअली सेलिंग वेरी फास्ट. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्वप्निल से आप बात कर सकते हैं 0224394736 पर. वेल, यहाँ पर भी चांस है इस इवेंट के लिए टिकट जीतने का. सो अगर गरबा नाइट विद राज गढ़वी, इस इवेंट के लिए आपको टिकट जीतनी है, आपको

0: करना क्या है, आर जी एज इन राज करवी, आर जी नॉट जे, जी है ये, सो आर जी, और उसके बाद अपना नाम लिख के भेजिए 5599 पर और आपका नाम इस ड्रॉ में चला जाएगा जहाँ पे आप डबल पास जो है इस ब्यूटीफुल इवनिंग का, इस बहुत ही अच्छे इवेंट का जो डबल पास है ये आप जीत सकते हैं। सो आर जी स्पेस योर नेम बस आपको लिख के भेजना है, 5599 इज अ नंबर जहाँ पे ये मैसेज आपको करना है। थोड़ी देर में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोर्गेज एडवाइज़र सुनील चंद्रा के साथ जो कि स्क्रिल मोर्गेज से है। एंड यू नो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, सो डिस्पाइट मैनी फर्स्ट होम बायर्स हैविंग लेस देन 20% डिपॉजिट, अगर 20% डिपॉजिट से कम है तो उनके लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहती है ताकि बेटर मोर्गेज रेट या डिस्काउंट जो है ये आपको मिल सके। सो यूजली 20% डिपॉजिट होता है, लेकिन अगर उससे कम है तो कैसे आप इसमें मैनेज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड बात करने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में, सो स्टे ट्यून्ड। तब तक इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर गरबा नाइट की टिकट आपको जीतनी है, आर जी स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599।
1: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड, गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ, मैं लाऊं अपना ए गेम। ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स।

0: बॉलीवुड मोस्ट वांटेड सॉन्ग आप यहाँ पे सुन रहे थे। 424 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर में मेरे साथ यहाँ पे सुनील शामिल हो जाएंगे फ्रॉम स्क्विरल मॉर्गेजेस, एंड यस मेरे साथ शामिल हो चुके हैं। अ वेरी गुड आफ्टरनून सुनील, कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया सैंडी जी, और सब लिसनर्स को भी मेरा गुड आफ्टरनून
0: एंड गुड आफ्टरनून। सुनील, यू नो हमारे पास अक्सर इसके बारे में सवाल आता है बहुत बार, एंड सोचा कि यही आपके लिए इस बार हम लेके आते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिसनर्स के साथ शेयर भी किया है कि डिस्पाइट मैनी फर्स्ट होम बायर्स दे हैव लेस देन लाइक 20% डिपॉजिट, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती है टू हेल्प देम एक्सेस बेटर मोर्गेज रेट या डिस्काउंट? इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती है?
1: जी देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस तो हैं, तो मैं एक एक करके वो आपको बताता हूँ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट होता है क्यांगा और फर्स्ट होम लोन। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी इनकम एज ए सिंगल एप्लीकेंट 95,000 या उससे लेस है और एज ए जॉइंट एप्लीकेंट 150 या लेस है, तो आप इस स्कीम के थ्रू इवन 5% पे स्पेशल रेट्स बैंकों से ले सकते हैं।
0: ओके
1: और जो दूसरा ऑप्शन है, आप एज अ फर्स्ट होम बायर जरूर एक्सप्लोर कीजिए कि कोई गारंटर या आपको कोई फैमिली सपोर्ट मिल सकती है। तो आपके किसी रिलेटिव के पास कोई प्रॉपर्टी अगर है, अगर वो गारंटी देना चाहे तो बैंक उसको मान के आपका डिपॉजिट 20% तक कंसिडर कर सकता है। इस बेस पे भी आपको बैंक से अच्छे रेट मिल सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है, न्यू बिल्ड या आपका घर रिसेंटली बिल्ड है या 6-स्टार एनर्जी रेटेड है, तो एक बैंक है जो स्पेशली इसके लिए स्पेशल रेट्स ऑफर करता है। तो लिसनर को मैं बोलूंगा आप जरूर देखिए, जो 6-स्टार एनर्जी रेटेड वाला है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये मार्केट में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है।
0: ओके
1: और जो जी और जो नेक्स्ट वन है वो है वर्क प्लेस पैकेज। अभी कुछ एम्प्लॉयज के कुछ स्पेसिफिक बैंक के साथ पैकेजेस होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक केस करवाया जहाँ पे एक बैंक के साथ हमारे कस्टमर का वर्क प्लेस पैकेज था, तो इवन दो उसका डिपॉजिट 10% था, बैंक ने स्टिल उसे 0.25% स्टैंडर्ड रेट पे डिस्काउंट दिया।
0: ओह वाओ, ओके। तो इसके लिए क्वालिफाई होने के लिए यू जस्ट नीड टू चेक विद योर कंपनी, अपने वर्कप्लेस के साथ आपको चेक करना है उनका टाई अप किन के साथ है।
1: उनके साथ भी कर सकते हैं या आप अपने एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं। आपका एडवाइजर भी बैंक से ये पता कर सकता है कि आप कंपनी का उनके साथ पैकेज है या नहीं।
0: ओके ओके, दिस इज अ इजी वन एक्चुअली में
1: जी। और एक लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा डिपॉजिट होता है 10% होता है, कभी 15% होता है। तो मार्केट में ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे 10% स्पेस में कुछ बैंक्स दूसरे बैंकों से ज्यादा कम्पिटेटिव है और 15 और लेस में वो दूसरे बैंक कम्पिटेटिव है। तो लिसनर्स को मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें बिफोर कमिटिंग टू अ पर्टिकुलर बैंक।
0: ओके ओके, सो इसमें मेरे को सुनील ये बताइए कि एक मोर्गेज एडवाइजर इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं टू फर्स्ट होम बायर टू फाइंड द बेटर डील्स, जब वो रेदर देन गोइंग डायरेक्टली टू वन बैंक, यू नो टू अवॉइड द कंफ्यूजन एज वेल एंड टू गेट द प्रॉपर गाइडेंस।
1: देखिए, एज ए मोर्गेज एडवाइजर आप हमसे बात कीजिए। तो हमारा मेन एडवांटेज है कि आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन हमारे साथ करनी है और बेस्ड ऑन द फैक्ट्स और जो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं, वील टेक यू टू द बेस्ट बैंक, क्योंकि हम सब बैंकों से डील करते हैं तो हमें पता है कि एप्लीकेशन कहाँ पे फिट होगी और सबसे अच्छे रेट कस्टमर क्लाइंट को मिलेंगे।
0: ओके, तो वो क्योंकि एक्सपीरियंस होता है विद डिफरेंट बैंक, सो यू कैन एक्चुअली गाइड देम कि ओके यहाँ पे आपका जो फिट होता है।
1: जी
0: ओके नाइस। एंड अगर किसी को इन टच होना है आपसे, यू नो बात करनी है इसके बारे में, तो किस नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं?
1: देखिए, जो बेस्ट है वो मेरा नंबर है एंड एक मिनट रुकिए, वैसे आप हमारी वेबसाइट squirrel.co.nz पे भी जा सकते हैं
0: और मैं आपका नंबर यहाँ पे बोल सकती हूँ, मेरे पास है आपका नंबर।
1: हाँ
0: तो मैं ठीक है, मैं आपका नंबर बोलती हूँ, इट्स 0275337745। इट्स 0275337745।
1: जी
0: ठीक है।
1: और आप मुझे एक डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल है sunil@squirrel.co.nz।
0: परफेक्ट, थैंक यू सो मच सुनील यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए, एंड जल्दी आपसे बात होगी।
1: थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू, बाय
1: बाय,
0: बाय
1: बाय।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड जो भी करते हैं हम प्ले biggest hits. Are you ready? Chartbusters.
3: थोड़ा तो हॉल बना दे.

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 22 मिनट बाकी है 5 बजने में एंड रिमेम्बर अभी भी एंट्रीज इस आवर में एक्चुअली में एंट्रीज आप भेज सकते हैं. 5 बजे के बाद एंट्रीज आप नहीं भेज सकते. अगर आप गरबा नाइट विद राज गढ़वी इसके लिए टिकट जीतना चाहते हैं, डबल पास अगर आप यहाँ पे जीतना चाहते हैं, ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हाउसफुल जाने वाला है. सो डबल पास जीतने के लिए RG एज इन की राज गढ़वी RG आपको लिखने भेजना है. काफ़ी लोगों ने RJ लिखा है, जे आपको नहीं लिखना है. RG आपका नाम एंड द नंबर इज 5599, बस इतना सा आपको करना है. यहाँ पे आपको जो अपना मैसेज है ये भेजना है. आपको ऑल्सो बताऊं कि आपकी कम्युनिटी में क्या क्या हो रहा है. वैसे एक बहुत ही अच्छी हेल्थ वेलबींग एक्सपो होने वाली है बाय फिजी गिमेंट फाउंडेशन न्यूजीलैंड, जो कि इसी संडे को 26 जुलाई को होगी A1 इवेंट सेंटर में. सो वहां पे आप ज़रूर पहुंचेगा. मेरे को लगता है कि ये एक ऐसी वर्कशॉप है जो आपको और आपके घर में अगर एल्डरलीज है उनको भी साथ में लेके जाइएगा. वहाँ पर फ्री स्क्रीनिंग होने वाली है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी, ECG, आई टेस्ट के लिए. देन वहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी ऑन कैंसर स्क्रीनिंग एंड अर्ली सिम्टम्स फॉर प्रोस्टेट हो गया, सर्विकल, देन ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसके बारे में प्रैक्टिकल लर्निंग भी है वहाँ पे अबाउट CPR, EpiPen, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस रहेंगी, ईजी योगा वहाँ पे रहेगा, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी वहाँ पे, सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस के बारे में, गैम्बलिंग एंड अल्कोहल के बारे में. सो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे एट द साइट रहने वाले हैं. इनफैक्ट वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है ऑन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डाइटिशियन एडवाइस, स्ट्रोक, एल्डर केयर, एलर्जीज़ के बारे में, इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में. फ्री फन है फॉर द होल फैमिली एज वेल, बिकॉज वहाँ पे फेस पेंटिंग, किड्स एक्टिविटीज़, लाइट रिफ्रेशमेंट्स होंगे, हैम्पर्स, गिव अवेज, सो लॉट ऑफ स्टफ इज़ गोइंग ऑन ओवर देयर. सो यू कैन एक्चुअली गो एंड विजिट 26 जुलाई को A1 इवेंट सेंटर, जो कि 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोई में लोकेटेड है, वहाँ पे आपको पहुँचना है. द टाइमिंग इज बिटवीन 10 AM टू 3 PM. बट फॉर नाउ रिमेंबर RG स्पेस अपना नाम लेके भेज डालिए 5599 पर अगर गरबा नाइट विथ राज गढ़वी इसकी टिकट आपको जीतनी है.

0: tablets from only $7.99 on sale now. Throwback.
1: 449 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं थ्रोबैक में 2000s के गाने आप यहाँ पे सुनते हैं और आज ट्रेंड मेकर्स में 6 बजे के बाद फुल रिकमेंडेशन आवर रहने वाला है बिकॉज मर्डर मिस्ट्री मूवीज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. सो बॉलीवुड की ऐसी मूवीज जो कि मर्डर मिस्ट्रीज के ऊपर बनी है इन मूवी के गाने आपके लिए प्ले होंगे और इन मूवीज के बारे में बात भी यहाँ पे होगी. सो इफ यू आर द वन जो इस समय पर कोई ऐसा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी तलाश कर रहे हैं देखने के लिए तो ऐसी मूवीज की लिस्ट वहाँ पे होगी. अगर आप अपनी लिस्ट वहाँ पे जोड़ना चाहते हैं 5599 इज अ नंबर जहाँ पे बॉलीवुड की मर्डर मिस्ट्री आज आप रिकमेंड कर सकते हैं.

0: Koki Koi. Sleepyhead Sleepy Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Power Drive at 5.
2: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rizvi.
3: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
4: पांच बज के दो मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. पावर ड्राइव एट फाइव आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैनी राइट नाउ. एंड स्कूल अटेंडेंस के बारे में, यहाँ पे न्यूजीलैंड की स्कूल अटेंडेंस के बारे में एक आर्टिकल आया है कि गवर्नमेंट जो है ये एक्चुअली में पुश कर रही है हायर अटेंडेंस के लिए, लेकिन एक्सपर्ट है ये वार्न कर रहे हैं कि जो एब्सेंस है इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ डीपर इश्यूज जो स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज इस समय पर फेस कर रहे हैं. सो न्यूजीलैंड जो है इस समय पर एक टफ अप्रोच ले रहा है स्कूल अटेंडेंस को लेके, जहाँ पे जो गवर्नमेंट है ये एम कर रही है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है ये क्लासरूम्स में होने चाहिए. लेकिन जो एजुकेशन एक्सपर्ट्स है ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि फोकस जो है रेदर देन हैवली ऑन अटेंडेंस नंबर, ये रिस्क करता है ओवर लुकिंग द रीजन्स कि वाई सम चिल्ड्रन आर मिसिंग स्कूल इन द फर्स्ट प्लेस. कि रेदर देन कि इतनी अटेंडेंस होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए इशू के ऊपर कि बच्चे मिस क्यों कर रहे हैं स्कूल. सो अंडर न्यू अटेंडेंस टारगेट जो गवर्नमेंट है, इनको 80% ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए अटेंडिंग द स्कूल मोर देन 90% ऑफ द टाइम बाय 2030. जो स्कूल्स हैं दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अटेंडेंस मैनेजमेंट प्लान जो कि इसके ऊपर वो काम करने वाले हैं. लेकिन ये अटेंडेंस अचानक से इसका फोकस जो है ये क्यों बना हुआ है, जो रिसर्च है यहाँ पे ये बताती है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अटेंड करते हैं स्कूल रेगुलरली जनरली हैव बेटर एजुकेशनल आउटकम्स एंड वेलबींग. न्यूजीलैंड फेस कर रहा है काफ़ी समय से एक कंसर्न कि जो अटेंडेंस रेट है ये डिक्लाइन होता जा रहा है विद क्रोनिक एब्सेंस बिकमिंग अ मेजर इश्यू. सो एक एजुकेशन रिव्यू ऑफिस रिसर्च हुआ था जिन्होंने पाया कि जो क्रॉनिक एब्सेंस है ये इंक्रीज़ हुआ है ओवर द पास्ट डेकेड, यानी कि पिछले 10 सालों में ये इंक्रीज़ हुआ है विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लर्निंग टाइम. सो इसमें वार्निंग मिली है कि जो लॉन्ग टर्म एब्सेंस होगी उसे अचीवमेंट अफेक्ट हो सकती है स्टूडेंट की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इवन द वेलबींग. सो रीसेंट एनालिसिस आर्ग्यू करता है कि सिंपली अगर हम अटेंडेंस फिगर को मेजर करते हैं ये रियल कॉज को एड्रेस नहीं करता है कि स्टूडेंट्स मिस क्यों कर रहे हैं. बच्चे मे बी एब्सेंट है बिकॉज मेंटल हेल्थ स्ट्रगल एंड एंग्जाइटी चल रही है, बुलिंग फेस कर रहे हैं वो स्कूल में जहाँ पे वो अनसेफ फील करते हैं, इलनेस हो सकती है विद यू नो पिछले कुछ सालों में क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस काफ़ी लोगों के लिए रीज़न बना है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, फाइनेंशियल हार्डशिप हो सकती है, हाउसिंग इंस्टेबिलिटी हो सकता है फैक्टर, फीलिंग डिसकनेक्टेड फ्रॉम लर्निंग इज अनदर थिंग जो काफ़ी बच्चे फेस करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अटेंडेंस शुड बी ट्रीटेड एज अ सिग्नल कि समथिंग इज रॉन्ग. इट शुड नॉट बी फोकस्ड कि भाई अटेंडेंस इतनी परसेंटेज होनी चाहिए. अगर अटेंडेंस कम है ये सिग्नल है कि समथिंग इज रॉन्ग, तो फोकस होना चाहिए उस प्रॉब्लम के ऊपर, उसको सॉल्व करने के ऊपर होना चाहिए रैदर कि अगर अटेंडेंस कम है तो तुम्हें पेनल्टीज होंगी. हो सकता है कि हम किसी की स्ट्रेस जो है ये और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. आपका क्या टेक है इसके बारे में? यू माइट बी अ पेरेंट एंड मे बी आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम करते हैं. आपका इसके अराउंड क्या एक्सपीरियंस है? आपका इसके ऊपर क्या टेक है? इफ़ यू आर वर्किंग कहीं पर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो आपको आपने क्या ये फील किया है कि जो स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं उनकी अटेंडेंस कहीं की बहुत कम होती है विद वेरियस रीजंस. एंड इफ़ यू आर अ पेरेंट, आपके बच्चे अगर कम जाते हैं स्कूल में, उसका मेजर रीज़न ये जो लिस्ट है रीजंस की उसमें से बेसिकली क्या होता है? बुलिंग के बारे में मैंने काफ़ी यहाँ पे एक्चुअली में सुना है. सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसे एक बच्चा जो है कई बार थोड़ा अनसेफ सा फील करता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है कि मुझे यू नो उसी माहौल में वापस जाना है जहाँ पे कोई मुझे छेड़ रहा है, कोई मुझे इस वे से टॉन्ट कर रहा है. तो वहाँ पे अवेयरनेस एंड एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो उसके ऊपर काम अगर होता है, कैसे होता है, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट, मैं रियली एज अ पेरेंट आपका जो व्यू है वो जानना चाहती हूँ. सो यू नो इफ़ योर किड इज़ फेसिंग समथिंग जिसकी वजह से उसकी अटेंडेंस कम है, विदाउट टेकिंग योर नेम, अगर उसकी अटेंडेंस कम है स्कूल में, तो आपका मेजर रीज़न इसमें क्या होता है? सो आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कॉल करके 0800 00 हम पर 0800 00 4866, या फिर आप यहाँ पे मैसेज करके भी, इफ़ यू आर कंफर्टेबल जस्ट शेयरिंग अ मैसेज 5599 पर मैसेज करके भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ रीजंस बताए हैं इसमें से कोई आपका रीज़न है, आपके ऊपर अप्लाई होता है, आपके बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है, जहाँ पे मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स या एंग्जाइटी फेस करते हैं वो, बुलिंग या फीलिंग अनसेफ एट स्कूल फॉर वेरियस रीजंस, इलनेस के कारण ज़्यादा हो रहा है, या फैमिली स्ट्रेस है, या हाउसिंग इंस्टेबिलिटी है, या फिर सिंपली वो लर्निंग से बहुत डिसकनेक्ट फील कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बढ़ रहा है, यू नो कि मेरे को स्कूल में जाना है, वहाँ पे कुछ नया सीखना है, वो इंटरेस्ट ही इनके अंदर आ रहा है, तो आपका क्या रीज़न हो सकता है? आपको आपके बच्चे अगर ये फेस कर रहे हैं तो आप भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट वैसे स्टिल आर्ग्यू कर रही है कि इम्प्रूविंग अटेंडेंस जो है ये बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ही असेंशियल है। एसोसिएट एजुकेशन मिनिस्टर है डेविड सेमर, इन्होंने पहले अनाउंस किया था टफ मेजर्स लेने चाहिए, जिसमें पॉसिबल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए फॉर पेरेंट्स इन केस ऑफ सीरियस ऑनगोइंग नॉन अटेंडेंस। जो सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अकाउंटेबिलिटी इज़ नीडेड बिकॉज मिसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ स्कूल कैन हैव लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज। वेल, मेरे साथ है फोन लाइन पे, हाय, कैसे हैं आप?
5: हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो?
4: एकदम बढ़िया। आपका नाम नहीं पूछूंगी तो इसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहते हैं?
5: मैं भी ये कहने वाली थी कि मैं अपना नाम नहीं शेयर करने चाहती।
4: या ऑल गुड।
5: मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा बड़ा बेटा जो है वो अभी 8 साल का है। तो वो पहले काफी अच्छे से स्कूल जाता था, वो सुबह खुद से ही उठेगा जाने के लिए, पर अभी कुछ ही दिन से उसने जाना ऐसे, वो सुबह सुबह ड्रामे करेगा या रीजन कुछ बताएगा, कोई भी बहाना करेगा नहीं जाने का। तो मैंने एक दिन मैं उसे घुमाने लेकर गई थी, तो मैंने उसे बात बात में पूछा कि तुम अब स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते, तो फिर उसने बताया मुझे कि स्कूल में बुली बहुत होता है।
4: ओह माय गॉड।
5: हाँ, बुली बहुत होता है कि जैसे छोटी छोटी चीजों पे चिढ़ाना, धक्के देना, गिराना, ये काफी चीज होता है। लाइक सिर्फ उसके साथ ही नहीं, जब मुझे पता चला तो मैं उसके स्कूल गई थी, तब वहाँ पे मुझे पता चला कि बच्चे ऐसे ही करते हैं।
4: ओके।
5: तो जब मैंने टीचर से बात किया कि ऐसे कुछ स्टॉप करना, क्योंकि बच्चे आने से फिर मना करने लगते हैं, और जब मना करते हैं क्योंकि स्कूल में ऐसा होता है, तो फिर आप लोग ही कहते हो कि अटेंडेंस में प्रॉब्लम होता है।
4: 100% या, और ये कोई रीजन नहीं हुआ ना कि बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब कहीं पे तो वो स्टॉप होना चाहिए ना, एक बिहेवियर वहाँ पे एड्रेस होना चाहिए।
5: एग्जैक्टली। तो मैंने टीचर से भी बताया कि इसमें हमारी फॉल्ट नहीं है, अब अगर स्कूल के बच्चे ऐसे मेरे बच्चे के साथ करेंगे तो जाहिर सी बात है ना, उसकी नहीं, तो मैं भी, तो अगर मैं भी बच्ची होती तो मैं भी स्कूल नहीं जाना चाहती ना।
4: 100%.
5: तो मैंने उसे कहा कि ऐसे बिहेवियर अगर आप लोग ऐसे बच्चों को कहेंगे कि ये बिहेवियर स्टूडेंट का है, तो फिर हमें भी बताना, हम भी अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाएंगे ताकि वो डील कर पाए ऐसे स्टूडेंट से।
4: वाओ। तो उसके बाद कुछ हुआ क्या?
5: कुछ नहीं, मैंने 2-3 बार और मैं गई टीचर के पास, मैंने प्रिंसिपल को भी बताया, उन लोगों का यही कहना है कि अब बच्चे ऐसे हैं, हम पेरेंट्स से बात करते हैं, अगर वही नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे तो हम क्या करें। तो मैंने बस स्कूल ही चेंज कर दिया उसका।
4: इवेंचुअली मतलब कितनी बार आप चेंज करोगे ना स्कूल, सो ऐसा नहीं हो सकता कि यू नो कि अगर ये इशू हर जगह पे होता है, वहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया जाता है इसके ऊपर, तो वो उन बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है जो कर रहे हैं, और उसके भी लिए अच्छा है जिसके ऊपर हो रहा है, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। बिकॉज उसको रोकने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, तो उसको तो लग रहा है कि भाई ये तो नॉर्मल है, आई कैन डू दिस टू एनीवन,
5: मैं ऐसा करूंगा कोई कुछ नहीं करेगा।
4: या तो दोनों के लिए नहीं अच्छा है। तो स्कूल में से क्या होता है कि एक बच्चे का टाइम बहुत ज़्यादा स्कूल में स्पेंड होता है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स के सर पे, एंड इट्स नॉट ईजी जॉब। दिस इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट अ ईजी जॉब, जहाँ पे उनको स्टेप्स लेने होते हैं या क्या करना होता है। आई डोंट नो क्या स्टेप्स हो सकते हैं, बट आई थिंक ये आर्टिकल में फिर जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं कि कॉजेज के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते हैं।
5: सच्ची में लाइक जब ऐसे, क्योंकि ऐसे जब होता है तो स्कूल को कुछ करना चाहिए ना, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड वो खड़ा कर दे, वो फील्ड पे आंख रखे जब बच्चे बाहर निकले, ऐसे कुछ तो करना चाहिए.
4: देयर शुड बी सम मॉनिटरिंग गोइंग ऑन. या एनीवे, बट थैंक यू सो मच.
5: मॉनिटर रखना चाहिए.
4: या थैंक यू सो मच यहाँ पे कॉल करने के लिए. अच्छा एक बात बताइए आप, किसी ने मेरे को यहाँ पे मैसेज किया है, कैन यू आस्क हर व्हाट एरिया वाज दैट स्कूल, अगर आप कंफर्टेबल है बताने में.
5: मैंगरी.
4: ओके ठीक है, नो वरीज, थैंक यू सो मच.
5: थैंक यू.
4: या थैंक यू, बाय बाय. सो अभी अगर आपका कोई डिफरेंट व्यू है आप भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. आई हैव हर्ड अबाउट बुलिंग अ लॉट, कि ये अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में एक मेजर फैक्टर रहता है. यू नो बाद में वो अनकंफर्टेबल सा फील करते हैं कि उस सिचुएशन में हम वापस कैसे जाए, सेफ कैसे फील करें. तो या देन यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रैदर देन अटेंडेंस, जो रियल कॉज है कि बच्चे क्यों नहीं जाना चाहते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा मेजर्स होने चाहिए.

17 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुकी है. सिंस इस आर्टिकल के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही थी, यहाँ पे यू नो स्कूल में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस बहुत कम हो रही है. इसके वेरियस रीजंस है. एक पेरेंट ने यहाँ पे बुलिंग का जो एक रीज़न है वो भी शेयर किया जो उसके बच्चे ने फेस किया. देयर वॉज अनदर पेरेंट जिनका मेरे को ऑफर कॉल आया है एंड इन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है फॉर द पेरेंट्स आउट देयर कि अगर आप बुलिंग के बारे में रिपोर्ट करते हैं स्कूल में और कोई एक्शन नहीं होता है, डीएन इज़ द फर्स्ट वन जिसको आपको बाद में अप्रोच करना चाहिए. अगर वहाँ से भी कोई एक्शन नहीं होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आप एक्चुअली में रिपोर्ट कर सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देन आपकी जो अपील है इसको डेफिनेटली सुनती है. सो इन केस नथिंग इज़ हैपनिंग फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं.

0: idea.
1: Streaming on Rover.
2: Hum. Accurate traffic.
3: Delicious, tasty cookie dough bars.
4: Cloudy overnight for Auckland, a low of 8. On the northern, it's heavy from the city to Northcote Road. The northwestern slow from the city to Te Ata 2. Southern, looking pretty slow. Southbound from Grafton to Sylvia Park and heading north from Sylvia Park to Green Lane. Southwestern, we've got a breakdown. The right southbound lane blocked near the Walmsley Road off-ramp. So traffic very heavy heading south from before May Road.
3: Tasty cookie dough bars. A delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
5: Rebels end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See you live at T's and C's.
6: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured up front. Even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
7: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
8: क्यों, क्या हुआ?
7: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
9: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
10: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है.
11: हाँ. अच्छा,
10: बताओ तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं.
11: मिसेस सिंह.
12: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू. कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.nz.
13: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
14: Are you ready to go home?
15: The Drive Show with Sandy and Rusby. Brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
16: Power Drive at 5.
17: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen.
18: 5:26 at the moment yahan pe ho chuke hain and now is the time to participate in another competition. करण औजला, ग्लोबल सेंसेशन करण औजला बहुत ही जल्दी पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेके आपकी सुपर सिटी में पहुंचने ही वाले हैं. स्पार्क अरीना में 25th August, लेस देन अ मंथ रह चुका है, यहाँ पे वो लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. लास्ट टाइम जो मैंने इनका शो देखा था, नेक्स्ट लेवल का था गाइज. बहुत ही मज़ा आया था शो में जाके. क्या प्रोडक्शन थी यार, मतलब पूरे के पूरे शो की. शो से पहले इक्की ने वहाँ पे परफॉर्म किया. एकदम उन्होंने जो स्टेज थी ना, ये उन्होंने सेट कर दी थी करण औजला के लिए. सो देन एंट्री होती है करण औजला की एंड देन बैक टू बैक हिज सॉन्ग्स जो उन्होंने वहाँ पे गाए हैं सबके लिए. बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन थी. सो दिस टाइम आप ये शो मिस आउट नहीं करना चाहेंगे. hum.rova.nz पे जाइए, वहाँ पे स्क्रॉल डाउन, यू विल गेट द डिटेल्स कैसे आपको टिकट बुक करनी है. और यू कैन गो टू livenation.co.nz, यहाँ पे भी टिकट जीतने का चांस है आपके पास. वेल, वी आर वेरी काइंड एक्चुअली में, और टिकट्स आपके लिए हम लेके आए हैं, जीतने के चांसेस आपके लिए हम लेके आए हैं. आपको करना क्या है, इट्स वेरी सिंपल राइट नाउ. आपको के ए एज इन करण औजला, के ए स्पेस अपना नाम लिख के फिलहाल भेजना है 5599 पर. सो जस्ट सेंड के ए स्पेस योर नेम एंड द नंबर इज 5599. फिलहाल करण औजला का ये गाना सुनते हैं.
19: Put that coca on, baby.

से PMI 549 एट द मोमेंट हो चुके हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में. ये गाना जो आप सुनने वाले हैं, अरिजीत सिंह इज बैक. He's not back in the industry, but उन्होंने बोला था जब उन्होंने बॉलीवुड से रिटायरमेंट लिया हुआ है अरिजीत सिंह ने वैसे, लेकिन he said कि उनके जो कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं इनको कंप्लीट करने के बाद ही वो जाने वाले हैं. सो दिस इज द सॉन्ग फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे सुनने वाले हैं. आवारापन 2 के लिए अरिजीत सिंह को मतलब अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ा, बिकॉज आवारापन 2 मुझे लगता है कि ऐसा एक ऐसी मूवी है, इमरान हाशमी की मूवी है. एंड इमरान हाशमी की मूवीज़ जो होती है ये म्यूज़िकली हिट तो ज़रूर होती है. सो आवारापन 2 का ये गाना जो टाइटल सॉन्ग है रिलीज़ हुआ है, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है एंड अमाल मलिक ने कंपोज़ किया है.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Let's go! 3, 2, 1.
2: Trend Makers. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
3: Masti karenge, mauj katenge, garda paar denge.
4: ट्रेंड मेकर्स, फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं, 6:03 हो चुके हैं और आज ट्रेंड मेकर्स में थीम है मर्डर मिस्ट्रीज। सो यू नो, आज तो आपको फुल रिकमेंडेशन मिलने वाली है अगर आप मर्डर मिस्ट्रीज ये मूवीज देखना चाहते हैं। कुछ मूवीज के गाने मैं यहाँ पे आपके लिए प्ले भी करने वाली हूँ। सो अगर आपके पास रिकमेंडेशन है बॉलीवुड में ऐसी कौन सी मर्डर मिस्ट्री है जो बहुत ही अंडररेटेड है, तो मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे 5599 इज अ नंबर। To start off, अंधाधुन, ये मूवी अंधाधुन जो है इसे कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द बेस्ट डार्क कॉमेडी थ्रिलर्स एंड मर्डर मिस्ट्रीज इन इंडियन सिनेमा। इस मूवी को ये खिताब मिला हुआ है। और ये जो मूवी है इसमें जो आकाश का करेक्टर है, आयुष्मान खुराना का जो करेक्टर है बीच में आकाश नाम से, इसको मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट है ऐसा वो एक्ट करता है और उसके बाद इसके सामने हो जाता है एक मर्डर और वो कैसे एक्ट करना है उसको कि उसने मर्डर नहीं देखा है। वहाँ से एक्चुअली में कहानी जो है, ट्विस्ट एंड टर्न्स जो है ना, इस कहानी के शुरू होते हैं। और क्या ब्यूटीफुल वे से तब्बू ने भी इसमें एक्टिंग की है। तब्बू ने जो इसमें रोल प्ले किया है, एक रूथलेस रोल उसने इसमें प्ले किया है, मतलब ही मैनेजेस टू बैलेंस एक डार्क करेक्टर को। एंड इस मूवी में आयुष्मान खुराना जो है उन्होंने इस मूवी के लिए वैसे पियानो बजाना सीखा था। ही वॉन नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है और इस मूवी का जो एंड है ना, क्लाइमेक्स है, वो बहुत ही ओपन एंड है। अगर आपने नहीं देखी है मूवी, मैं एंड नहीं बताने वाली हूँ यहाँ पे, डोंट वरी। लेकिन एक बहुत ही ओपन एंड इन्होंने इस मूवी का क्लाइमेक्स रखा है जहाँ पे हर कोई अपना अपना उसका एंडिंग बनाते हैं, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन बनाता है। सो इट लीव्स अ रूम फॉर द इंटरप्रिटेशन। सो विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग, द लास्ट फ्रेम जो है, इट मेक्स यू क्वेश्चन अबाउट एवरीथिंग जो फुल मूवी में आपने देखा होता है और उसको रीइवैल्यूएट करने के लिए। कई बार तो बाद में आपको ऐसा होता है कि यार ये हुआ है तो इसका मतलब वो ऐसा था, तो फिर से जाके आपको कुछ सीन जाके देखने पड़ते हैं। सो इफ़ यू हैवंट वॉच अंधाधुन अभी तक, हाई टाइम इस मूवी को आप जरूर जाके देखिएगा। फिलहाल इसी मूवी का ये गाना है अमित त्रिवेदी की आवाज़ में।

ट्रेंड मेकर्स फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं एंड मर्डर मिस्ट्री इन मूवीज के बारे में बातें करते हैं तो बहुत सारी क्लासिक मूवीज भी है जिनके गाने तो नहीं प्ले कर सकती लेकिन गुमनाम 1965 की मूवी है एक क्लासिक इसे कह सकते हैं कि एक मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्री ये है. देन तीसरी मंजिल इज़ अनदर वन. दैट्स अ ब्यूटीफुल मूवी एक्चुअली में. मैंने ये मूवी यूट्यूब पे देखी है. इत्तफाक मूवी एक 1969 की है विच इज़ डायरेक्टेड बाय यश चोपड़ा. एक थ्रिलर मूवी है जहाँ पे एक्यूज मर्डर जो होता है ऑन द रन होता है. ही टेक रिफ्यूजी इन अ स्ट्रेंजर्स होम एंड देन देर इज़ अ खामोश मूवी जो कि 1986 में आई थी. नाउ ये जो मूवी का गाना आप सुनने वाले हैं ये दूसरी इत्तफाक मूवी है. ये जो इत्तफाक मूवी है ये एक्चुअली में 2017 में आई थी. इट वाज अ मॉडर्न रीमेक ऑफ यश चोपड़ा की 1969 की मूवी. इसमें अक्षय खन्ना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा जो ये तीनों की कास्ट थी. एंड इसमें जो सिद्धार्थ मल्होत्रा का करेक्टर होता है विक्रम, एक फेमस ऑथर है जो क्लेम करता है कि उसे फ्रेम किया गया है वाइल ही इज़ रनिंग फ्रॉम द पुलिस. एंड जो माया है वो एक यंग होममेकर है जो क्लेम करती है कि विक्रम उसके घर पे आया है एंड उसे होस्टेज बना के रखा है. अक्षय खन्ना अपने एब्सोल्यूट बेस्ट में है इस रोल में. ही प्लेज देव वर्मा, एक शार्प विटेड इन्वेस्टिगेटर है एंड उसके पास सिर्फ 3 दिन है इस केस को सॉल्व करने के लिए. सो इत्तफाक मूवी 2017 की अगर आपने नहीं देखी है तो या दिस इज़ अनदर मूवी जो अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं. थैंक यू बेनेफर ने बताया है उनकी जो मर्डर मिस्ट्री मूवीज़ है वो है गुप्त, तलवार, दृश्यम एंड अंजाम. आप भी अपनी लिस्ट भेज सकते हैं 555 पर.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: We've all been there. 6 p.m, traffic sucks, and that chicken for dinner, still frozen.
2: Ditch dinner dread and come home to HelloFresh. Tender kiwi lamb, salmon, juicy beef, and local produce, ready in the fridge when you are.
1: Take back dinner time with HelloFresh.
3: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
4: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
5: क्यों? क्या हुआ?
4: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछ ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
6: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800 564 424.
7: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that.

0: Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now.
1: Drive Show में Trend Makers में आज हम Murder Mysteries के बारे में बात कर रहे हैं. Well, Murder Mysteries के बारे में बातें करते हैं तो और भी बहुत सारी मूवीज जो आप देख सकते हैं, जैसे कि खिलाड़ी मूवी, एक्चुअली में 90s की मूवी है, जहाँ पे एक कॉलेज प्रैंक जो है इट गेट्स फेटली रॉन्ग, तो उसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है. देन देयर इज अनदर मूवी यार, 2007 में एक मूवी आई थी, मनोरमा 6 Feet Under. सो ये एक स्मॉल टाउन राजस्थान के ऊपर बेस्ड मूवी है, जहाँ पे एक जो इमेच्योर डिटेक्टिव या नोवल राइटर कह रहे हो अभी दियोले, इस मूवी में उसे हायर किया जाता है टू स्पाई ऑन अनफेथफुल हस्बैंड, लेकिन देन वो ट्रैप हो जाता है किसी चीज़ में. सो इस मूवी में मर्डर, करप्शन, कवर अप बहुत कुछ है. सो मनोरमा 6 Feet Under इज क्वाइट अंडर रेटेड मूवी, जो एक्चुअली में आप देख सकते हैं. नाउ दिस मूवी, अगर मर्डर मिस्ट्रीज के बारे में बातें करते हैं तो कहानी मूवी को हम कैसे भूल सकते हैं. कहानी जो है ग्रेट थ्रिलर है. इसमें जो विद्या बालन का रोल है, विद्या बागची का रोल है, एक हैवली प्रेग्नेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो लंदन से कोलकाता जाती है अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए. एंड इवन ऑफिशियल होटल मैनेजर, को वर्कर जिसे वो बात करती है, वो इंसिस्ट करते हैं कि जिसको वो ढूंढ रही है वो एग्जिस्ट नहीं करता है इंसान. देर इज़ 0 digital या फिजिकल फुटप्रिंट ऑफ हिम, मतलब कि कभी वो इंडिया में भी आया है. तो वहाँ से इसकी तलाश शुरू होती है. बहुत सारी मिस्ट्रीज जो है इस कहानी में देन अनफोल्ड होती है. सो कहानी मूवी अगर आपने नहीं देखी है, मस्ट वॉच. और क्लाइमेक्स पे तो हर, इट वॉज अ जॉ ड्रॉपिंग क्लाइमेक्स एक्चुअली इस मूवी का. सो दिस इज़ अनदर मस्ट वॉच मूवी.

टेबल नंबर 21 का गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे, जो कि अनदर एक ऐसी मूवी है जिसमें इफ यू लाई यू डाई ये गेम आप खेलते हैं. सो काफी मिस्ट्रीज इसमें भी अनफोल्ड होती है. द अदर फ्यू मिस्ट्री मूवीज जैसे कि तलवार, जो कि रियलिटी बेस्ड मूवी है, श्रुति टंडन एक 14 साल की बच्ची जो है जब उसका मर्डर हो जाता है अपने बेडरूम में, एंड उसके बाद यू नो हाउस हेल्प के ऊपर, नौकर के ऊपर एंड देन पेरेंट्स के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं. सो देन एक डबल मर्डर केस है एक्चुअली में. सो इस डबल मर्डर केस जहाँ पे डोमेस्टिक हेल्पर जो होता है हेमराज, उसकी भी डेथ होती है. सो कैसे कहानी अनफोल्ड होती है, इरफान खान है इसमें जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बने हैं, एंड इट्स अ रियलिटी बेस्ड और पूरी की पूरी कहानी जो इन रियल हुआ था उसी को इस मूवी में दिखाया गया है. मस्ट वॉच है ये. अगली मूवी इज़ अनदर वन अनुराग कश्यप की, जहाँ पे एक इवेंट होता है किडनैपिंग ऑफ अ चाइल्ड, एंड देन उसके बाद यू नो सिचुएशंस वर्स ही होती जाती है कहानी में. सो यू कैन वॉच दिस वन. देन दोबारा एक्चुअली में 2018 में ये मूवी आई थी, जहाँ पे 12 साल का अन्य जो है वो एक कैम कॉर्डर में यूज़ करता है, एंड देन यू नो समथिंग हैपन्स एंड वो उसमें स्टक हो जाता है. सो दिस इज़ अनदर दोबारा जो है एक अनदर मिस्ट्री कह सकते हैं, ऐसी काइंड ऑफ मूवी है. लेकिन अभी जो आप गाना सुनने वाले हैं, ये मूवी तो मेरे को लगता है कि मिस्ट्रीज़ में अगेन बहुत ट्रेंड करती है. दृश्यम मूवी, दृश्यम मूवी मास्टरपीस हम इस मूवी को कह सकते हैं. साउथ इंडियन मूवी जो कि हिंदी में बाद में रीमेक बनी. इट्स अबाउट द करेक्टर विजय सालगोनकर जो अपनी फैमिली को बचाता है. दिस मूवी इज़ एक्चुअली अबाउट फैमिली वर्सेस द लॉ. एक फादर कितनी लेंथ तक जा सकता है अपनी फैमिली को बचाने के लिए. और इसमें जो पुलिस का रोल किया है, जो तब्बू ने इसमें रोल किया है, कमाल का रोल इसमें भी तब्बू ने वैसे किया है. सो या इसमें द जीनियस डायलॉग्स भी इसमें रहे हैं. सो अगर आपने दृश्यम 1 या 2 नहीं देखी है, मेरे को तो दृश्यम 2 भी बहुत अच्छी लगी थी, तो ये दोनों मूवीज़ भी अपनी लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं.

ट्रेंड मेकर्स फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. कमिंग अप सॉन्ग है नो वन किल जेसिका का. नो वन किल जेसिका वॉज अनदर मूवी, हार्ड हिटिंग मूवी, जो कि मर्डर के ऊपर बेस्ड थी और ये रियल लाइफ स्टोरी थी. इनफैक्ट रंग दे बसंती उसी टाइम के अराउंड आई थी और उसका जो गाना है खून चला इतना हिट हुआ था कि जेसिका के लिए जब जस्टिस ले रहे थे लोग तो उस समय पर उस गाने को यूज़ किया गया था. जेसिका लाल जो है एक मॉडल थी एंड शी वॉज़ वर्किंग एक बार में बारटेंडर एंड वहाँ पे उसने एक ड्रिंक सर्व करने को मना किया था बिकॉज बार बंद हो रहा था जब उसे शॉट डेड कर दिया. एंड काफ़ी लोग थे आई एज अ आई विटनेस, लेकिन जो पर्सन इसको शॉट डेड किया था वो एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा है, तो जिसकी वजह से ये केस बहुत ही लंबा चला, जिसमें विद्या बालन ने जेसिका की सिस्टर का रोल किया एंड रानी मुखर्जी ने एक जर्नलिस्ट का रोल इसमें किया था. रियलिटी बेस्ड मूवी, इट वाज अबाउट सिस्टम फेलियर, पॉलिटिकल करप्शन एंड द पावर ऑफ पब्लिक आउटरेज एज वेल. सो मूवी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा. और इसके बाद गुप्त मूवी का गाना भी आप यहाँ पर सुनने वाले हैं. बॉबी देओल की 90s की ये मूवी है इज़ अनदर मर्डर मिस्ट्री मूवी, जहाँ पे ग्रे शेड में तो एक एक्ट्रेस ही निकली थी.

यादें लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

ट्रेंड मेकर्स में आज मर्डर मिस्ट्रीज थ्रिलर मूवीज के जो गाने हैं ये आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आपके साथ में साथ ही साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे मिस्ट्रीज के बारे में बात की जाए तो देयर इज अनदर मूवी तलाश मूवी 2012 की, आमिर खान, करीना कपूर खान, रानी मुखर्जी की जो मूवी है फुल पैकेज है एक्चुअली में। ग्रेट परफॉर्मेंस, कैची ट्यून्स भी रही इसमें और कहानी जो है क्लाइमेक्स में कुछ और ही निकलती है। एंड देन देयर इज डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी जिसमें सुशांत सिंह राजपूत ने काम किया था, दिबाकर बैनर्जी ने इस मूवी को बनाया है। ये मूवी भी बहुत अंडररेटेड रही थी सुशांत सिंह राजपूत की। इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरीज क्रिएटेड बाय बेस्ट सेलर बंगाली राइटर। एंड इस मूवी को सेट किया गया है 1940s में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी। एंड ये पहला केस था ब्योमकेश बख्शी का। ब्योमकेश बख्शी ये एक टीवी सीरीज भी आया करती थी जहाँ पे एक डिटेक्टिव का रोल प्ले करते हैं ब्योमकेश बख्शी, और इसमें ये रोल किया था सुशांत सिंह राजपूत ने। एज मैनी पीपल से जो मूवी है ये बॉलीवुड की शर्लक होम्स टाइप ऑफ मूवी थी। सो अगर आपने नहीं देखी है तो इस मूवी को भी आप अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और भी मूवीज़ है, बदला मूवी है जो कि अगेन बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी है। देन देयर इज़ रात अकेली है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राधिका आप्टे की। रात अकेली है पार्ट टू भी एक्चुअली में आ चुकी है। हसीन दिलरुबा मुझे लगता है कि अगेन अनदर एक मिस्ट्री काइंड ऑफ मूवी है जहाँ पे एंड तक समझ में नहीं आता है। देयर इज़ अनदर मूवी तीन जिसमें अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड विद्या बालन है। जो कहानी है वो जॉन बिस्वास के रोल के ऊपर घूमती है। सो दैट्स अनदर मूवी जो एक्चुअली में आप देख सकते हैं। मैरी क्रिसमस जो कि कैटरीना कैफ की मूवी आई थी इज़ वेरी नाइस अनदर मर्डर मिस्ट्री मूवी। फिलहाल जो गाना सुनने वाले हैं मर्डर टू का सुनने वाले हैं। मर्डर टू एक डार्क साइकोलॉजिकल सीरियल किलर के ऊपर बेस थी। इट वॉज एक्चुअली हैविली इंस्पायर्ड बाय साउथ कोरियन हिट द चेजर। सो इसी मूवी का गाना सुनते हैं और इसी नोट में मैं आपको कहती हूँ टाटा बाय बाय। अब मेरी आपसे कल 3 बजे कॉफ़ी ब्रेक में मुलाकात होने वाली है। Bye.

0: Nova.
1: March 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
0: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए.
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
0: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
0: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
4: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
6: The food show starts Thursday. Cloudy overnight for Auckland, a low of 8 on the northern to Silverdale from the city, 31 minutes. Still busy Oniwa Road to Northcote, the northwestern a quick 22 to Massey, but still slow Waterview to Te Atatū. The southern to Manukau taking 24 minutes, another 10 to get to Drury, and it's slow southbound Market Road to Penrose Road, free flowing southwestern.
7: Your foodie adventure awaits. Auckland Showgrounds. Tickets at foodshow.co.nz.
1: Choice up ki hai at Winga Motors. सेलेक्टेड नए ओमुडा और जेकू मॉडल्स पर पाइए

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले जब दिल मिले तब गुल खिले जब गुल खिले तब दिल मिले।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, और सफ़र का मज़ा तभी आता है जब आप चलते चलते थोड़ा थम से जाते हो, और इसी ठहराव को लेकर आए हैं नाइट कैफ़े में, जबकि आपको सुनवाने जा रहे हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में एक गज़ल, बहुत ही प्यारा गज़ल है, इसे भी आप सुनिएगा, आई एम श्योर आप इसे पसंद करेंगे।

0: अब दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम सुपर बर्थडे डील्स आर कमिंग टू यू एट द स्पीड ऑफ लाइट। वॉच दिस, आई एम हियर नाउ, आई एम हियर
2: नाउ, आई एम हियर
1: बैक हियर नाउ,
2: हियर आई एम।
1: सुपर बर्थडे डील्स ऑन नाउ एट पैक एंड सेव, नाउ बैक हियर।
3: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
4: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
5: Join our tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
5: join our tribe!
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, hamari good brands bhi hai.
6: Hum. Night Cafe on Hum.
8: हम पर आप सुन रहे हैं नाइट कैफे, जहां पर आपको बॉलीवुड से मेलोडियस नंबर्स ट्रैक्स आपके लिए पेश कर रहे हैं। आपको अगला जो गाना सुनाने से पहले कुछ ट्रिविया दे देता हूं, जबकि गाना को गाया है अलका याग्निक ने और फिल्म जख्म से इस गाने को हमने लिया है। तो अजय देवगन के लिए उनका जो पहला नेशनल अवार्ड था इसी फिल्म से मिला था, जबकि यहाँ पर उन्होंने महेश भट्ट की डायरेक्शन में अभिनय किया था। और इसके साथ में MM क्रीम ने इस गाने को कंपोज किया था, साउथ के एक बहुत ही पहुँचे हुए म्यूज़िक डायरेक्टर है। लेकिन उस समय उनको एक लैंग्वेज बैरियर थी, जहाँ पर उनको लिरिक्स समझ में नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा गाना कंपोज किया जो आज भी अगर जो आप इसे सुनते हैं तो उन्हीं गलियों में चले जाते हैं जहां पर ये चांद निकला था।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और हमें आपका हेल्थ एंड वेलबींग का पूरा ख्याल है क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं कि फिजी गिरमट फाउंडेशन न्यूजीलैंड इन एसोसिएशन विद एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 2026। इसे आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है सबके लिए और ये रहेगा संडे, इसी संडे को 26 जुलाई को एट दी A1 इवेंट सेंटर। आपको सिर्फ जाना होगा 731 ग्रेट साथ रोड पापटोए, सुबह 10 से लेकर शाम 3 तक हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो यहाँ पर चलता रहेगा, जिसके तहत आपको फ्री स्क्रीनिंग भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल लर्निंग में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी सिखाए जाएंगे, साथ में ईजी योगा पोस्चर्स भी सिखाए जाएंगे और आपसे बातें की जाएगी मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। तो ये सभी कुछ आपके पास में मौका है संडे 26 जुलाई को अटेंड करने के लिए, इसे भूलिएगा मत। एट A1 इवेंट सेंटर, 731 ग्रेट साथ रोड पापटोए, सुबह 10 बजे से।

0: You're listening to Avineet.
1: हम पर नाइट कैफे में दूसरे आवा में हम आ पहुंचे हैं, जबकि जस्ट आफ्टर नाइन. मैं हूं अभी आपके साथ में और इस आवा की शुरुआत करते हैं. आपको बताते हैं कि आपके पास में एक चांस है, एक मौका है जहां पर आप खूब झूम सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, नाच सकते हैं. और ये सभी कुछ हो रहा है गरबा नाइट विद राज गढ़वी लाइव इन ओकलैंड. हाँ, ये मौका जो है आपको दे रहे हैं लोटस प्रोडक्शंस, साथ में श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप, जो प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं गरबा नाइट विद सेंसेशनल राज गढ़वी. और आपको कहीं दूर नहीं जाना है, सिर्फ महात्मा गांधी सेंटर ओकलैंड ही पहुँचना है सैटरडे 1 अगस्त को. लेकिन इसके लिए टिकट्स लगेंगे जो बहुत फास्ट बिक रहे हैं. तो अपने टिकट सिक्योर करने के लिए eventstickets.co.nz पर जाइए, eventstickets.co.nz पर जाकर अपने टिकट्स अभी से ही ले लीजिए. और इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्वप्निल को कॉल कर सकते हैं 02243947 36 पर, 02243947 36 पर. इसके साथ मैं आपको बता दे कि एक मौका हम भी देंगे आपको डबल पास जीतने का, जहां पर हम पर आपके चाहते आरजेज आपको अपने अपने शो में आपसे कहेंगे कि आरजी लिखकर अपने नाम के साथ में 5599 पर भेजो, ताकि आपका नाम जो है ड्रो में शामिल हो सके. लेकिन अगर जो आपको टिकट्स चाहिए तो eventstickets.co.nz पर भी जा सकते हैं, जहां पर महात्मा गांधी सेंटर में 1 अगस्त को, याद रहे 1 अगस्त को ये धमाका होने जा रहा है, जबकि राज गढ़वी लाइव परफॉर्म करने वाले हैं.

हम्पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और अक्सर आपके साथ में बॉलीवुड की दुनिया से भी कुछ गपशप शेयर करते रहते हैं। जबकि कुछ सितारे आज रात आसमान में हैं और कुछ सितारे हमारे बॉलीवुड की दुनिया में हैं। तो अगला जो गाना आपके लिए बजाने जा रहे हैं, एक फिल्म आई थी डॉन द चेस बिगिंस, जो कि 2006 की ये फिल्म थी जिसमें आपने देखा था शाहरुख खान को। अब जो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डॉन 3 की है ये तो रुक गई है, फंस गई है, लेकिन जो हमारे चार्मिंग शाहरुख खान हैं इन्हें आप एक बार फिर शायद इसी साल देख पाएंगे, जबकि 2026 दिसंबर में इनकी फोर्थ कमिंग मूवी किंग रिलीज होने को है, जिसे डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने। और इनमें नज़र आएंगे, इनके साथ में इनकी बेटी सुहाना खान, अभिषेक बच्चन भी नज़र आ सकते हैं, और इसके साथ में अगर जो रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पादुकोण भी इस मूवी में है। तो ये जो फोर्थकमिंग मूवी है किंग, इसे आप दिसंबर में देख पाएंगे सिनेमाज में।

0: Cafe on Hum.
1: हम पर नाइट कैफे का सिलसिला जारी है और मैं हूं अभी आपके साथ में ऑन 104.2 एफएम साथ में रोवा पर. अब की बार कम्युनिटी न्यूज़ में आपको बता दें, न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन ये आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकन हेड स्काउट्स हॉल. तो चलो, हमने आपको एडवांस नोटिस दे दिया है. अभी से ही आप अगर जो इस गेम से थोड़े दूर दूर खींचे खींचे थे, तो ट्रेनिंग करने का वापस समय आ गया है. जबकि जितने भी खिलाड़ी हैं जो कैरम खेलना पसंद करते हैं, आपकी स्किल किसी भी लेवल पर हो, आपको इनकरेज किया जा रहा है पार्टिसिपेट करने के लिए एक बार फिर उस गेम के साथ में जुड़ने के लिए. तो रजिस्ट्रेशन के लिए और जानकारी के लिए आप विजिट कीजिए न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज या फिर NZCAE के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 021-09085067 पर कॉल कीजिए.

हम पर नाइट कैफे में अभी आपने राहत फतेह अली खान को सुना। जरा सोचिए, अगर जो आपको एक मौका मिले इनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का, ये सभी कुछ आपके पास में चेंज है, जबकि ये हमारे ही शहर ओकलैंड में परफॉर्म करने वाले हैं, कॉन्सर्ट करने वाले हैं एट दी ट्रस्ट अरीना ऑन द 25th of July। जी हाँ, इसी वीक इनका कॉन्सर्ट है, जबकि इनको लेकर आ रहे हैं जे के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और साथ में शहजादा प्रोडक्शन। इनके जो टिकट्स है आप ले सकते हैं drytickets.com पर। जब मैंने लास्ट चेक किया था, कुछ गिने चुने टिकट्स ही बाकी है, तो आपको जल्द से जल्द अपने टिकट्स लेने होंगे अपने सीट सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जब भी राहत फतेह अली खान परफॉर्म करते हैं, अपना कॉन्सर्ट करते हैं, एक मैजिकल मेलोडियस एनवायरनमेंट ये क्रिएट कर देते हैं।

हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है नाइट कैफे बाली इन बैंकॉक गेटअवे। ये आइडिया कैसा लगता है आपको? क्योंकि अगले साल मार्च के महीना में सेंडिए और रुजबे ये आपको बाली साथ में बैंकॉक घुमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर जो आप चाहे तो इनके साथ में हो सकते हैं, इनके साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बैंकॉक की जो मस्तियां हैं, साथ में जो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है स्ट्रीट फूड की, साथ में टेंपल्स भी आपको घुमवाएंगे, उसके साथ में इनक्रेडिबल स्ट्रीट फूड भी आपको चखाएंगे, ये सभी कुछ आप कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी तक आपने शायद बाली का जो फेमस वर्ल्ड फेमस जो स्विंग है इसके बारे में आपने शायद फेसबुक पर देखा होगा, इंस्टा पर देखा होगा, लेकिन आप खुद जाकर वहाँ पर फोटोज़ खिंचवा सकते हैं। तो इन सभी एक्सपीरियंसेस के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा ड्राइव ऑन 5599 और यहाँ से आपको पूरा का पूरा टूर प्राइस मिल जाएगा। अगर जो आप अकेले ट्रेवल करने में थोड़ा घबराते हैं तो आपके लिए बिल्कुल वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर सेंडी और रुजबे के साथ में आप घूम फिर सकेंगे सेफली और इन्जॉय भी कर सकेंगे।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

हम पर यह है नाइट कैफे 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर मैं हूं अवि। आपको बता दे, लेजेंडरी एंड मैजिकल राहत फतेह अली खान ये ओकलैंड आकर परफॉर्म करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सर्ट जिसे आप किसी भी हाल में मिस नहीं कर सकते। तो ये परफॉर्म करने वाले हैं एट दी ट्रस्ट अरीना इन ओकलैंड ऑन द 25th of July। इसी वीक को इनका कॉन्सर्ट रहेगा, जबकि इनको लेकर आ रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन, साथ में शहजादा प्रोडक्शन। टिकट्स के लिए आप जा सकते हैं dryticketsdotcom, जबकि कुछ गिने चुने टिकट्स ही बाकी है। तो आप अपना टिकट सिक्योर करने के लिए जल्द से जल्द जाकर dryticketsdotcom पर विजिट कीजिए और अपने टिकट्स को परचेस कीजिए।

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: ये आज का नाइट कैफे का फाइनल हवा है, जबकि 12 तक हमारा और आपका साथ रहेगा। आपने जैसे 8 बजे से हमारा साथ दिया है, इसी तरह से 12 तक भी साथ देते रहिएगा। और भी बातें होंगी इस हवा पर और ढेर सारे म्यूजिकल नंबर्स आपके लिए भी लेकर आए हैं। ये सभी कुछ आपके साथ में और 104.2 FM साथ में रोवा पर।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो कि करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स

हम पर नाइट कैफे में मैं हूं अभी आपके साथ में लगे हाथ एक और एक कम्युनिटी न्यूज शेयर कर लेते हैं। क्यूई फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट विद हम एज मीडिया पार्टनर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला जो रहेगा 8th of August को, सैटरडे 8th of August को। आप डेट्स अभी से मार्क कर लीजिए, 832 Glasgow Avenue पपटोए जो कि है वैदिक सेंटर, और यहाँ पर टिकट प्राइजेस है $10 पर पर्सन और चिल्ड्रन अंडर 5 years of age इनके लिए फ्री एंट्री है। अगर जो आपको स्टॉल्स के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मास्टर अशोक को 0211795459 पर कॉल कर सकते हैं।

0: चाहे आप हम के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
2: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
3: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सबडिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279-439 और विजिट legalassociates.co.nz।
4: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: Murphy on Hum.
1: हम पर मैं हूं अभी आपके साथ में और थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा, लेकिन ये बताना आपको ज़रूरी है रोवा पर हम म्यूज़िक स्टेशन है आपके लिए, जहां पर आपके चॉइसेस को ध्यान में रखकर आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। हम रिवाइंड जहां पर 60s और 70s के बॉलीवुड के गाने हैं, ये आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर जो आपको 80s के गाने सुनना पसंद है तो हम 80s जुकबॉक्स भी है आपके लिए। इसके साथ में फिजी भजन्स को एक अलग प्लेटफॉर्म दिया गया है, आप यहां पर जाकर फिजी भजन को भी सुन सकते हैं एट एनी टाइम कन्वीनियंट टू यू। इसके साथ में चढ़दी कला है, फॉर ऑल दोज पंपिंग पंजाबी नंबर्स, चढ़दी कला आप सुन सकते हैं। और इसके अलावा फिजी कीर्तन संग्रह भी है, जहां पर फिजी के प्रमुख कीर्तन आर्टिस्ट के आवाज़ों में यहां पर कीर्तन स्टोर किए गए हैं। और साथ ही साथ में राहत फ़तेह अली खान की एक अलग फैन फॉलोइंग है, इसीलिए उनके सूफी और कवालियों को यहां पर स्टोर किया गया है आपके लिए। इसे ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए।

हम पर राज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। आपने 8 बजे से हमें कंपनी किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी, जबकि लेकर आएंगे एक बार फिर आपके लिए नाइट कैफे। अभी छोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक से एक बढ़कर गीत आपके लिए बजते रहेंगे, आप उसे एंजॉय कीजिएगा। आप काम कर रहे हैं, नौकरी पर है, हम के साथ में जुड़े रहिएगा। और हाँ, ये ज़रूर ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। टू टेक केयर, बाय।

0: 2027. एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस। क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम।

ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे और कहते क्या थे, करते थे और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर।
1: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
3: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
4: वेलकम टू कबाब्स किचन। आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
5: क्या बनाते हैं इन कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
4: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
5: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
4: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
6: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
7: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now Flowmate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
9: Night Flight

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबे, टिकट्स बुक हो गए
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है,
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम। चॉइस आपकी है एट विंगर मोटर्स, सिलेक्टेड नए ओमुडा।

0: क्रेडिट क्राइटेरिया फीस टीज एंड सीज अप्लाई.
1: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
2: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
1: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
2: पर डेवलपमेंट के पैसे
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: Media voice complaints. How can I help?
2: My kids won't shut up.
1: I'm not sure that's our problem.
2: They keep reciting lines from one of your radio ads.
1: Aw, cute.
2: Yeah, well, it was cute initially, but after 27 times.
3: What do you want, son?
4: I want me some of that real southern chicken.
2: 28 times.
1: So where are you now?
2: Eating chicken.
5: Advertise with
6: Media Works.
5: New Zealand listens to us.
7: Professional financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
8: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process was simple and frank.
7: Business finance ya income protection ho. Har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
8: Professional financial solutions. Your future, our priority. Call 09 846 9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
9: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
10: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
9: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
11: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर gold.
12: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
14: Night Flight.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: Flight on Hum.
1: पतंग संग उड़ गया बचपन, छनक छनक मन, डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसत मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरीबा की लाएगा। अरे मैं हुक्म करूं तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाओ।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो की करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: All my people just be rolling up on this vibe.

0: उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
3: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
4: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
5: Curtain Studio's massive three-day sale is on now. Our top-selling studio curtain and blind range is now half price. That's right, 50% off all studio ready-mades and custom fabrics and blinds. But be quick, sale ends Saturday, only at Curtain Studio.
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
7: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ पे किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दूसरी बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दूसरी तो
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the Media Works Foundation.
5: The beat of Bollywood.
6: World's best, hamari koi branch nahi hai.
5: Night Flight.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja।

अगर बीच को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media Works. Media that works.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
3: Busy subah ho ya sham ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try, aapke najdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
5: Sorry about that.
4: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
7: हाँ, अच्छा?
6: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं।
7: मिसेस सिंह।
8: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
9: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
10: राइट नाउ योर टीम कुड बी विनिंग, स्प्रिंटिंग, पिचिंग, किकिंग, सिन बिनिंग, एंड यू नीड टू नो अबाउट इट।
11: जॉइन द ट्राइब।
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
11: join the Tribe!
12: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating, and now FlowMate leaf protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
13: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
1: Home. Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
14: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Stuart Nash has sparked outrage, resigning as a candidate for New Zealand First over comments made about an MP who took leave after having a baby. He called National's Katie Nimmin lazy, but she says that's not quite true.
15: Didn't take 9 months off, I took 10 weeks off. Was back to work in my electorate after about 10 weeks part-time, came back to Wellington after 6 months.
14: There has been cross-party support to ban virginity testing in New Zealand. The Labour members' bill would also make the practice of hymenoplasty a criminal offence. MP Priyanka Radhakrishnan says the law change is long overdue. A toxic gas mishap on a fishing vessel that hospitalised 4 workers has prompted new safety recommendations. The Transport Accident Investigation Commission found rotten fish was accidentally pumped into a small machinery area. Spokesperson Talia Fisher says risk mitigation is key.
16: Organisations that have additional responsibility, such as managing a shared worksite, need to actively be seeking assurance from each party.
14: And police have concerns for a missing 20-year-old who was last seen in Auckland, Swanson. Wolvidi Ding was wearing a grey hoodie, black pants and black shoes. She lives in the CBD but was visiting family out west. To rugby with Shift 4, the big guns are back on deck for the Springboks, who have named a 43-strong squad to prepare for the upcoming All Blacks tour. 10 players return from injury. And the Commonwealth Games begins tonight in Glasgow. Lawn Bowls is first up. New Zealand has a team of 12 and Bowls NZ boss Mark Cameron.
17: Bowls is every day of the week, so it is there to be seen. And for our nation to take pride in some of the performances.
0: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill.
18: Hum par shok suchnaye aap tak late hai. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations.
19: सूचित किया जाता है कि पोकिनो ऑकलैंड के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी यानी पोकिनो के वरुण और कार्तिक की माँ एग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी माँ यानी पोकिनो की रत्ना माला प्रसाद की मृत्यु हो गई. अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे मेनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पोहिनोई रोड वीरी ऑकलैंड में किया जाएगा. जानकारी या श्रद्धांजलि के लिए आप 0272687656 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, पोकेनो के विजेंद्र प्रसाद की पत्नी यानी पोकेनो के वरुण और कार्तिक की मां, एग्निया वेदा अर्जुन और मारिया की दादी मां यानी पोकेनो की रत्ना माला प्रसाद की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार कल दिन में 1 बजे मैनिकाओ मेमोरियल गार्डन्स 361 पुहिनोई रोड ऑकलैंड में किया जाएगा। जानकारी और श्रद्धांजलि के लिए आप 0272687656 पर कॉल कर सकते हैं।
18: शोक सूचनाएं वीकडेज पर सुबह 6 तथा 11 बजे, शाम 6 बजे और वीकेंड्स पर दोपहर 12 बजे पर प्रसारित की जाएगी।
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
5: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
1: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
19: Right now, Super City Auckland में temperature is 8.5 degrees, high 15 expected है। बाद में चलकर overnight temperature 8 degrees तक रहेगा। आज के मौसम के लिए कहा गया है partly cloudy with areas of fog, और बारिश जो है थोड़ी बहुत ये आज सुबह के समय होगी। isolated showers आज towards the evening होने की संभावना। light winds throughout the day experience करेंगे। sunrise अगले घंटे 7:26 AM पर और sunset 5:30 PM पर होगा।
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
1: Breakfast catch up. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
20: Puri ki puri gang ke logo, kaan ke saath sab kuch khol ke sun lo.
19: Hello, Kia ora, good morning, namaste and welcome to Hum Playing Bollywood's Biggest Hits, The Breakfast Show with Vijay and Pooja lekar as promised. Aage hain hum dono, aap sabhi ka saath dene ke liye. Good morning,
21: kaisi hain aap?
19: Main to theek hoon, aapki tabiyat kuch sudhar?
21: Yeah, much better than yesterday.
19: Aur ummeed hai ki aap sab bhi ekdam badhiya hai, matlab aaj subah subah hamare saath safar ki shuruaat kar rahe hain aap, aur jahan kahin bhi hai saath hamara de rahe hain. You are all fit and hearty, aur kya bolte hail and hearty na? हाँ, तो हेल एंड हार्टी, मेरा फिट एंड हार्टी निकल गया। बट यस, अपने साथ अपने समय के लिए आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।
21: और अब अभी से 4 घंटों का ये बहुत ही दिलकश और बहुत ही प्यारा सफर आपके लिए तैयार करके हम लेकर आए हैं, एंड होपफुली आज भी आप हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगे।
19: ब्रेकफास्ट कैचअप से कर रहे हैं आज के इस ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत, जहां पर खबरों के मामले में देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग एवरी सिंगल मिनट, और इस पर हम कुछ चर्चा जरूर करेंगे। ग्लोबल हेडलाइंस की बातें करें तो दुनिया भर में इनफेक्ट खबरों के मामले में क्या कुछ आज सुबह सुबह सामने आया है, उस पर कुछ डिटेल्स आपके लिए हम जरूर लिख आएंगे। बट लाइक एवरी मॉर्निंग विद अ वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव न्यूज, आज की सुबह की शुरुआत आपके लिए सनी साइड अप बस थोड़ी देर में।

0: सनी साइड अप।
1: तो आज की हमारी सनी साइड अप स्टोरी, जिससे कि आपको भी कुछ पॉजिटिविटी, कुछ हैप्पीनेस जो है ये सीखने को, सुनने को, समझने को मिले। एंड दिस पर्टिकुलर स्टोरी जो है ये आपके लिए हम लेकर आए हैं। इट्स अबाउट अ 4-year-old बॉय। नॉर्मली जब हम कहीं किसी भी नेबरहुड में रहते हैं तो लाइफ इज सच, ऑप्शंस और चॉइसेस आर सच कि पीपल जो है दे लाइक टू कीप इट टू देमसेल्व्स। अपने नेबर्स में या नेबरहुड में लोगों के साथ घुलना मिलना ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आता। इनफैक्ट अगर हम खुद भी एक दूसरे से सवाल करें कि आप क्या अपने नेबर से वाकिफ़ हैं, उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप शेयर करते हैं या नहीं, तो शायद आपका भी जवाब होगा नहीं, उतना नहीं। Like, you know, you have your boundaries, you have your limitations, you might even not know the name of your neighbors.
2: Yeah.
1: तो ये जो खबर है कैरोलिना की है, नॉर्थ कैरोलिना की है, USA में, जहाँ पर 4 साल का ये छोटा सा बच्चा है और इनका एक सिंपल सा जो हाय है, जो वेव है ये करते हैं, इसने वहाँ की पूरी जो एल्डरली कम्युनिटी है उसको एकजुट कर दिया है।
2: अच्छा,
1: रोमन बटलफ इनका नाम है। और जब ये हर सुबह अपनी मम्मी के साथ बाहर स्कूल के लिए जाते हैं रास्ते पर, तो आसपास जितने भी नेबर्स इनको दिखते हैं, जो इनको बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को हाय हेलो करना, ग्रीट करना, तो ये उनको वेव करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हाय कहते हैं। इनका एक सिंपल तरीका है, जस्ट लाइक वेव करना और हाय बोलना, बस दैट्स इट। एंड दैट्स हाउ पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग हिम। रोमन के बारे में बताया गया है कि ये इनकी जो मम्मी है, ये सिंगल पेरेंट है, इनकी लुक आफ्टर करती हैं, और रोमन फील्स वेरी लोनली क्योंकि इनकी माँ जो होती है ये इनकी देखभाल तो करती है, बट समहाउ शी इज़ बिजी विद सर्टन थिंग्स, जिसकी वजह से शायद जो फैमिली होता है जहाँ पर आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो चीज़ ये इनको नहीं दे पाती, बिकॉज शी कैन ओनली बी अ मदर टू हर चाइल्ड एंड नॉट बी ऑल दीज रिलेशनशिप्स। तो रोमन जो है इस लोनलीनेस से जूझ रहे थे, वेरी क्वाइट ही बिकेम, बट जब वो ये नेबरहुड में आए और लोगों को इन्होंने हाय कहते हुए, वेव करते हुए शुरू किया, तो जो आसपास की एल्डरली कम्युनिटी है, दे स्टार्टेड लविंग हिम फॉर दैट। एंड वो दरअसल इनके पास इनसे मिलने के लिए, इनसे कम्युनिकेट करने के लिए एकदम इंटरेस्टेड हो गए। इनफैक्ट रोमन अपनी मम्मी के परमिशन के बिना इनको इनवाइट करने लगे अपने घर पर फॉर प्ले डेट्स एंड ऑल।
2: ओके।
1: एंड हिज मम्मी वाज सो ग्लैड कि ये जो लोग थे इनके नेबरहुड में वो आते, इनसे मुलाकात करते, इनको अपना टाइम बेसिकली जो है ये देते। एंड जब इन्होंने अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बारे में सोचा, तो शी न्यू कि हु शी नीडेड टू इनवाइट, एंड इट वॉज दीज पीपल जो इनके लाइफ में एक कमी को भर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, ये पूरी की पूरी जो एल्डरली कम्युनिटी इनके घर आती है, रोमन से बातचीत करती है, मुलाकात करती है, उनको उनके जन्मदिन के लिए इन्वाइट किया। और कमाल की बात ये है कि एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के मामले में ये पूरी की पूरी कहानी कैप्चर हुई, और लाइक अ डॉक्यूमेंट्री वीडियो बेसिकली, विच इज़ हाउ आई केम अक्रॉस दिस स्टोरी। एंड जो एल्डरली लोग थे इस कम्युनिटी में, इस नेबरहुड में, जो रोमन को हाई हेलो करते थे इंडिविजुअली, जब उन्होंने मुलाकात की एक दूसरे से बिकॉज ऑफ दिस यंग बॉय, दे ऑल्सो बिकेम सो क्लोज। और उन्होंने ये बताया कि जब तक ये नहीं थे इस नेबरहुड में, तो वो भी उतना कम्युनिकेट नहीं करते थे, उनको नहीं पता था कि दीज पीपल वर लिविंग इन द सेम नेबरहुड, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दिस 4-year-old एवरीथिंग चेंज। और उसके बाद चलकर इनका जो गेट टुगेदर है, इट बिकेम लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर, नॉट जस्ट अ नेबरहुड गेट टुगेदर। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी एंड इन अ वेरी इमोशनल वन इज वेल, क्योंकि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं शायद ऐसे रिश्तों की कमी हम भी अगर महसूस कर रहे होते हैं, एंड अ स्ट्रेंजर फील्स दैट अप विद सो मच ऑफ लव कि आपका ये रिलेशनशिप उनके साथ इतना स्ट्रांग हो जाए, तो कितना स्पेशल होता है ना।
2: बेसिकली बात वही है कि जरूरत अपनों की नहीं, अपनेपन की होती है।
1: हाँ, बिल्कुल सही, वेरी ट्रू। तो आज की सनी साइड अप स्टोरी, उम्मीद है कि इससे भी आपको कुछ पॉजिटिविटी सीखने को मिले। द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट दिस स्टोरी, द लवली पार्ट अबाउट दिस स्टोरी इज कि इट्स नॉट जस्ट ऑन स्पेशल ओकेजन्स कि ये लोग आते हैं, रोमन से मुलाकात करते हैं, लेकिन रोमन एक्चुअली हैज़ इन्वाइटेड देम टू हिज सॉकर गेम्स, टू हिज स्विमिंग क्लासेज एज वेल, एंड जस्ट लाइक अ लविंग ग्रैंड पेरेंट, देयर इज समवन और दी अदर जो इनकी लाइफ में एक जगह होल्ड करते हैं और वो हमेशा इनके ऐसे क्लासेस और लेसंस को अटेंड भी करते हैं. तो आज की सनी साइड अप स्टोरी, उम्मीद है कि इससे कुछ प्यार आप तक भी पहुंचे और कुछ सीख आप तक भी पहुंचे. फिलहाल 17 मिनट हो रहे हैं 6:00 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. कमिंग अप वेरी शॉर्टली ग्लोबल हेडलाइंस.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: हे देखो मैं आ गए.
0: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
4: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए.
5: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
7: हेलो एवरीबॉडी.
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम.
9: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Orkhon Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimize landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
0: Auckland, तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
10: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
11: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
10: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
11: Available at selected branches. T's and C's apply.
12: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो.
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स.
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी. फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927-99439 और विजिट legalassociates.co.nz.
15: The beat of Bollywood.
16: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
15: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
17: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Global Headlines.
2: सुबह के मुख्य समाचारों में, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वार्निंग दी है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में शिप टारगेट होने पर यूएस एक ब्रिज या पावर प्लांट तबाह करेगा, जिसके जवाब में ईरान ने भी रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने की धमकी दी है. जोर्डान ने ईरानियन अटैक्स को इंटरसेप्ट किया है, जबकि टेंशन के बीच ट्रंप 4 मारे गए यूएस सर्विस मेंबर्स के डिग्निफाइड ट्रांसफर में शामिल हुए और सऊदी अरेबिया के साथ एक न्यूक्लियर डील को अप्रूव किया है. भारत के अनंतनाग में हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन चलाकर पूरे यूटी से लगभग 2000 सस्पेक्ट्स को कस्टडी में लिया है. अकेले श्रीनगर से करीब 700 लोगों को पकड़ा गया है, जबकि बारामूला में 178 और अन्य इलाकों से बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है. फिजी में फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मानुआ कमीकमिता के डिफेंस लॉयर द्वारा दायर 9 केस टू आंसर एप्लीकेशन पर सुपर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट आज सुबह 10:30 सुनवाई करेगा. फाइकेक के केस खत्म होने के बाद ये मर्जी दिखाई ये अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें उनके दूसरे विटनेस गवर्नमेंट एमपी कलवेती रवि रावू ने कोर्ट और फाइक के पूछने पर भी उन साथियों का नाम बताने से इनकार कर दिया जिनसे उन्होंने बात की थी। मजिस्ट्रेट चार्ल्स रताकेले ने दोनों पक्षों को या दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने का फैसला किया है, जबकि फाइकेक ने अब तक जेनेट मेसन और एमपी रावू सहित दो गवाह पेश किए हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू होने वाले आज से T20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम जो है एक बहुत ही यंग टीम पर डिपेंड कर रही है। टीम को कैप्टन श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि उसमें तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, शिवम दुबे, सूर्यवंश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह जैसे खिलाड़ी शामिल रहेंगे। इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम लेकर आएंगे।
15: Bollywood's most wanted.
7: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
18: मैं लाऊं अपना A game.
15: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

30 मिनट हो रहे हैं 6 बजकर और आपके लिए हम लेकर आ रहे थे आज का हमारा सबसे पहला चार्ट बस्टर। उम्मीद है यू एंजॉयड इट, जो कि आपके लिए हमने पेश किया आज जबरिया जोड़ी फिल्म से। नॉट श्योर कि आपने ये फिल्म

0: देखी है या नहीं, पर इफ यू हैवंट सीन इट तो जरूर आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसके लिए 2019 में फिल्म आई थी, सो यू कैन चेक इट आउट। और ये गाना ज्योतिका टेंगरी, अशोक मेस्टी और साथ में यो योहानी सिंह के संगीत पर आपके लिए हम पेश कर रहे थे। फिलहाल बॉलीवुड की बातें अगर कंटिन्यू करें कि क्या कुछ हो रहा है बॉलीवुड में, तो आमिर खान एक बार फिर खबरों में आए हैं रिसेंटली। यू नो यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में ना जंतर मंतर पर, जो नीट पेपर लीक को लेकर, एंड इट्स अ बिग बिग थिंग गोइंग ऑन राइट नाउ। बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी वॉइसेस जो है ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सम ऑफ द सेलिब्रिटीज़ और बिग नेम्स जो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट में वो है, और कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो शायद चुप्पी साधे हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं या कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एंड आमिर खान का नाम जो इस मामले में सामने बार बार आया है, इनके बारे में कहा गया कि ही हैज़ नॉट बीन क्वाइट वोकल अबाउट दिस सिचुएशन। और सोनम वांगचुक जिन्होंने करीबन 20 डेज तक के लिए, जबकि हंगर स्ट्राइक पर ये थे, तो उस दौरान भी इनके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी, बिकॉज पीपल वर सेइंग कि यू प्लेड अ कैरेक्टर इंस्पायर्ड बाय हिम इन थ्री इडियट्स एंड येट यू चोज नॉट टू सपोर्ट हिम और से एनीथिंग अबाउट इट। जबकि ओमी वैद्या हु प्लेड अ डिफरेंट कैरेक्टर इन द सेम मूवी, वो काफ़ी वोकल थे इस चीज़ को लेकर। तो अपेरेंटली आमिर खान आउट ऑफ इंडिया कहीं पर एक इंटरव्यू के दौरान, एक लाइव सेशन जो ये चल रहा था वहाँ पर ये थे, एंड समवन आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन कि ओमी वैद्या ने इनके बारे में बातें की, बट यू हैव नॉट बीन क्वाइट वोकल और समथिंग लाइक दैट, जिस पर इन्होंने यही कहा कि वो गलत है, ओमी वैद्या गलत है, एंड सोनम वांगचुक के ऊपर ये फिल्म आधारित नहीं है। मतलब दैट कैरेक्टर रणछोड़ दास या फिर फुनसुक वांगड़ू का जो कैरेक्टर है ये उन पर नहीं आधारित है, एंड एट दैट टाइम व्हेन द मूवी वाज मेड इनको सोनम वांगचुक के बारे में पता भी नहीं था। बट द इंटरेस्टिंग थिंग दैट द इंटरनेट इज नाउ आस्किंग, और द क्वेश्चन दैट द इंटरनेट इज नाउ आस्किंग इज कि इफ नॉट मिस्टेकन देन थ्री इडियट्स जो फिल्म है ये कई साल पहले आई थी, एंड इफ आई एम नॉट लाइक आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट की व्हाट वाज द एग्जैक्ट ईयर, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कम से कम 15 साल से ऊपर तो हो ही गए इस फिल्म को। आई थिंक 2009 में ये फिल्म आई थी, सो रफली अराउंड 17 ईयर्स हो चुके हैं। तो अगर इतने सालों से देर वॉज अ मिसकंसेप्शन और देर वॉज दिस र्यूमर कि ये कैरेक्टर इनके ऊपर आधारित है, एंड इफ इट वॉज नॉट देन वाई इट वॉज नॉट क्लियर आउट कि ये इनके ऊपर नहीं आधारित है, एंड इट्स नॉट इंस्पायर्ड बाई हिम, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक देर वॉज सम सीजन ऑफ कौन बनेगा करोड़पति जिसमें फुनसुक वांगड़ू गए थे एक एपिसोड में, सोनम वांगचुक गए थे एक एपिसोड में, एंड अमिताभ बच्चन ने उनको इसी तरह से इंट्रोड्यूस किया था कि थ्री इडियट्स में जो कैरेक्टर है इनसे इंस्पायर्ड एंड स्टफ लाइक दैट, समथिंग वाज मेंशनड इन रिगार्ड्स विद द मूवी थ्री इडियट्स।
1: ओके,
0: तो उस पर भी काफी सवाल जो ये उठाए जा रहे हैं, बट आमिर खान इज अपेरेंटली सेड कि नहीं ये उनसे रिलेटेड नहीं है। सो इंटरनेट इज क्वाइट अपसेट विद हिम कि ये यू नो बीइंग अ पर्सनैलिटी सो बिग वो शायद वो ज़रूरी चीज़ें नहीं कर रहे जो शायद उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं या लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं।
1: आई डोंट नो, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है इस बारे में, और हर किसी का अपना निजी विचार होता है, सो ऑल आई कैन से इज जस्ट यू नो हम अपना विचार जो है ये अपने तक ही रखें।
0: हाँ वो सी
1: अब शायद वही आमिर खान सोच रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पढ़ना इसमें,
0: no doubt, but then he is a public personality or such a big star, so at least even if you don't want to associate yourself with it you have to be vocal about it कि मुझे इसमें नहीं पढ़ना।
1: हाँ, and जो गलत है उसके लिए तो आप बोल सकते हैं।
0: हाँ, जो आपको लग रहा है कि गलत है, if you want to speak out you speak out about it, you know, एक responsibility हो जाती है ना, because you've got such a big fan following and people are expecting something out of you, but anyways
1: yeah,
0: there's a lot that's happening in regards with this, और definitely updates तो आपके लिए हम लेकर आते ही रहेंगे on हम। There is also a lot that's happening in regards with films as they are concerned। राहुल मोदी के बारे में पता है आपको?
1: नहीं, मैंने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना।
0: राहुल मोदी दरअसल एक कमर्शियल डायरेक्टर है, मतलब कमर्शियल डायरेक्टर इन एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह जो है, बहुत क्रिएटिव यू नो डायरेक्टर है ये, और ये अब अपना डेब्यू कर रहे हैं फिल्मों को लेकर।
1: ओके,
0: और राहुल मोदी इज आल्सो रूमर्ड टू बी डेटिंग श्रद्धा कपूर, तो श्रद्धा कपूर और राहुल मोदी दरअसल एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप किया एंड दिस पर्टिकुलर फिल्म इज एक्चुअली रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि ये बेस्ड है ऑन नन अदर देन द कंट्रोवर्शियल स्टार्टअप किंग अश्नीर ग्रोवर पर.
1: ओके.
0: एंड ये खबर आई कि इन्होंने इस फिल्म के बारे में कुछ इंटरेस्ट लिए और ऐसा कुछ फिल्म बनाने के बारे में सोचा एंड देयर ऑल एक्साइटेड एंड प्लानिंग टू रिलीज द मूवी नेक्स्ट ईयर मार्च महीने में. बट ये बताया गया है कि इस फिल्म को जबकि श्रद्धा और राहुल दोनों मिलकर एक साथ बना रहे हैं, दे हैड आइडियाज ऑफ गेटिंग आमिर खान ऑन बोर्ड एंड दे वर क्वाइट फैसिनेटेड अबाउट द फैक्ट कि वो अगर ऐसा कोई एक फिल्म करे. सो इनिशियल रिपोर्ट सजेस्ट्स कि उन्होंने कमिट किया था इस फिल्म को लेकर, बट अभी बॉलीवुड हंगामा पर एक रिपोर्ट आई है एंड इट सेज कि वो दरअसल ये फिल्म नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम क्रिएटिव डिफरेंसेस एंड ही हैज वॉक्ड आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसके चलते अब श्रद्धा कपूर एंड राहुल मोदी आर क्वाइट कमिटेड टू द प्रोजेक्ट. उनका कहना है कि दे हैव टेकन द कमिटमेंट, सो वो ये फिल्म बनाने वाले हैं, बट लेट्स सी किसके साथ.
1: तो अगर पता चलता है तो डिटेल्स हम आपको जरूर देंगे.
2: ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है.
4: Accurate traffic.
5: Shower dome, shower tops.
6: Mostly cloudy today, maybe a little sun, a high of 15 degrees. Coming in on the southern motorway, 25 minutes to town from Mataco now, 46 from Drury, slow Papakura on and off to Mount Wellington. Southwestern still looking okay. The northwestern, 20 minutes in from Massey, we're slow through Te Aritu. Northern, 18 minutes in from Constellation. 35 from Silverdale, we're slow Constellation to Glenfield. Public transport, all okay.
5: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
7: Kya baat hai us khane mein jo पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
8: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है, क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं. पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो, दिन हो या रात, हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा. मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए.
9: Danny didn't think he needed a DVS system.
10: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
9: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
10: Nah, only one room. It was just too noisy.
9: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: No!

0: mai. फिलहाल 21 मिनट रह गए हैं 7 बजने में ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा और आज 23rd ऑफ जुलाई की ये सुबह आपको यू नो मैं हिमेश रेशमिया के बारे में कुछ बता दूं आपको पता है कि इनके पिता जो हैं विपिन रेशमिया वो भी एक म्यूजिक डायरेक्टर थे
1: Oh, I didn't know that.
0: हाँ I think mostly अन्य रीजनल मूवीज में उन्होंने काम किया था लेकिन बॉलीवुड में इंसाफ की जंग 1988 में आई थी फिल्म
1: ये वही नहीं वो तो तेरी मेहरबानी थी बट आई थिंक आई हैव हर्ड द नेम इंसाफ की जंग शायद मैंने देखी हो ये फिल्म
0: अच्छा हाँ शायद देखी होगी तो उस फिल्म का म्यूजिक जो है ये विपिन के सॉरी हिमेश के पापा ने कंपोज किया था
1: वेरी इंटरेस्टिंग
0: और उसके बाद हिमेश जब आए इन्होंने 2005 से 2007 तक इंडस्ट्री को रूल भी किया था एंड आज 23rd ऑफ जुलाई को इनका बर्थडे भी है
1: वेरी वेरी इंटरेस्टिंग तो सिर्फ एक ही फिल्म का म्यूजिक दिया मतलब
0: इनके पिता ने
1: हाँ
0: बॉलीवुड का जहाँ तक मुझे पता है एक ही फिल्म का और भी किया होगा तो मुझे नहीं मालूम है तो हिमेश आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके साथ एक बहुत मशहूर साइकेट्रिस्ट हैं इंडिया के और साथ में ये एक एक्टर भी हैं
1: कौन
0: उनका भी आज बर्थडे है
1: अच्छा तो आपको जानना ये कौन है
0: आपको पता है कौन है
1: नहीं एक्टर है और साइकेट्रिस्ट भी
0: हाँ.
1: है नहीं पता कौन से एक्टर है जो साइकेट्रिस्ट भी है आई हैव नो आईडिया
0: यू नो शायद उनको आपने उतना नोटिस नहीं किया होगा आज ही के दिन 1947 में इनका जन्म जो है हुआ था भोर
1: 1947 में हुआ था
0: हाँ.
1: अच्छा
0: इंडिया में एंड ही इज साइकेट्रिस्ट डॉक्टर एम आई इनके नाम के जो दो अल्फाबेट्स हैं इतना मैं आपको बता सकता हूँ
1: दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज़ आई हैव नो आइडिया कौन है ये अब आप पूछ भी रहे हैं 1947 की पैदाइश इनकी सो आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मेनी ऑफ अस माइट हैव सीन हिम और नो ऑफ हिम बट अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप जरूर हमारे पास मैसेज कर सकते हैं 5599 पर अपने नाम के साथ बी एफ जरूर लिखे आप लेकिन फिलहाल के लिए आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस जो है ये हमारे पास आए हैं और थैंक यू सो मच आप सभी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए और सबसे पहले आज अगर देखा जाए बॉबी मान जी इनका मैसेज जो है ये आया है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बॉबी मान जी जय साई राम पूजा एंड विजय हैप्पी थर्सडे साइज ब्लेसिंग्स आपने कहा है थैंक यू सो मच आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं
0: और राम राम सबको हैप्पी थर्सडे एंजॉय योर डे मिस्टर माटा माटा आपको भी ये सुबह मुबारक हो
1: और इसके अलावा इन्होंने कहा है गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा हैव अ गुड डे मैंडी की ओर से मैसेज आया है
0: और गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी थर्सडे विनीता आपको भी ये सुबह मुबारक हो
1: एंड साथ में आया है आज मैसेज हमारे पास राम राम पूजा जी A very happy Thursday, Pooja and Vijay ji. A very happy Thursday to you and to all the listeners. Main Mata Rani, Mata Rani ki kripa hamesha bani rahe. Jai Mata Di, Jai Ashwin. Inka message hai. Jai ji to nahi hai.
0: शायद वही होंगी
1: हाँ शायद
0: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा हैव अ वंडरफुल डे अहेड कोमल आपको भी इस दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं जो है ये हम देना चाहेंगे यू हैव अ वंडरफुल डे और जो जो शख्स जिनके बारे में मैं बोल रहा था
1: जी
0: इन्होंने फिल्म रंग दे बसंती में काम किया
1: इन्होंने फिल्म उसमें भी काम किया जिसमें वो गाना है ना दुनिया रे दुनिया वेरी गुड वाला कौन से फिल्म का नाम भूल गई मैं उसमें शाहरुख का अनिल कपूर और जय किशोर तीनों थे त्रिदेव
0: त्रिमूर्ति
1: हाँ त्रिदेव तो नसरुद्दीन शाह वाली थी
0: okay.
1: त्रिमूर्ति में काम किया इन्होंने
0: तो अगर आपको पता चला ये काम
1: आई थिंक नॉट अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू नेम हिम पर ही इज वन ऑफ दोस सेलिब्रिटीज जो कहते हैं ना कि यू नो द फेस बट यू डोंट नो द नेम तो लोग इनका चेहरा जरूर पहचानते हैं एज एन एक्टर बिकॉज ज्यादातर विलनस रोल्स में दिखेंगे लेकिन ये नाम इनका शायद लोग नहीं बता पाएंगे आज देखते हैं इस गाने तक का टाइम देते
0: हाँ.
1: और 5599 पर BF आप लिखे फिर आंसर लिखे और हमारे पास भेजे वो कौन से इंडियन एक्टर है जिनकी 1940s की पैदाइश है वो एक्टर तो है ही साथ ही साथ वो एक साइकेट्रिस्ट भी है क्लू के तौर पर हमने कहा कि वन ऑफ द फेमस मूवीज रंग दे बसंती और साथ में त्रिमूर्ति इसमें इन्होंने काम किया है

0: के दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: हम Accurate traffic.
2: BYD South Auckland now open.
3: A mostly cloudy one all day today. Got a high of 15. Just a little fog at the moment, but flights to the airport are fine. Southern motorway coming in. We're slow Papakura on and off to Mount Wellington, but heavy at Papakura. 30 minutes Manukau to town. 56 from Drury to the city. Northwestern 22 in from Massey. Slow at Te Aratu. Patchy from the causeway to Grey Lynn. Northern 20 in from Constellation. Slow there to Glenfield and at Esmond.
2: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Manukau Supersite on Great South Road.
4: Craving ho rahi hai. उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल। 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री, परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी टिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी। अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड। ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन। कशिश नेचुरल योगर्ट।
5: Warm up your winter with hot deals at Lifestyle Furniture. Massive savings on sofas, recliners, dining and living room furniture. Visit one of their three Auckland stores in Manukau, Westgate or Mount Wellington. Lifestyle Furniture. Stay in style.
6: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
7: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge-resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Conditions apply.
8: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: Breakfast catch up. Throwback.
10: थ्रोबैक की बारी आई है, बट बिफोर आज का थ्रोबैक आपके नाम हम करें तो 9 मिनट बाकी है समय हमारे स्टूडियोज में सुबह 7 बजने में, और इधर बातें कर रहे थे आप एक बॉलीवुड एक्टर की, इंडियन एक्टर की, और ये जो एक्टर हैं इनके बारे में आपने ये बताया कि ना केवल ये एक एक्टर हैं लेकिन साथ ही साथ ये एक साइकेट्रिस्ट भी है, और साथ में इनके बारे में एक और एक ख़ास बात कि ये काफ़ी यू नो लेजेंडरी एक्टर हैं।
11: हाँ,
10: काफी अच्छी अच्छी फिल्मों में इन्होंने काम किया है, विलेनस रोल्स प्ले किए हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है ना।
11: एग्जैक्टली, डॉक्टर मोहन आगाशे वाज द राइट आंसर। आज ही के दिन इनका भी जन्म हुआ था, तो हिमेश रेशमिया और डॉक्टर मोहन आगाशे आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप में से भी कोई है जो अपना बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है तो मैसेजेस अपने जो हैं ये आप हमारे पास भेज सकते हैं। 5599 हमारा नंबर है, समय से पहले अपना मैसेज जो है ये भेज दें ताकि आपको हम अगले घंटे विश कर सकें।
10: एब्सोल्युटली, और आपको जब हम विश करेंगे नेक्स्ट पर तो ये याद रहे कि अगर आप किसी को जानते हैं जिनका आज बर्थडे है तो उनके विशेस भी आप हमारे पास ज़रूर भेज सकते हैं और हम उनको याद भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, विश भी करेंगे आज के स्पेशल दिन पर। फिलहाल जितने भी लोग हमारे साथ सुबह सुबह शामिल हुए हैं, बस अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस आप हमारे पास 5599 पर तो भेज ही सकते हैं, लेकिन हमें ये बताइए राइट नाउ कि आप हमें कैसे सुन रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट,
11: अच्छी तरह से सुन रहे हैं?
10: हाँ, वो तो है। अच्छी तरह से नहीं सुन रहे होते तो अभी सुन ही नहीं रहे होते, वो भी बात है। बट लाइक कैसे सुन रहे हैं, एज इन आर यू लिसनिंग टू अस ऑन अ रेडियो वाया फ्रीक्वेंसी या फिर आप रोवर के जरिए सुन रहे हैं, ये हमें बताइए अपने नाम के साथ 5599 पर मैसेज करते हुए।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 8.4 degrees temperature. Super City Auckland mein filhal hai. High of 15 expected baad mein chalkar. Overnight temperature rahega aaj 8 degrees tak. Partly cloudy weather. Our areas of morning fog to experience karenge hi. Little bit of showers. Isolated evening showers jo hai ye aaj rehne wala hai. Sunrise se ghante 7:26 AM par rahega, jabki aaj ka sunset 5:30 PM par hoga.
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Get up, get up. Morning Madness.
1: फिलहाल 3 मिनट हो रहे हैं 7:07. गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू हम्पलिंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. थर्सडे 23rd of July की ये सुबह आप सभी को वंस अगेन बहुत बहुत बार मुबारक हो. साथ आप हमारा दे रहे हैं. दिस इज द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
3: इस घंटे थोड़ी देर बाद आज के आपके राशि वाइब्स हम आपको बताने वाले हैं 7:30 बजे. न्यूज हेडलाइंस और कई कॉम्पिटिशन वगैरह भी होंगे जिनमें पार्टिसिपेट करने का मौका आपको हम देते रहेंगे. बट थैंक यू 104.2 FM या रोवर पर आप हमारे साथ दे रहे हैं. इसके लिए आपने कत्सुबोशी के बारे में सुना है कभी?
1: नहीं.
3: कत्सुबोशी जो है ये जापानीज़ क्विज़ीन का हिस्सा है.
1: इट्स लाइक अ डिश.
3: यस,
1: ओके,
3: इट्स लाइक अ डिश. और इसको बनाने का तरीका बड़ा यूनिक है. और इस तरह की चीज मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी.
1: क्यों?
3: ये दुनिया का हार्डेस्ट प्रोसेस्ड फिश है.
1: फिश?
3: हाँ,
1: processed fish.
3: Hardest.
1: Okay.
3: वो इतना सख्त हो जाता है जैसे लकड़ी.
1: अरे कड़वाड़ू.
3: वो लकड़ी जैसा नहीं होता ना.
1: नहीं, it's not like लकड़ी, but it's quite hard ना. और जब आप उसे कुक करते हो तो वो इसे थोड़ा ऐसे भीगा भीगा सा रहेगा.
3: भीगा भीगा सा.
1: But it's, I mean, you have to make it with the gravy ना.
3: हाँ.
1: तरी बोलते हैं कुछ लोग, सुरवा बोलते हैं कुछ लोग. But like it's कड़वाड़ू is a bit hard.
3: तो
1: it's not processed though, वो smoked fish होता है.
3: हाँ, तो दुनिया का सबसे hardest प्रोसेस्ड फिश जो है उस ये जापान में है. कत्सुबोशी नाम है इसका. इसको जो स्किपजैक टूना होता है
1: जी,
3: उसको प्रोसेस करते हैं. फर्मेंटेशन, मैच्योरेशन और एंड रिजल्ट इज अ पीस ऑफ ड्राइड फिश विद अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अराउंड 18%. और ये रॉक हार्ड होता है. और इसमें एक ज्वेल जैसी चमक होती है ना, जैसे स्टोन्स चमकते हैं.
1: ओह,
3: वैसा बन जाता है.
1: शाइनी हो जाता है.
3: हाँ, उतना शाइनी हो जाता है.
1: अनफॉर्चुनेटली कड़वाड़ू इज नॉट दैट शाइनी. बट यार आपने बोला तो इसीलिए मुझे याद आया ना. लाइक देयर लॉट ऑफ पीपल लव ईटिंग इट. आई डोंट नो, आपको पसंद है
3: कड़वाड़ू?
1: अभी आई हैव नेवर ट्राइड कत्सुबोशी बुशू. क्या है ये?
3: हाँ,
1: तो आई हैवंट ट्राइड दैट, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकती. आई हैव ट्राइड कड़वाड़ू एंड दैट्स हाउ आई कैन से कि थोड़ा सिमिलर मुझे ज़रूर लगेगा व्हेन इट कम्स टू द टेक्सचर ऑफ द फिश.
3: आप बना सकती हैं घर पे
1: ये फिश
3: कत्सुबोशी? हाँ.
1: अच्छा,
3: आपको क्या करना होगा, मछली को आप पहले 24 घंटे तक पानी में थो करो. हाँ. ये फ्रोजन जाता है जापान ना.
1: अच्छा,
3: टूना.
1: अच्छा.
3: और फिर उसके फिले जो है ये निकाले और उसको सीमा करें 90 मिनट्स के लिए. फिर उसको आप ठंडा करें, फिर डीबोन करें, स्किन और फैट रिमूव करें. और उसके बाद फिलेट्स जो है इनको एक लकड़ी के ढक्कन वाले बास्केट में बंद कर दें और उसको वुड स्मोक करें 1 घंटे के लिए. फिर उसको ठंडा करें. फिर इस प्रोसेस को लगभग 1 दर्जन बार आप 1 महीने में करें. और ये स्मोक ड्रेस्टिकली वाटर कंटेंट जो है मछली का ये कम कर देता है, एक्सेस फैट निकाल देता है. और जो मॉइस्चर कंटेंट है ये अराउंड 28% हो जाता है. टू मेक द हाईएस्ट ग्रेड ऑफ कत्सुबोशी फिले जो है इनको स्प्रे किया जाता है विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एस्पैरिगलस ग्लॉकस बैक्टीरिया. और इसको प्लेस किया जाता है एक चैम्बर में 20 डिग्रीज टेम्परेचर पर. और 2 हफ्तों के बाद जो मोल्ड कवर्ड फिले हैं इनको निकाला जाता है और धूप में सुखाया जाता है 2 दिनों के लिए. आफ्टर इसके बाद उसको फिर से स्प्रे किया जाता है विद द मोल्ड एंड लेफ्ट टू फेमेंट फॉर 2 वीक्स. द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर सेवरल मंथ्स अंटिल जब तक मॉइस्चर उसका 18-20% के बीच नहीं हो जाता है.
1: 2 मिनट आपने बर्बाद कर दिए.
3: अरे आप
1: किसी
3: बना
1: को
3: सकते
1: कुछ नहीं समझ में आया और इससे अच्छा मैं मछली खाना ही छोड़ दू, इट्स फाइन, आई स्टॉप ईटिंग फिश, कोई वो नहीं होगा मेरे को डिफरेंस.
3: लेकिन जस्ट इमेजिन
1: कितना मेहनत लगता है इसको बनाने में,
3: कितनी मेहनत करते हैं ये लोग अपने इस डिश को एंजॉय करने के लिए.
1: आई मीन खाना इज सपोज टू बी लाइक दैट ना, इफ यू डोंट पुट योर टाइम, योर एफर्ट, योर लव, यू वोंट बी एबल टू एंजॉय इट. पर फिलहाल के लिए ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यार दुनिया भर में, ऐसी कमाल की यूनिक डिशेस हैं जो शायद आपने भी कभी ट्राई नहीं की, और आज हो सका तो इसके बारे में कुछ और बातें ज़रूर करेंगे. गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, माय नेम इज़ विक्रम फ्रॉम ओटारा, आई एम एट वर्क बट लिसनिंग टू यू गाइज एज वेल. माई फेवरेट शो, बचपन में जो सॉन्ग सुनते थे वो सुनता हूँ, जैसे झूम बराबर झूम, स्कूल टाइम में सुना था. थैंक यू फॉर मेकिंग माई डे, ये इन्होंने कहा है. थैंक यू सो मच विक्रम.
3: किसी विक्रम ने मुझे भी मैसेज किया सुबह सुबह.
1: अच्छा,
3: गुड मॉर्निंग विजय एंड पूजा, माय नेम इज विक्रम, माय द एक्टर नेम इज मोहन अगाशे. इन्होंने मेरे फोन पे पता नहीं कहाँ से मैसेज, कहाँ से नंबर ढूंढ के मुझे मैसेज किया,
1: शायद वो जानते होंगे आपको किसी तरह से. दैट्स हाउ योर नंबर इज देयर.
3: थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू सो मच
3: एंड आपने करवाड़ू की बात कही तो जनेन नायडू बहुत एक्साइटेड हो गए.
1: उनको खड़वाड़ू खाना है लगता है,
3: खाना होगा शायद, आपको ज्यादा पता, आपके भाई हैं.
1: अच्छा मुझे मेरे भाई इसका मतलब ये नहीं उनको क्या खाना क्या नहीं, वो मुझे पता होगा. बट नेवरदलेस चलिए, 9 मिनट हो रहे हैं 7:00 ऑन द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा. मॉर्निंग मैडनेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं. रिमेंबर इफ यू आर सेलिब्रेटिंग योर स्पेशल डे टुडे, आपका हैप्पी बर्थडे एनिवर्सरी, लेट अस नो, इसी घंटे आपको हम जरूर विश करेंगे.

0: Show with Vijay and Pooja.
1: Tumo jao, papi ho. Tumo jao.
0: Rashi Vibes.
2: कैसा रहेगा आज का आपका दिन मेष यानी एरीज बिजनेस ट्रेवल आपको आज अच्छा रिजल्ट देगा फायदे के मौके आपको बार बार मिलेंगे समझदारी से काम करें बेकार की बातों में टाइम वेस्ट ना करें इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है ऑफिस में भी तरक्की करेंगे
3: वृषिनी टोरस आज आपके लिए कहा गया है कुछ नए प्लान्स आप बनाएंगे फाइनेंशियल प्लान्स की बातें हम कर रहे हैं और ये जो फाइनेंशियल प्लान्स है आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट लेकर आने वाला है काम करने के तरीके में सुधार के साथ साथ जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर कुछ चेंजेस और इनफैक्ट बेनिफिट्स जो है ये आप नोटिस करेंगे वैसे कम्युनिटी को लेकर समाज को लेकर भी आज आप में एक जागरूकता है एक यू नो इंटरेस्ट है कि आप भी कुछ बदलाव जो है ये लाना चाहते हैं ऐसा आपके लिए बताया गया है
2: मिथुन यानी जेमिनी आपका भी बिजनेस बढ़िया चलेगा इन्वेस्टमेंट के लिए दिन अच्छा है दूसरों के काम में इंटरफियर ना करें और साथ ही अपने हेल्थ का ख्याल रखें फायदा आज कुछ ज्यादा होगा आपको एंड यू विल बी हैप्पी
3: और उसके बाद करके ने कैंसर आपके लिए कहा गया है पैसों के मामले में आज आप पैसे ही पैसे जो है ये देखने वाले हैं सो गुड
2: नहीं जीता कोई नहीं जीता पावर बॉल कल
3: नहीं तो अरे पावर बॉल नहीं जीता लेकिन और भी तो विजेता हुए ना यू डिडंट सी
2: अच्छा हां आगे बता
3: देयर वर सम लोटो विनर्स जिन्होंने 300 समथिंग थाउजेंड जो ये जीते और 400,000 किसी ने जीता तो इट कुड बी अ कैंसेरियन ना वैसे आपके लिए ये भी बताया गया है कि गाड़ी चलाते समय मशीनरी का इस्तेमाल करते समय केयरफुल रहे किसी भी प्रकार के झगड़े में ना पड़े सलाह दी गई है स्टे अवे फ्रॉम आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स टुडे
2: सिंह यानी लियो आज आपके लिए कहा गया है घर बाहर खुशियां होंगी आपके लिए बॉसेस तो आपके काम से बहुत इंप्रेस्ड रहेंगे किस्मत का साथ मिलेगा सभी काम पूरे होंगे लेकिन रश ना करें
3: और इसके बाद आज करने यानी वर्गो आपके लिए कहा गया है कि थोड़ा केयरफुल हो जाए जो आप कर रहे हैं आसपास लोगों से भी थोड़ा वाकिफ रहे व्हाट पीपल आर डूइंग हाउ दे आर ट्राइंग टू यू नो गेट थिंग्स डन अराउंड यू और उनके भाव को उनके तौर तरीकों को ज़रूर आप ऑब्जर्व करें इफ़ इट डजंट मैच योर वाइब इफ़ इट डजंट मैच योर वैल्यू आपको डिस्टेंस अभी कर लेना है ऐसी सलाह आपको दी जा रही है बॉसेस आपसे काफ़ी खुश रहेंगे आज आपके जो बॉसेस हैं सुपीरियर्स हैं आप जिस तरह से मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं यू'ड गेट सम वेरी गुड रिजल्ट्स इन योर प्रोफेशनल लाइफ और साथ में आपके लिए कहा गया है किस्मत आपका साथ दे रही है कोशिश करते रहे सफलता ज़रूर हासिल करेंगे
2: तुला यानी लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है आज आपके काम को भी प्रेज किया जाएगा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी काफी बिजी रहेंगे इसका असर आपके हेल्थ पर पड़ सकता है
3: और इसके बाद वृश्चिक ने स्कॉर्पियो किसी अननोन व्यक्ति पर हद से ज्यादा विश्वास विल डेफिनेटली भी बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए तो विश्वास तो वैसे कहते हैं कि आजकल अपनों पर भी नहीं किया जाता तो अननोन व्यक्ति पर करने का क्या मतलब हुआ इसीलिए बी वेरी केयरफुल हु डू यू ट्रस्ट स्पेशली आज के दिन और विवाद और कलेश जो है ये संभव है ट्राई करें ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपके लिए नेगेटिविटी आप आसपास बढ़ाते हों फैलाते हों क्योंकि उनसे आपके आर्ग्यूमेंट्स कुछ ज़्यादा होंगे ऐसा आपके लिए कहा गया है कीमती चीज़ों को संभाल के रखें गुम या चोरी होने पर नुकसान हो सकता है
2: अच्छा मुझे क्या बताना है अब
3: आपको बताना है अब धनु यानी सेजिटेरियस
2: ओके आज कोशिशें आपकी सक्सेसफुल होंगी उन्नति करेंगे बिजनेस बढ़िया चलेगा जल्दबाजी में कोई काम ना करें कोई पुरानी बीमारी जो है ये आज आपको परेशान कर सकती है कोई इंपॉर्टेंट चीज है जो आज टाइम पर आपको मिलेगी नहीं
3: और उसके बाद आज मकर यानी कैप्रिकॉन आपके लिए कहा गया है घर पर मेहमान आएंगे इनके साथ अच्छा समय बीतेगा कोई बहुत शुभ समाचार आपको मिलेगा यू'ड बी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस न्यूज़ और नौकरी में आपके जो अधिकार हैं राइट्स हैं बेसिकली ये आज बढ़ सकते हैं
2: कुंभ यानी एक्वेरियस घर बाहर सभी ओर से सपोर्ट मिलेगा अगर आप अनएम्प्लॉयड थे तो आज आपको नौकरी मिल सकती है अचानक कहीं से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी कोई फायदा आपको हो सकता है बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा एक्सपेंसेस जो है ये आपके बढ़ेंगे और अगर आपने खुद कंट्रोल ना किया तो लोन लेना पड़ेगा आपको
3: और आखिर में मीन एंड पाइसेस आज आपके लिए बताया जा रहा है बिजनेस अच्छा चलेगा अगर खुद का बिजनेस है आपका साथ में आपके लिए कहा गया है कुछ अननोन खर्चे जरूर आ सकते हैं सो ट्राई एंड मैनेज देम इफ पॉसिबल बातों पर कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है द वे यू स्पीक द टोन द वर्ड्स आप थोड़ा केयरफुल हो जाए किस तरीके का शब्दों का और टोन का इस्तेमाल आप करते हैं सो ये थे आज के आपके राशि वाइब्स उम्मीद करते हैं दिन आपका सभी का बहुत ही अच्छा और कमाल का गुजरे कुछ और गुड मॉर्निंग मैसेजेस भी आए हैं हमारे पास ना
2: हाँ हाँ थैंक यू सो मच आपके गुड मॉर्निंग मैसेजेस के लिए ऑल द वे फ्रॉम हिज रिजोर्ट इन फिजी रवि का मैसेज आया है रोवर पर प्रोग्राम सुन रहे हैं
3: अच्छा खुद का रिजोर्ट इनका
2: नहीं नहीं यहाँ से गए
3: आपने बोला ऑल द वे फ्रॉम हिज रिसोर्ट, तो मेरे को लगा उनका खुद का रिसोर्ट है ना।
2: खुद का होता तो हम भी जाते हैं ना।
3: अच्छा। एक दिन एक दिन। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रोवा पर। गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय, विशिंग यू बोथ अ वंडरफुल डे। 0245 आपके मैसेज के लिए और एक बर्थडे ग्रीटिंग भी आपकी ओर से, तो डेफिनेटली विल डू दैट लेटर दिस आवर।
2: और गुड मॉर्निंग भाई विजय एंड पूजा, सल्लू लिसनिंग आउट फ्रॉम गल्फ हार्बर फंगापरोआ, एंजॉयिंग लिसनिंग टू यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। आपको भी ये सुबह मुबारक हो।
3: फिलहाल 22 मिनट्स आफ्टर 7 कमिंग अप नेक्स्ट आपके लिए आज का हमारा सेलिब्रिटी अलार्म। लेट्स सी क्या आज ये आवाज आप पहचान पाते हैं या नहीं।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
1: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
5: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: सा और अपना नाम ये 5599 पर आपको हमारे पास भेजना है। देखिए आप में से कितने लोग हैं जो वेरी इजीली आज आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे सेलिब्रिटी कौन हैं आज के।
1: बिल्कुल, और रिमेंबर BF आपका आंसर, आपका नेम आपको 5599 पर भेजना है। तो एक बार फिर से इनकी आवाज़ जो है ये हम आपको सुना रहे हैं, अच्छे से सुनिए। और इसके बाद क्योंकि अब हम आपको आवाज़ नहीं सुनाएंगे, दिस इज द लास्ट टाइम वी आर प्लेइंग दिस वन, लिसन टू इट केयरफुली एंड इफ यू कैन आइडेंटिफाई BF स्पेस कौन है ये, इनका नाम और आप अपना नाम लिख कर 5599 पर आपको भेजना है।
2: इट वॉज अबाउट अ सन ट्राइंग टू फुलफिल अ डिजायर फॉर अ मदर।
3: यस,
2: the gore, the glory, I think the basic human emotion in it was a son who felt a mother has been met with injustice.
4: Bollywood's most wanted.
5: Gundi khad jao ya seedha andar aao.
6: Main laun apna A game.
4: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: News Headlines.
1: नेशनल एमपी केटी निमन पर उनकी मैटरनिटी लीव को लेकर तय की गई टिप्पणियों और माफी ना मांगने पर बवाल के बाद स्टुअर्ट नैश ने न्यूजीलैंड फेस्ट के नेपियर कैंडिडेट के रूप में रेजिग्नेशन दे दिया है। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने नैश के इस व्यवहार की निंदा करते हुए साफ किया कि वो अपनी गवर्नमेंट में नैश को कभी मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। 2021 के लिनमोल सुपरमार्केट अटेका अहमद शमसुद्दीन के कोरोना इंक्वेस्ट में पता चला है कि ऑकलैंड के मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रहते हुए उनके पास डी रेडिकलाइजेशन का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रिजन कमिश्नर ने बताया कि शमसुद्दीन खुद को टेररिस्ट कहकर स्टाफ को धमकियां देता था, जबकि एक टेररिज्म एक्सपर्ट ने दावा किया है कि प्रिजन के माहौल ने उन्हें सुधरने के बजाय और ज्यादा रेडिकलाइज कर लिया था। अभी उनके इंक्वेस्ट पर सुनवाई जारी है। न्यूजीलैंड और फिजी अंडर 16 सोकर टीमें अगले अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। कल ओएफसी अंडर 16 मेंस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में फिजी की जीत पेनल्टी किक्स में सोलोमन आइलैंड्स के खिलाफ 4-2 से हुई, जबकि न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 3-0 से हराया। दोनों देशों के बीच अब फाइनल जो है ये 2 दिनों बाद खेला जाएगा। हालांकि दोनों टीमें पहले से ही अब फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। एक और जबकि 3-4 दिनों बाद ऑकलैंड एफसी को टॉटनम हॉटस्पर्स का सामना करना है, तो वहीं पर अभी तक टीम के नए कोच या मैनेजर की नियुक्ति पर कोई बयान नहीं आया है। ऑकलैंड एफसी और टॉटनम हॉटस्पर्स का मैच जो है ये इसी रविवार को ईडन पार्क पर खेला जाएगा, और इस मैच पर अपडेट्स आपके लिए हम पर हम लेकर आएंगे।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
4: New tasty cookie dough bars.
5: Quite a cloudy one for us today. A high of 15 degrees. Into the city, motorways are fairly good. Northern 23 minutes in from Constellation Drive. 43 Silverdale to the city. Slow at Silverdale and Constellation to the bridge. Northwestern 28 minutes in from Massey, slow from Te Aratu all the way in, a few small heavy patches. Southern 42 in from Manukau, slow from Papakura, heavy spots there to Manukau. Southwestern slow both ways.
4: Tasty cookie dough bars, a delicious cookie dough snack bar that the whole family will love.
6: Māori Mā, every day we make choices, choices that work for us. If you're already enrolled but want to change roles for this year's election, you need to do it by midnight on the 6th of August. After that, it's locked in until after the election. Māori role or general role. No right or wrong, just right for you. Find out more at vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission.
7: MyTitan Club Members, ये आपके लिए। इस जुलाई शॉप कीजिए और स्कैन कीजिए अपना क्लब कार्ड एंड यूर इन द ड्रॉ टू विन 10,000 एयर पॉइंट्स प्लस वीकली एयर पॉइंट्स प्राइजेस भी। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट अमंगस्ट इट एट MyTitan Mega Westgate और Henderson.
8: The Bedzaras birthday sale is on now with amazing savings. Like the Chiropractic HD Radiate Bed, now half price, queen size from 2799. Find more birthday deals in store and online. Bedzaras, Marikau and Pokekohe, celebrating 36 years of great sleep.
9: Welcome to Kebab's Kitchen. I am Chef Alex and this is my guest, Sarah.
10: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
9: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
10: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
9: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
10: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
2: The beat of Bollywood.
11: World's best. Hamari koi brands nahi hai.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
12: Iska birthday bhai?
13: Mera hi birthday hai. Chalo line mein aa
14: jao. Happy birthday to you.
15: A very very happy birthday आपको विश करते हैं आज, यानी कि 23rd of July को आप जहाँ कहीं भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। Happy birthday, many many happy turns of the day to my husband Vimlesh. Wishing him a blessed and wonderful day. God bless him always. Best wishes from wife Priya and बच्चे हैं राहुल, जिया और आरव। इनकी ओर से भी ढेर सारा प्यार. सो विमलेश, हैप्पी बर्थडे आपको हमारी हम टीम की ओर से और हम दोनों की ओर से खास तौर पर.
1: कल राजा राम जी हैं ग्लेनफील्ड में, आज आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस दिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे.
15: और आज रवीना कांत, आप भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, आपको भी अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपके पति है एडविन और साथ में एक प्यारा सा बेटा है डेनियल. इनकी ओर से स्पेशल लव एंड विशेज, नॉट फॉरगेटिंग योर पेरेंट्स बैक इन फिजी एंड योर ब्रदर, एंड ऑफ कोर्स आपके इन लॉज की ओर से भी आपको very happy birthday, many many happy returns of the day.
1: और आज इंद्रवर शुक्ला की ओर से मैसेज जो है ये आया है, आज इनकी पत्नी है अपना बर्थडे जो है ये सेलिब्रेट कर रही हैं. अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे अंबालिका शुक्ला जी. और आज खुशी के इस मौके पर पति इंद्रवर हैं, साथ में ईशान और अदिति बच्चे हैं आपके, जितने भी परिवार वाले हैं सभी आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं.

0: इनसे PMI.
1: तो आज का सेलिब्रिटी अलार्म, आई थॉट इट्स सो इजी क्योंकि बहुत यू नो वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, सेलिब्रिटी हैं आज जिनकी आवाज हम लेकर आए थे. पर सरप्राइजिंगली यार इतने सारे गलत आंसर्स आ रहे हैं. शीना का मैसेज आया, सत में जैकी है, आंचल है, आशा है, संगीता है, अमन है, हेम है, पूर्वी आपका भी मैसेज आया, इन सबने कहा है ट्विंकल खन्ना. एंड वी हैव गॉट अनदर मैसेज फ्रॉम चरीशा, इन्होंने भी ट्विंकल खन्ना कहा है. अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि मैसेजेस जो आए हैं उनमें से आ गया सही जवाब तो खैर आ ही गया है, अब तो वी हैव टू रिवील द नेम टुडे,
2: बट बहुत कम.
1: बट जो गलत आंसर्स और सही जवाब के मिलान में अगर देखें हम, गलत आंसर ज्यादा है.
2: सही मुझे दो नजर आ रहे हैं.
1: हाँ, दो ही सही आंसर्स है, बाकी सारे गलत है. ट्विंकल खन्ना नहीं है ये, इतना हम आपको बता सकते हैं. और अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ट्विंकल खन्ना की आवाज है, तो हमने कहा था नहीं प्ले करेंगे, दैट वाज द लास्ट टाइम, बट एक आखिरी बार प्ले कर रहे हैं. आप अच्छा से मतलब अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिए और नाउ लिसन टू दिस वॉइस फर्स्ट.
3: इट वाज अबाउट अ सन ट्राइंग टू फुलफिल अ डिजायर फॉर अ मदर.
4: यस,
3: द गोर, द ग्लोरी, आई थिंक द बेसिक ह्यूमन इमोशन इन इट वाज अ सन हु फेल्ट अ मदर हैज बीन मेट विद इनजस्टिस.
1: तो ये आवाज़ किसकी है आपको हमें बतानी है. इट्स नॉट ट्विंकल खन्ना, इतना हम आपको बता सकते हैं. अगला गाना हमारा जो है करीबन 3 मिनट का है और यू हैव दैट मच टाइम. कंगना रनौत, शानिया आपने भेजा, नहीं इट्स नॉट कंगना रनौत आइदर. कंगना रनौत हैज़ अ वेरी डिफरेंट वॉइस एंड इन अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ स्पीकिंग ऑल्सो.
2: सो आपके पास 3 मिनटों का वक्त है, जैसे हमने बताया आपको. BF अपना आंसर और अपना नाम, जो भी नाम, कोई क्लू है आपके पास?
1: ये एक ऐसी शख्सियत है जो ना केवल एक एक्ट्रेस है लेकिन एक पॉलिटिशियन भी है.
2: ओके,
1: सो ये दो वो संभाल रही है ना
2: जिम्मेदारियां
1: सेलिब्रिटीज होने के चेकलिस्ट में. इनके पास दो टिक्स है. कंगना रनौत भी है, एक एक्ट्रेस भी है और पॉलिटिशियन भी है, बट हमने कहा कि शी इज नॉट द सेलिब्रिटी फॉर आवर सेलिब्रिटी लाम टुडे. पर ये जो शख्स है ये पॉलिटिशियन भी है और ये एक एक्ट्रेस भी है. और कौन है ये, और एक्टिवली भी दोनों काम करे. देयर वाज अ टाइम व्हेन शी टुक ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग, शी वाज नॉट एक्टिंग, बट रिसेंटली इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में वापसी जो ये की है.
2: सो BF आंसर और नाम, 3 मिनटों का वक्त है आपके पास, भेजे. देखिए अब कौन है जो पहचान सकता है.
1: और साथ हमारी बनी रहेगी क्योंकि थोड़ी देर बाद आपके लिए एक और एक बहुत ही जरूरी जानकारी लेकर आने वाले हैं. समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग दिस सैटरडे. अगर आपने इतने दिनों से नहीं सुना है तो क्या है ये समथिंग स्पेशल, वेल विल फाइंड आउट विद यू इन अ व्हाइल.

0: तो हमने कहा था कि आपको बताएंगे कुछ ऐसा जो होने जा रहा है इसी सैटरडे को, समथिंग रियली स्पेशल. एंड इफ यू मिस्ड आउट डिटेल्स ऑन दिस, तो दिस वन इज स्पेशली फॉर यू, क्योंकि द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं सुपर सिटी ऑकलैंड अपना अनफॉरगेटेबल म्यूजिकल नाइट लेकर. और ये वन ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस है जो आपको हर साल नहीं मिलेगा. और यू नो आई थिंक दो साल पहले वो आए थे, उनका बहुत ही अमेजिंग सोल्ड आउट शो जो है ये गया, एंड पीपल रियली एंजॉयड वाचिंग हिम परफॉर्म लाइक अ ट्रू परफॉर्मर. इन्होंने कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस जो है अपना ये दिया, एंड पीपल लव्ड द सॉन्ग्स दैट ही सेंग. कव्वाली हो, सूफी नगमे हो, कुछ यू नो हिंदी गाने, बॉलीवुड के गाने जो इन्होंने गाए, इनकी पावरफुल वॉइस और इनके अंदाज को लोगों ने इन्जॉय किया. बट दिस टाइम अराउंड अगर आपने पिछली बार इन्हें मिस किया, इस बार सेम गलतियाँ जो है नहीं करते ना लाइफ में, तो वो गलती वापस से मत करना. टिकट्स जो है आप अभी भी ले सकते, बिकॉज आई थिंक देयर लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स अवेलेबल. नॉट श्योर हाउ मेनी टिकट्स, बट लिमिटेड अभी भी है, एंड यू कैन ग्रैब दोज टिकट्स dryTickets.com विजिट करते हुए. और वंस यू ग्रैब योर टिकट्स, आप श्योर रहिए कि आप इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ओर से इसका मजा इसी शनिवार 25th ऑफ जुलाई को ले सकते हैं एट द ट्रस्ट अरेना.
1: तो ये आ रहे हैं, आई थिंक अराउंड 30 मेंबर स्क्वाड है इनका, जिनको वो लेकर आ रहे हैं, जो स्टेज पर इनके साथ परफॉर्म करने वाले हैं. तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होगा माहौल जब उस्ताद राहत फतेह अली खान परफॉर्म करेंगे. सो मेक श्योर dryTickets.com इज द प्लेस जहां पर आपको जाना है और जल्द से जल्द अपने टिकट्स ले लेने हैं. अभी
0: जी रिवील करते ना आज की हमारे सेलिब्रिटी अलार्म में किनकी आवाज थी. बट बिफोर वी डू दैट, हमने क्लूज भी दिए लेकिन उसके कुछ बाद भी लोगों ने गलत आंसर्स भेजे. जया प्रदा भेजा किसी ने, जया बच्चन भेजा, और दिया मिर्जा किसी ने लिखकर भेजा. बट नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. वी गॉट गौरव जिन्होंने अपना जवाब भेजा, साथ में सोनल है, और उसके साथ साथ मेरे ख्याल से ममता है, शालिनी है, चरिशा ने वापस से कोशिश की, अभिनव है, शानिया ने दोबारा जवाब भेजा, और नाजनीन आपका भी मैसेज हमें मिला. इस बार आपके जवाब बिल्कुल सही. आज की सेलिब्रिटी इन सेलिब्रिटी अलार्म वाज नन अदर देन स्मृति ईरानी. स्मृति जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया में काफ़ी धूम मचाई, लेकिन उससे पहले शी हैड टेकन पार्ट इन अ ब्यूटी पेजेंट. शी हैज़ रिप्रेजेंटेड यू नो हर कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म एज वेल, एंड टेलीविजन में दैट वन फेस, दैट वन नेम विच इज़ रियली बिग.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: So temperature वापस से gone down compared to what it was last hour when we did the weather update. अभी 8.1 degrees है temperature. High of 15 expected है बाद में चलकर overnight 8 degrees रहेगा. Partly cloudy weather. अभी भी areas of morning fog report किया जा रहा है. Isolated showers in the evening और sunset 5:30 pm पर होगा. So ठंडी काफी ज्यादा है and make sure ऐसे मौसम में आप fully prepared घर से निकले.
0: The breakfast show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco, English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, barristers and solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
3: ट्रेंड पेट्रोल में आज सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्या रहा. द टॉप थ्री थिंग्स. नंबर वन जो है, आपको याद होगा सिडनी में एक बैकयार्ड बारबेक्यू के दौरान एक मम जो है इनकी मृत्यु हो गई थी एक ट्रेजेडी में. शार्लोट रोज एन हिल, उनकी कहानी जो है या जो कुछ उनके साथ हुआ, दैट हैज़ बिन द मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज इन न्यूजीलैंड. उसके बाद न्यूजीलैंड फेस्ट के जो स्टुअर्ट नैश, उनका रेजिग्नेशन और जो सारा मामला है, दैट वाज ऑन नंबर टू. और नंबर थ्री पर अभी किस तरह से न्यूजीलैंड में कंपनीज जो हैं लिक्विडेशन में जा रही हैं, हैज़ बीन ऑन नंबर थ्री. इंडिया में अगर टॉप थ्री चीज़ें देखें, नंबर वन पिछले 12 घंटों में एल नीनो के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों ने पता करने की कोशिश की.
1: I think we had spoken about this, na? El Nino ke baare mein baatein ki thi.
3: El Nino ke baare mein, but last 12 hours mein India mein sabse zyada logon ne Google par El Nino ke baare mein search kiya.
1: Okay.
3: Followed by Education Minister jo hain, Krishi Minister jo hain, wahan ke unke baare mein, aur Education Minister Dharmendra Pradhan, unke baare mein bhi sabse zyada Google kiya gaya. Aur uske alawa Fiji mein agar dekhein, to jo most trending news, Junior Bula Boys jo hain, reading the under 17 FIFA World Cup, और उसके अलावा Fijian Drua Women's Rugby Team काफी ट्रेंड कर रही है. They've made it into the Super Rugby Women's Grand Final in Ba, और उसके अलावा जो political और court trials चल रहे हैं, and they have been also trending in the past 24
1: so,
3: hours.
1: So many different things trending in different places of the world right now, जो आपके लिए Trend Patrol में हम लेकर आ रहे थे. फिलहाल आज इस घंटे आपके लिए काफी एक interesting खबर जो ये लेकर आएंगे. प्लस वी हैव गॉट टाइम टू टॉक टू गुरु कंडोला एज वेल, लॉजिक फाइनेंस के. थर्सडे है आज ना, तो आज इनसे भी बातें जरूर करेंगे. बट उसके साथ साथ आज का हमारा व्हाट्स योर टेक, ये टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे बस थोड़ी देर में. होपफुली आज आप थोड़ा तैयार हो, थोड़ा जागे हो, थोड़ा प्रिपेयर्ड हो टॉपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज दैट वन टाइम वे वी ओपन द लाइन्स एंड वी इन्वाइट यू कि आप आए हमारे साथ. जो टॉपिक है उस पर अपने व्यूज जो है ये शेयर कीजिए. तो डेफिनेटली टॉपिक थोड़ी देर बाद हम रिवील करेंगे. फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पूजा एंड विजय फ्रॉम सुख एंड खुश. थैंक यू सो मच आप दोनों के मैसेजेस के लिए. हैव अ वंडरफुल डे.

0: rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Farmers' birthday sale for Farmers Club members is now on. Up to 50% off kitchen and dining, 50% off beds by Sleepyhead, and up to 50% off furniture and small appliances. Farmers' birthday celebration is now on. Conditions and exclusions apply.
2: Bunnings has great value nailed across the store.
3: Like a Rap and Move 105-litre moving bag, only $3.45, or a 52-litre light-duty moving carton, just $3.45. Head in store or online for even more great value. Bunnings Warehouse.
4: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
8: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यहीं अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
10: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in the Pacific, like Samoa from $319 one way, Tonga from $349, or Vanuatu from $355. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
11: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
12: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
11: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates. Barristers and solicitors. Harper Toy and Hamilton.
13: What's your take?
14: तो आज का टॉपिक व्हाट्स योर टेक के लिए बताने से पहले आपको ये हम बता दें कि आपको हमारे पास कॉल करना है ऑन 0800 हम 0800-004-866 पर ये टोल फ्री नंबर है हमारा सो इफ़ यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन दिस नंबर यू कैन डेफिनेटली टॉक टू अस एंड देयर वोंट बी एनी चार्जेस बेसिकली फ्री में आप हमसे बातें कर पाएंगे आसानी से हमसे बातें कर पाएंगे टॉपिक सुनने के बाद इफ यू कम अप विद ओके दिस इज द टॉपिक आई हैव गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर दिस इज माई व्यू दिस इज व्हाट आई थिंक तो वो आप हमारे पास कॉल करते हुए हमें जरूर बता सकते हैं एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू और चाहे तो 5599 पर आप अपने मैसेजेस भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं इफ यू डोंट फील लाइक टॉकिंग क्योंकि कुछ लोग होते हैं थोड़ा शाय उनको ओपन अप होने में टाइम लगता है ना तो यू कैन टेक योर टाइम मैसेज कर दीजिए नाम बता दीजिए कि आपने ये मैसेज भेजा है एंड वीड अंडरस्टैंड इट्स कम फ्रॉम यू एंड वीड डिस्कस इट ऑन योर बिहाफ बट We'd love to receive a call from your end.
15: Right. आज का हमारा टॉपिक जो है टाइम्स ऑफ इंडिया पर एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था एक स्टडी में कुछ बातें सामने आई हैं जिसके बाद मैंने सोचा आपसे भी पूछते हैं कि हमारी सोसाइटी में आइडियोलॉजीज जो हैं कुछ बहुत पुरानी हैं जो चलती आई हैं एंड हैव दीज चेंज्ड ओवर टाइम नो एक है उनमें से द आइडिया दैट अ वुमन अर्निंग मोर देन हर हस्बैंड ये एक प्रॉब्लम को की तरह देखा जाता था अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है
14: Which is a very good thing.
15: Right. और वहीं पर स्टडी में ये बात सामने आई है कि ओनली अराउंड 30% ऑफ कपल्स हैड वाइफ्स अर्निंग मोर देन देयर हस्बैंड्स और ये भी पाया गया है कि हस्बैंड जिनकी बीवियां जो हैं एटलीस्ट 70% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम ये लेकर आती हैं वे नियरली 2.5 times मोर लाइकली टू रिपोर्ट सीरियस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उन मर्दों के मिलान में जो मेन अर्नर्स होते थे. तो जिन घरों में बीवियां ज्यादा पैसे कमाती थी,
14: हस्बैंड्स साइकोलॉजिकली एक किस्म का डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं.
15: हाँ, इट डजंट मीन कि अर्निंग लेस कॉजेस द स्ट्रेस. इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं. कुछ मर्दों को शायद प्रेशर फील होता होगा बिकॉज दे ग्रीव अप बिलीविंग कि उनको अपनी फैमिली का फाइनेंशियल प्रोवाइडर बनना चाहिए. आदर्स में वोरी कि दोस्त, परिवार वाले या सोसाइटी इसको किस नजरिए से देखेंगे. हाँ. तो ये सारी चीजें,
14: आई गेस, सी ये एक बात तो सही है कि बिकॉज उस तरह से हमें बढ़ा किया जाता है कि दिस इज द आइडियल वर्ल्ड जहाँ पे बेसिकली इज बीइंग सेड कि यू ग्रो अप एंड यू आर द मैन ऑफ द हाउस एंड यू नीड टू अर्न मोर एंड यू हैव टू यू नो टेक केयर ऑफ द फैमिली फाइनेंशियली.
15: जो बेसिक आइडियोलॉजी पुराने के जमाने में थी कि मर्द बाहर काम करता है, पत्नी जो है घर संभालती है.
14: राइट.
15: और वक्त के साथ ये बहुत बदल चुका है. यू नो, अब सब कुछ बराबर बराबर चल रहा है, बाहर भी घर पर भी. क्या, लेकिन उसके साथ ये क्या एक मेंटेलिटी है आपको लगता है? हाँ, बदलाव आया है, डेफिनेटली बदलाव आया है, लेकिन किस हद तक बदला? क्या अभी भी मर्द जो है आपको लगता है प्रेशर फील करते हैं अगर बीवी की आमदनी जो है उनसे ज्यादा हो?
14: राइट.
15: तो ये आज का हमारा टॉपिक है.
14: There you go. तो क्या ये बात आपको सही लगती है, गलत, कि क्या सच में मर्द जो है प्रेशर फील करते हैं अगर उनकी बीवी जो है अपने मतलब उनसे ज्यादा अर्न करती है? हाँ या ना? एंड यू कैन शेयर योर व्यूज, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस. गुड मॉर्निंग एफआस, कैसे हो?
13: गुड मॉर्निंग, मैं अच्छा, आप कैसे?
14: एकदम बढ़िया, आप सुनाइए.
13: बढ़िया हूँ. हाँ, टॉपिक तो काफी बढ़िया है. वैसे मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं वो बहुत उसमें यानी 100% वैलिड है. और जहाँ तक अपनी जो परवरिश है वो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार है. और सेकेंडली वो होता है ना कि जैसे कुछ लोग इसको ईगो भी बना लेते हैं कि मैं ज्यादा कमाना चाहिए, या अगर मैं उस वाइफ से कम कमाऊंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, फिर या मुझे दब के उससे रहना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि वो काइंड ऑफ प्रेशर जो है वो ज्यादा आता है लोगों पर, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि ऐसा मेरे यानी मैं नाम नहीं लूंगा, बट मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है. तो जब मैंने उससे ये चीज डिस्कस की थी कि क्या तू क्या सोचता है, तो ही वाज जस्ट सेइंग कि मुझे प्रेशर होता है कि मेरी वाइफ फिर मुझे बोलने में झगड़े में कभी सुना देती है कि घर का भी काम मैं कर रही हूँ, उससे ज्यादा भी मैं कमा रही हूँ एंड ऑल थिंग्स.
14: सो
13: एक बार आई वाज डिस्कसिंग विद हिम, मैंने उसको बोला कि देख, यू कैन जस्ट डू व्हाटएवर इन योर हैंड, और उसके लिए स्ट्रेस लेना या आउट ऑफ द वे जाना या घर में झगड़े करना, दैट्स नॉट राइट.
14: ओके.
13: बट या आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट हो रही है और समय लगेगा, बट ये भी चीजें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी सोसाइटी.
14: ओके. Thank you FRS. Yeah. Thank you आपके कॉल के लिए. Have a wonderful day. 0800-004-866 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं टू शेयर योर व्यूज आज के टॉपिक ऑफ द डे के बारे में. आपका क्या कहना है? और जैसे कि हमने कहा, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजंस, यू कैन डेफिनेटली टेक्स्ट ऑन 5599 टू अस एंड वीड लव टू हियर फ्रॉम यू. आपके व्यूज जो है ये हम जानना डेफिनेटली पसंद करेंगे. एक मैसेज आया है और इन्होंने कहा है, There is no problem in wife earning more, but the problem begins when the wife keeps repeating to the husband that she is earning more than the husband. Wife's ego pushes the husband towards distress. If husband earns more, he should also control his ego. In summary, it doesn't matter who earns less or more, as long as one looks at their success as one unit and don't show self-pride, the other partner will not feel undermined. ये एरोन ने कहा है.
15: थैंक यू सो मच एरन, आपके भी मैसेज के लिए और आपके व्यू के लिए एंड लेटिंग अस नो व्हाट्स योर टेक. आपका भी स्वागत है प्रोग्राम में. गुड मॉर्निंग. हेलो,
16: गुड मॉर्निंग.
14: कैसी हैं परविंदर आप?
16: मैं अच्छी, आप कैसे हो?
14: एकदम बढ़िया जी. तो बताइए, आपका क्या कहना है आज के टॉपिक के बारे में?
16: मुझे भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम सैलरी का नहीं, प्रॉब्लम जेंडर का नहीं है, प्रॉब्लम सैलरी का है. क्योंकि मेरी एक फ्रेंड काम नहीं करती थी, तो उसका हस्बैंड उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर नहीं करता था, कि वो कहता था तुझे क्या पता, तू तो घर पर रहती है सारा दिन. तुझे क्या पता दीन दुनिया का. तो ही वॉज दी अर्नर, तो ही यूज्ड टू ट्रीट हर लाइक के शी डोंट एग्जिस्ट.
14: उनका कोई व्यू नहीं है, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है.
16: और कभी कभी बहुत अजीब बातें भी बोल देता था उसको. बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने वाली बातें.
15: अच्छा, तो क्या आपकी फ्रेंड को नौकरी मिली?
16: वो करना भी नहीं चाहती थी ना, उसे बातें सुनना अच्छा लगता था.
14: तो ये बातें यही छोड़ते हैं तो कि
16: नहीं, क्योंकि मैंने उसको बोला था बहुत बारी कि तू क्यों बातें सुनती है, तू काम कर लेना. नहीं कहती, घर बैठी हूँ कहती मजे से, तेरे तरह थोड़ी कहती बीमार भी हूँ और काम पे जाऊँ.
14: नहीं, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना, उनको नहीं करनी तो नहीं करनी.
16: उसने उल्टा मुझे ही ऐसे फील कराया कि तू पागल है. चाहे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है, पर एटलीस्ट आई एम एंजॉयिंग एट होम.
14: इंटरेस्टिंग यार परविंदर, आप हर टॉपिक को जिस तरह से प्रेजेंट करती है ना, बड़ा मजा आता है कभी कभी सच में. थैंक यू आपके कॉल के लिए. हैव अ वंडरफुल डे है. थैंक यू,
16: हैव अ गुड डे.
14: तो आज का टॉपिक किसी और ने मैसेज किया है. इन्होंने कहा है, हाय, आई विश माय वाइफ अर्न्स मोर देन मी, आई वुड फील प्राउड. ये किसी ने कहा है.
15: That's amazing. That'll be good. So, आपके पास अभी अगर कोई राय है, यही मौका होता है जहाँ पर खुलकर कुछ बातें करने का मौका जो है ये हमारे पास होता है, जहाँ हम अपनी बात कहते हैं, आप अपनी बात कहते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय जो है. हम और हम से शायद बहुत सारे लोग इस माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं कि भाई हमें फैमिली का प्रोवाइडर बनना है.
14: The males have to be the family providers, ना? Good morning, हम. हेलो,
17: गुड मॉर्निंग पूजा जी. पूजा जी कैसे हो?
14: बढ़िया जी, आप कैसे हो?
17: ठीक है. माय नेम इज राज, आई एम फ्रॉम द गार्डन आइलैंड ऑफ फिजी.
14: अरे वाह,
15: ओके.
17: और विजय भाई, मैं आपसे एक दो बार मिला हूँ, बट इज द फर्स्ट टाइम आई हैव कॉल्ड यू गाइस. एवरी मॉर्निंग सुनता हूँ जब मैं काम पर जाता हूँ. Mainly, Pujaji, I think the problem is I'll be the happiest person अगर मेरा wife मुझसे ज़्यादा कमाती है.
14: Oh, अच्छा, आपने भी message तो नहीं किया था ना थोड़ी देर पहले?
17: नहीं, message नहीं किया था. Pujaji, विजय जी, विजय भाई, क्यों मैं बोल रहा हूँ? आपको पता होगा कि फिजी में हमारे mum, they were always dependent on the dad for any money. उनके पास तो ना आमदनी था, दे वर डोमेस्टिक वाइफ. इट लुक्स यू नो, ये बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पास दो डॉटर है. आई गॉट टू डॉटर्स एंड आई टोल्ड द डॉटर्स, यू आई वांट यू टू अर्न मोर देन योर पार्टनर इन फ्यूचर. रीजन, देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस व्हाई, बिकॉज दे बिकम सेल्फ, उनको वो सेल्फ मिलता है रेस्पेक्ट.
15: जी,
17: As a male, I'm gonna say this, because when I got married, I was any more than my wife. But then we always think as a male we have ego, and we always think because we are earning, so we have all the rights to say what we want, and we all have all the rights to make all the decisions. But now when I'm in a field, I'm in a corporate world where I see the next colleague is a lady. A girl who is earning same as me, I feel very proud. The reason is that because now they have equal rights. Because hum jab equal rights ke baat karte hai, to why not they earn more than you or same as you?
14: Right.
17: Mujhme wo cheez nikar gaya. It's gone. So now it's gone. Wo mere hai nahi usme ki ab main sochta hu kaun zyada kamata hai, kya ego cheez hai nahi. वो जितना कमाती है वो खुद अपना अपना क्या क्या उसको पे करना है वो करती है, मुझे क्या करना है मैं करता हूँ. एंड ऑफ द डे, व्हाट एवर मनी इज लेफ्ट यू मैनेज इट, व्हाट एवर मनी इज लेफ्ट विद मी आई मैनेज इट. मुझे जो डिसीजन लेना है, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, और उसको जो डिसीजन लेना है, उसको जो करना है, वो अपना पैसे का खुद वो डिसाइड करेगी क्या करना है, उसका पैसा मेरा तो रोए. सो मतलब यही है, एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ यू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड योर प्रोग्रेस. एक घर लिया है उसका मॉर्गेज करना फॉर एग्जांपल, बोथ ऑफ यू कंट्रीब्यूट
14: राइट,
17: घर का एक्सपेंस में बोथ ऑफ यू कंट्रीब्यूट, बट एंड ऑफ द डे जो पैसा बचता है वो तुम्हारा है या उसका है
14: राइट.
17: सो इन दैट वे इन लास्ट 20 इयर्स ऑफ आवर मैरिज वी नेवर हैड एनी प्रॉब्लम. बट देन इट ओनली टॉक अबाउट व्हेन आई केम ओनली व्हेन वी केम बैक टू न्यूजीलैंड देन वी देन दैट हैपेंड. तो मेरा आंख ही खुला ना कि

0: mindset because that's what we have seen.
1: Right.
0: But it's good. Our kids are not seeing it. Our kids, they say, oh, mom is earning the same. She has all the freedom. She can buy whatever she wants. She doesn't have to ask me.
1: Right.
0: So end of the day, the kids are bought in a different way.
1: So
0: it's a different environment. So I'm happy. They won't be like that. And I'm telling you, and even males ka bhi ego chala gaya.
1: That's amazing.
0: Females can earn more than, can same or more than. So I think it's a good thing. I think kisi ko, male ko ego hota bhi hai, it's gonna go.
1: Aap
0: dekho ke next 10, 15 years mein, this is gonna change.
1: Thank you.
0: This is what I'm gonna say. Thank you very much.
1: Thank you. Aapke call ke liye. एंड बड़े अच्छे से इन्होंने अपनी बातें जो ये रखी ना सामने
2: या अपना खुद का एक्सपीरियंस जो है ये शेयर किया कि कैसे यू नो उनका भी माइंड सेट चेंज हुआ जो उन्होंने अपनी फैमिली में देखा जो हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारी माँ जो है ये यू नो हाउस मैनेजर होती थी पिता बाहर काम करते थे एंड ओवर टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड अभी तो आप किसी भी फैमिली में चल जाएंगे वो तो यही कहेंगे कि न्यूजीलैंड में भाई एक किसी एक के काम करने से जिंदगी नहीं चल
1: सकती outside and earning money, लेकिन आजकल घर की responsibilities, घर के काम, cooking, cleaning, घर को साफ रखना, बच्चों का देखभाल करना, it's basically not a particular gender's job anymore.
2: So अगर वो सारी चीजें बराबर बराबर चल रही हैं, तो अगर salary भी बराबर चल रही है, तो इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए.
1: And very rightly said कि it's not a particular gender's fault at it also कि अगर वो ऐसा feel करे, it's just because we have been seeing certain things in a certain way, we've been taught certain things in a certain way. और उनको समझना जानना कि कहाँ पे हम सही चीज़ों के लिए बदलाव कर सकते हैं इट टेक्स टाइम एंड वेरी ट्रू कि इन फ्यू ईयर्स शायद और अच्छे अच्छे बदलाव जो इस मामले में एक्सपीरियंस किए जाएंगे फिलहाल हम आपको इनवाइट कर रहे हैं टू सेंड योर मैसेजेस अबाउट द टॉपिक टुडे 5599 पर एंड विल डेफिनेटली लव टू हियर फ्रॉम यू कि आपके क्या राय है इस टॉपिक पर जो आप शेयर करना चाहते हैं 5599 हमारा टेक्स्ट प्लेटफॉर्म नंबर है
3: Hollywood's most wanted.
4: Gundi khad jao. Ya seedha andar aao.
5: Main laun apna A game.
3: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: शो विद विजय एंड पूजा।
1: डोंट माइंड, लेकिन आप दोनों की जोड़ी बड़ी क्यूट है।
2: तो ब्रेकफास्ट शो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, और फिलहाल थर्सडे 23rd of July, जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि एवरी थर्सडे को हम बातें करते हैं नन अदर देन गुरु किंडोला के साथ। सुबह सुबह हमारे साथ ये जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गुरु, कैसे हैं आप?
3: गुड मॉर्निंग पूजा, मैं बढ़िया, बताओ कैसे हो?
2: एकदम बढ़िया। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम टाइप्स कुछ है क्या?
3: थोड़ा।
2: अच्छा, यू आर ऑल्सो अंडर द वेदर नाउ। तो चलिए गुरु, उसके बारे में तो खैर आपसे बातें करेंगे, लेकिन आज आपके लिए एक थोड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन। नॉर्मली आई नो यू गॉट सम क्लाइंट एक्सपीरियंसेस एज वेल, उनके जो डिस्कशंस होते हैं ये भी आप लेकर आते हैं। व्हाट यू ऑफर योर सर्विसेज, जो है लॉजिक फाइनेंस क्या कुछ ऑफर करते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बट आज हम आपसे जानना चाहते हैं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी मॉर्गेजेस है, लाइक एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस है, अगर उनको अपने एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस पर रीफाइनेंसिंग करानी हो, तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या फिलहाल राइट नाउ बैंक्स कुछ ऐसे डील्स ऑफर कर रहे हैं दैट विल वर्क आउट फॉर देम?
3: पूजा, एग्जिस्टिंग मॉर्गेजेस को अगर रीफाइनेंस करना है तो ये डेफिनेटली इसमें दो इक्वेशंस होती हैं। तो इक्वेशंस का मतलब है कि बेसिकली अगर आपके पास आपका लोन चल रहा है 800,000 और आपकी घर की वैल्यू है 1,000,000, देन बैंक्स डू ऑफर कैशबैक व्हिच इज close to 1% cashback आपको offer करते हैं, and they also offer the good rates, जो special rates होते हैं, but for the limited time only, for another I would say next 3-4 weeks, there's one special bank जो आपको, अगर आपका 80% LVR नहीं है, अगर आपका loan का जो value है वो basically let's say कि loan आपका 900,000 है और घर की value 1,000,000 है, so that comes to 90% LVR. तो उस केस में banks आपको इतना cashback offer नहीं करते हैं, because they're saying that we're helping you out anyways by giving you this extra money in the refinance to 90% LVR. तो उस केस में अगर उस boat में हमारे कई customers, बहुत ज़्यादा customers होंगे जो चल रहे होंगे, तो banks are offering, अगर आप dollar to dollar refinance करते हो, that means कि अगर आप जितना loan आपका उस bank में चल रहा है, सेम टू सेम लोन आप इस बैंक में लेके आते हो, बट कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं उसके ऊपर मिलेगा, मतलब कोई टॉप अप नहीं मिलेगा या कुछ, आप कोई अपना क्रेडिट कार्ड कंसोलिडेट नहीं कर सकते या अपना कार लोन कंसोलिडेट नहीं कर सकते, यू कांट ऐड एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इनटू इट, एग्जैक्टली इट हैज टू बी द डॉलर टू डॉलर सेम, लाइक बिल्कुल मिरर टू मिरर होगा वो,
2: राइट?
3: तो अगर वो उसमें जाते हैं तो बैंक बोलता है कि अगर आपके पास, आप हाई LVR पे बैठे हुए, अगर आप 90 पे भी बैठे हो, तो देन we will still offer you 1% cashback, which is pretty big significant amount, especially for the people jo high LVR pe baithe hue hain. To is offer ye like ko karne ke liye bahut limited time ka basically hai, but again it is very easy as well, and easy in a way that if the bank sees ki yes aapki mortgage aap wahan pe already sahi time pe pay kar rahe the, आप अभी भी आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो सही है, एंड देन ये वी चेंज दिस अमाउंट फ्रॉम दिस बैंक टू दिस बैंक, तो बेसिकली दे विल ऑफर यू 1% कैशबैक ऑन द होल लोन अमाउंट।
2: ओके,
3: तो इसमें बेसिकली दिस इज फॉर द रीफाइनेंस, बट लेकिन अगर आपका फर्स्ट होम बायर, आप अगर आप मार्केट में हो और अभी भी आपके पास डिपॉजिट वही 10% है, और सम बैंक्स बोल रहे हैं कि नहीं हम आपको जो कैशबैक है वो तो मिनिमम आपको 5,000 ही देंगे, एज ए फर्स्ट टाइम बायर, उस केस में भी अगर आपकी लेंडिंग 800,000 से ऊपर है, इफ योर मॉर्गेज इज मोर देन 800,000, देन ऑल्सो वी कैन गो टू द बैंक एंड अप्लाई फॉर 1% कैशबैक टू गेट ऑन, इफ यू आर फर्स्ट टाइम बायर्स और आपका जो लोन अमाउंट है वो 800,000 से ऊपर है।
2: ओके, सो डेफिनेटली देर इज़ अ लॉट टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हाउस इज़ एन इन्वेस्टमेंट, अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होता है बेसिकली, क्योंकि इस घर में आपको अपनी ज़िंदगी जो ये बितानी होती है। सो इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन वे यू थिंक यू नीड द बेस्ट एडवाइस आउट देयर, टॉक टू गुरु किंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस। एंड गुरु, इफ बिफोर यू गो, आप बता दें लोगों को कि वो अगर आपसे बातें करना चाहते हैं, अपना पर्टिकुलर सिचुएशन डिस्कस करते हुए अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ऑप्शन, तो वो कैसे आपको कॉल कर सकते हैं?
3: पूजा, सिंपल लॉजिक लगाना है, लॉजिक फाइनेंस आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको, यू विल गेट माय डिटेल्स, Or you can call on 0800 Logic G, which is toll free number hai. 0800 Logic G, jab aap type karte ho, so it comes to me, which is 0800 564 424. 0800 564 424 is the number to get in touch with me.
2: Thank you so much, Guru, aapke samay ke liye and for all that information. Ab hum aapse baat karenge next week Thursday ko. Till then, take care and hope you feel better.
3: Thank you, Pooja. Thank you. Bye.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: Traffic. The food show's now on.
2: High of 15, cloudy all day today. A foggy start as well, and that has led to a couple of cancellations and delays for domestic flights into the city. Southern motorway starting to ease, 44 minutes Manukau to town. Slow from Takanini, heavy a lot of the way from Manukau. Northwestern, 35 minutes in from Massey. Slow from Te Aratu, heavy from the causeway to Grey Lynn. Northern, 34 from Constellation, heavy there to the bridge and at Silverdale.
1: Your foodie adventure awaits. Auckland Showgrounds. Tickets at foodshow.co.nz.
3: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes. Or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
6: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
7: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
6: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
7: पर डेवलपमेंट के पैसे
6: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
8: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
9: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
8: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Throwback.
10: तो चलिए अभी थ्रोबैक की बारी आई है, बट बिफोर आज का थ्रोबैक आपके नाम हम करें, वी हैव गॉट एन स्पेशल अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए टू बिकम अ विनर विद अस ऑन हम।
11: एग्जैक्टली, आज 23rd ऑफ जुलाई हो चुका है। अब देखिए, एक महीने और दो दिन बाकी रह गए हैं जब पहुंचेंगे ऑकलैंड आकर ग्लोबल सेंसेशन करण औजला और इनका जो पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर है, ये स्पार्क अरीना पहुंच जाएगा और उनके साथ होंगे इकी जो परफॉर्म करने वाले हैं लाइव ऑन स्टेज। और इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। टिकट्स और डिटेल्स के लिए hum.rova.nz या livenation.co.nz, याद रहे livenation.co.nz आप विजिट कर सकते हैं। और करण औजला जो है, आई थिंक लास्ट ईयर आए थे ना?
10: नहीं, मुझे लगता है 2024 में आए थे शायद।
11: ओके, हाँ। और ऑन अ वीक डे इनका जो कॉन्सर्ट है एट स्पार्क अरीना वाज टोटली सोल्ड आउट और अब ये वापस आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू बी एट स्पार्क अरीना एंड एंजॉय द नाइट विद करण औजला और इनका पी पॉप वर्ल्ड कल्चर वर्ल्ड टूर। अभी आपको हम एक डबल पास जीतने का मौका दे रहे हैं,
10: तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है टू बी द विनर। अगर आप इनके फैन हैं, इनको लाइव परफॉर्म करता हुआ आप देख सकते हैं दिस ईयर और अगले महीने, इनफैक्ट नॉट दिस ईयर बट अगले महीने 25th को, एग्जैक्टली वन ईयर टू डेज बाद, वन मंथ टू डेज बाद। यस, सो आपके पास ये मौका है। तो रिमेंबर, डिटेल्स अगर आपको चाहिए अगेन याद दिला दें, hum.rova.nz या livenation.co.nz से भी आप टिकट्स जो ये ले सकते हैं। लेकिन पास जीतने के लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी है, लिखना है के ए यानी करण औजला के नाम का शॉर्ट फॉर्म के ए लिखें, फिर उसके बाद में अपना नाम लिखें और 5599 पर हमारे पास भेज दें।
11: आपके पास अभी से लेकर 9 बजे तक का टाइम है, अराउंड 7 मिनट्स। के ए अपना नाम 5599 पर आप हमें भेजें।

0: accurate traffic.
1: Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
2: Cloudy all day today, high of 15. A foggy start which has impacted flights coming into the airport. Domestic services, couple of cancellations and delays so far. Motorways are easing. Northern 34 minutes in from Constellation Drive. Heavy patches from there to the bridge. Northwestern about 32 in from Massey. Slow from Te Aratu. Heavy spots from the Causeway. Southern 42 in from Manukau. Slow from Takanini. Heavy from Otahu.
1: Start strong on cold mornings with Century Batteries, New Zealand's trusted battery.
3: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
6: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
7: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजन आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: What if your next holiday wasn't just a holiday,
10: but the adventure everyone talks about?
9: Imagine chasing waterfalls,
10: wandering lush rice terraces,
9: catching unforgettable sunsets,
10: and relaxing at iconic beach clubs.
9: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
10: discovering incredible temples,
9: tasting world-famous street food.
10: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
11: Time check.
12: Good morning, इस समय एक मिनट हो रहा है 9:00।
11: Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Christopher Luxon slammed the door on Stuart Nash ahead of his resignation over comments condemned as sexist. The ex-minister has resigned as an NZ First candidate after describing a National MP who went on parental leave as lazy. The PM posted on social media saying Nash would never serve as a minister in his government and earlier lashed out at the remarks.
14: Every woman in the country, I think, would understand that those comments are sexist and they're grossly inappropriate.
13: A new members bill wants to stop supermarkets from banning edible food. The Green Party says they would have to partner with food rescue organisations. Spokesperson Kahu Carter says no one should be going hungry while perfectly good kai is thrown away. Auckland's getting international recognition as a top place to study. The city has been ranked the 26th best city in the world for students. More New Zealanders are picking up a book. A record number of votes were cast for the Whitcalls Top 100 this year. Spokesperson Joan McKenzie says there were also more local authors on the list.
15: The quality is probably greater than it's ever been, and I think readers are recognising that there's huge talent here in our own backyard and responding to a lot of the stories being told.
13: In sport to rugby with shift four, there's still plenty for Georgia Miller to achieve. The Black Ferns star has re-signed with New Zealand Rugby until 2029 with the LA Games and World Cup on the horizon.
16: For now, main goal is Olympics, but never going to rule out a Rugby World Cup. Would love to win one of those, so hopefully that's on the list.
13: A major gaffe from Miami Heat. They've mistakenly posted a YouTube video teasing the potential return of LeBron James to the NBA franchise before quickly deleting it.
3: Sports News.
11: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari koi branch nahi hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
12: तो आज का वेदर अपडेट राइट नाउ 8.7 डिग्रीज टेम्परेचर सुपर सिटी ऑकलैंड में है, हाई ऑफ 15 एक्सपेक्टेड, बाद में चलकर ओवरनाइट 8 डिग्रीज टेम्परेचर रहेगा और आज आइसोलेटेड लाइट शावर्स जो है ये रहेंगे इन द इवनिंग, सनसेट होगा 5:30 PM पर।
0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
10: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
18: What's going on? क्या बकते हो?
19: अरे कहना क्या चाहते हो?
12: आज का क्या बकते हो ए लिटरली क्या बकते हो स्टोरी है एंड इट्स वेरी वेरी वियर्ड. और यू नो ये चीज़ शायद सुनकर आपको भी थोड़ा सा शॉक लगेगा कि यार मतलब ये क्या बात हुई. लाइक सीरियसली ये सच में ऐसा है कि ऐसे ही लोग बना देते हैं जस्ट टू गेट सम व्यूज़ एंड कंटेंट ऑनलाइन. अपेरेंटली एक शख्स है फिलीपींस में, एक जगह है ज़िम्बोंगा डेल नॉर्थ मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम सेइंग इट करेक्टली. ये जगह जो है यहाँ की खबर वायरल हुई आफ्टर एक व्यक्ति के बारे में बातें सामने आई कि वो दरअसल एक चोर है.
20: हाँ.
12: जो लोगों के घरों में घुसता है चोरी करने के इरादे से. सो इनका लेकिन ये चोरी करने का इरादा सिर्फ इतना ही नहीं होता, वो क्या करते हैं वो वहाँ पर कुकिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, स्नान करते हैं और फिर चोरी कर कर वहाँ से जाते हैं.
20: कुकिंग करके, सफाई करके, नहा कर
12: फिर वहां से चोरी कर कर निकलते हैं.
20: इतना टाइम मिलता कैसे? खाली घर होता है,
12: शायद खाली घर होता है. और लाइक लोग नौकरी पे जा रहे होंगे ना, 8 घंटे की नौकरी कर कोई करता हो तो वो कहाँ पे 8 घंटे के अंदर अंदर थोड़े ना आएगा.
20: हाँ हाँ.
12: अब उसको टाइम लगेगा वापस आने में, तो तब तक ये इतना काम करके निकल लेते हैं. वेल अकॉर्डिंग टू द होम ओनर, जिन्होंने फिलीपींस के लोकल, फिलीपींस में जो लोकल न्यूज़ चैनल है उनको एक सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड किया विद द डिटेल्स आफ्टर, जब इन्होंने इसके बारे में जानकारी पुलिस को दी, लोकल पुलिस को दी, तो ये वीडियो जो है इंटरनेट पर वायरल हुआ और खबर भी वायरल हुई. ये घटना 7 जुलाई को मतलब इसी महीने हुई, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू द होम ओनर दे वर नॉट एट होम जब ये इंसिडेंट हुआ. और ये पूरा मामला एक सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ और कहा गया कि ये जो शख्स हैं, व्हेन दे रिटर्न्ड दे डिस्कवर्ड दैट द मैन हैड ओनली टेकन अ टोट बैग कैप और उसमें बेल्ट जो है ये था वो ये लेकर गए. लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब उन्होंने देखा कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने घर के अंदर उन्होंने एंट्री तो ली लेकिन वहाँ पर साफ सफाई की, कुकिंग किया, खाया, नहाया और फिर ये सामान लेकर चलते बने.
20: और अपने खुद के लिए खाना बनाया?
12: हाँ, तो किसके लिए बनाया?
20: मुझे लगा फैमिली के लिए बना कर गए.
12: नहीं, वो शायद बहुत नीट एंड टाइडी चोर है ना, तो खाना बनाने के बाद साफ सफाई करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो उन्होंने की, तो फिर वो नहा कर भी निकले. पर इस मामले में लाइक इट्स क्वाइट शॉकिंग, लाइक बिकॉज द पर्सन जिनके बारे में ये बात सामने आई है, जिनको सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर किया गया है, ये बताया गया है कि फैमिली ने जो पुलिस को बताया और ये जो शख्स है इनको आई थिंक आई मीन द फैमिली डिड नॉट कॉल द पुलिस सॉरी, और उस व्यक्ति के बारे में ऐसे ज़्यादा डिटेल्स वैसे आम नहीं हुए हैं. बट बाद में चलकर उन्होंने एक और एक घर में चोरी की.
20: हाँ.
12: तब जाकर वो अरेस्ट हुए. लेकिन ये जो फैमिली है जिनके सीसीटीवी फुटेज में या कैमरा में ये कैप्चर हुए थे, उन्होंने इनके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की, उन्होंने सिर्फ लोकल न्यूज़ चैनल को ये शेयर किया जब इनके दूसरे घर में चोरी करने के बाद, अरेस्ट होने के बाद बातें जो है ये सामने आई.
20: इंटरेस्टिंग.
12: बट आई डोंट नो कि व्हाई ही डिड दैट, लाइक क्यों घर में गए, खाना बना के खा के नहा के साफ सफाई करके क्यों चोरी की, वो मुझे समझ में नहीं आया.
20: भूख लगी होगी उनको.
12: इनफैक्ट यू नो दिस इज लाइक, हो सकता है मजबूरी भी हो, बिकॉज पैसे वगैरह तो कुछ नहीं चुराया उन्होंने, बस कैप और टोट बैग में बेल्ट वगैरह ये चुराया. बट आई रिमेम्बर सलमान खान हैड गिवन दिस इंटरव्यू एक जगह पर कहीं पर काफ़ी साल पहले, और वो इंटरव्यू उनका काफ़ी वायरल हुआ था कि उनके घर में एक बार एक चोर जो ये घुस गया.
20: हाँ.
12: और जब आधी रात को इनको थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि घर में कोई इंट्रूडर है, कोई चोर है या वट एवर, तो इन्होंने उनको पकड़ा अपने भाइयों के साथ मिलकर.
20: हाँ.
12: और जब चोर को पकड़ा तो पता ये चला कि वो चोरी करने के इरादे से तो आया था, लेकिन उनको उनकी मजबूरी है कि उनके बहुत मतलब पुअर है और पैसे नहीं है और भूख लगी थी, तो यू नो भूख की वजह से वो ये कदम उठा रहे थे, पहली बार चोरी करने निकले.
20: हाँ.
12: तो सलमान खान ने बताया कि उन्होंने उनको बैठकर अपने घर पर बिरयानी खिलाई, बिरयानी खिलाकर कुछ पैसे देकर वहाँ से फिर भेजे थे. लाइक लोग कभी कभार ऐसी हरकतें, आई एम नॉट सेइंग इट्स करेक्ट, आई एम नॉट सेइंग इट्स द राइट थिंग टू डू, बट लोग कभी कभार ऐसी हरकतें करते हैं व्हेन दे फाइंड इट एज द लास्ट रिसोर्ट टू सर्वाइव, यू नो.
20: एग्जैक्टली. तो क्या बकते हो में ऐसी स्टोरीज और भी हर दिन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं.

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: क्या हो रहे हैं हमारे आसपास कम्युनिटी में, इसकी जानकारियां हम आपको देते रहते हैं. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट 22nd और 23rd अगस्त को होगा बेकनहेड स्काउट्स हॉल में. ऑल स्किल लेवल प्लेयर्स आर वेलकम टू पार्टिसिपेट. रजिस्ट्रेशन के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन का फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं या प्रेसिडेंट पंकज मोंगा से बातें कर सकते हैं 02109085067 पर.
4: और इसके अलावा याद दिला दें, फिजी क्रिकेट फाउंडेशन न्यूजीलैंड आपके लिए लेकर आ रहे हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो जो कि होने जा रहा है इसी संडे को 26 जुलाई को. ये रहेगा ईवन इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साउथ रोड पापाटोरी में 10 AM से 3 PM, जहां पर आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग में ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, डायबिटीज, किडनीज, ECG, आई टेस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी. और आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑन हाउ टू केयर फॉर योर सेल्फ और केयर फॉर पीपल हु हैव डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डाइटिशियन एडवाइस वगैरह अगर आप रिक्वायर करते हैं, किडनी या हार्ट केयर चाहिए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या स्ट्रोक या एल्डर केयर, एलर्जी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी. बट नॉट जस्ट दैट, लेकिन प्रैक्टिकल लर्निंग में भी आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं. CPR देना, EpiPen का इस्तेमाल करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ईजी योगा पोजेज, ये सारी चीज़ों के साथ साथ यू कैन ऑल्सो लर्न हाउ टू लुक आफ्टर योर सेल्फ और योर लव्ड वंस, जिनको यू नो मेंटल हेल्थ या वेलबींग के लिए आप जो है अपनी अपना सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड करना चाहते हैं. या फिर इफ़ यू रिक्वायर एनी सच थिंग, तो सेल्फ केयर कैसे करते हैं, स्ट्रेस के मामले में कैसे मैनेज करते हैं, गैम्बलिंग या अल्कोहल एडिक्शन से कैसे यू नो बाहर आते हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे हेल्थ साइकोलॉजिस्ट्स और काउंसलिंग सर्विसेज जो है ये भी प्रोवाइड की जाएंगी दैट यू कैन डेफिनेटली चेक आउट. बट डोंट फॉरगेट, कैंसर इज़ आल्सो समथिंग दैट पीपल आर फेसिंग दीज डेज. और प्रोस्टेट कैंसर हो, बावल या फिर सर्वाइकल कैंसर, पेप्समिया, ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड स्क्रीनिंग, एली सिम्टम्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर इंफॉर्मेशन, इस पर ये सब कुछ आपको दिया जाएगा. एंड एज फार एज करियर इज कंसर्नड, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, विच माइट बी न्यूजीलैंड पुलिस में या फिर यू नो मैंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम यहाँ पर रहेगी जो आपको आगे भविष्य में अपने करियर के लिए क्या करना है, एडवाइस चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी. इन रिगार्ड्स विद एजुकेशन एंड करियर इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं. सो इट्स हैपनिंग दिस संडे और इस पर डिटेल्स आप शनिला महाराज से हासिल कर सकते हैं जो कि फिजी क्रिकेट फाउंडेशन न्यूजीलैंड जनरल सेक्रेटरी हैं. और इन्हें ईमेल कर सकते हैं आप shanilafgfnz@gmail.com पर.
3: श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हैंडरसन में अखंड रामायण पाठ रहेगा अगले शनिवार और रविवार को, फेस्टो 2nd अगस्त को. शनिवार की सुबह 7 बजे रोट पूजा, उसके बाद आरती, 9:45 बजे से रामायण पाठ आरंभ होगा जो रविवार की सुबह 10 बजे तक चलेगा, जिसके बाद हवन और आरती. प्रोग्राम के दौरान आपके लिए भोजन का भी प्रबंध रहेगा, तो आप जाकर इसमें जरूर हिस्सा ले सकते हैं.
4: ऑकलैंड रामायण संस्था ट्रस्ट की ओर से मासिक रामायण कथा ये फ्राइडे यानी कि नेक्स्ट फ्राइडे 31st जुलाई को रहेगा 7:50 PM से एट अयरिस्टी कम्युनिटी हॉल 53 Skipton Street मैंगरी, इसके लिए आप पहुंच सकते हैं.
3: और इसके अलावा याद रखें, उस्ताद राहत फतेह अली खान इसी शनिवार को रहेंगे और ये रहेंगे द ट्रस्ट अरीना में, जहां पर इनके जो टाइमलेस हिट्स, कव्वालियां, सब कुछ आप एंजॉय कर सकेंगे. जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शंस की ये पेशकश, जिसके लिए लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स जो हैं ये अवेलेबल हैं. dryticketsdotcom आप विजिट कर सकते हैं टिकट्स लेने के लिए.
4: प्लस डोंट फॉरगेट कि होने जा रहा है न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से श्री राम लीला, एक बहुत ही खूबसूरत डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं 8th of August. बाकी डिटेल्स आने वाले दिनों में जरूर शेयर किए जाएंगे, जिसके लिए आप हमारे साथ ही बने रह सकते हैं. पर अगर आपको यहाँ पर अपना स्टॉल वगैरह जो है ये रखना है, तो डिटेल्स के लिए, इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक को 02117954 पर जरूर कॉल कर सकते हैं. आपके आसपास आपकी कम्युनिटी में भी अगर कुछ इवेंट्स हो रहे हैं फॉर द पीपल एंड आप चाहते हैं कि उसकी डिटेल्स हम अन्य लोगों तक पहुंचाएं, तो आप हमारे पास इवेंट रिलेटेड डिटेल्स और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है ये ईमेल कर दीजिएगा buzz@humfm.com पर, buzz@humfm.com पर.
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा.
5: हे देखो आ गए.
0: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
6: रुस्बी, टिकट्स बुक हो गए.
7: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्वे, ओनली ऑन हम।
9: My mate Sam hurt his shoulder at basketball. He got sorted with a rehab plan and was doing his exercises, but he started feeling a bit down. So me and the boys made sure to visit him, and he helped with some coaching, so he still felt like part of the team. It meant he stayed active and on top of the injury. Then when he recovered, he was back to his awesome self.
10: If you've got a sprain or strain, staying connected to friends, whānau and things you love doing can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
11: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
12: क्यों, क्या हुआ?
11: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
13: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
0: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं. It's 23 minutes after 9 for now. Thursday 23rd of July की ये सुबह. आप सभी के नाम हम कर रहे हैं और ये है What's Going On. Now, What's Going On में ना केवल you know, हमारे आसपास हमारी कम्युनिटी की बातें हम करते हैं लेकिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी भर भर कर हम लेकर आते हैं. जैसे भी जहाँ भी मौका हमें मिलता रहे वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं और इस बार भी ऐसा ही एक मौका आपके नाम हम करना चाहते हैं. बहुत ही बढ़िया मौका है क्योंकि अगर आपको हम कहें कि आप गरबा नाइट जो है ये सेलिब्रेट कर सके एक बहुत ही टैलेंटेड कमाल के आर्टिस्ट के साथ और यहाँ ऑकलैंड में एक अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक डांस एंड सेलिब्रेशन का हिस्सा बने तो आई डोंट थिंक सो यू'ड से नो इजंट इट.
3: ऑब्वियसली क्योंकि ये मौका ही ऐसा है. गरबा कौन नहीं पसंद करता भाई. थाउजेंड्स ऑफ पीपल टर्न अप जब भी ये गरबा जो है ये होता है. तो इस बार अब अगले हफ्ते ये होने जा रहे हैं शनिवार को महात्मा गांधी सेंटर में और गरबा नाइट विद राज गढ़वी लोटस प्रोडक्शंस श्री इवेंट्स न्यूजीलैंड विनय मेहता और प्रांची ग्रुप इसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं. वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर गरबा विद सेंसेशनल राज गढ़वी. और अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो टिकट्स जो बहुत तेजी से बिक रहे हैं आप ले लें eventstickets.co.nz. याद रहे eventstickets.co.nz आप विजिट करें और टिकट्स ले लें. कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए स्वप्निल से आप जरूर बातें कर सकते हैं 02243947 4736. स्वप्निल का नंबर है 02243947 4736.
2: और साथ ही साथ आपको हम ये भी याद दिला दें कि अभी आपको हम मौका देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ टिकट्स जो है ये जीते. एक डबल पास है जो आपके नाम हम करना चाहते हैं और अगर ये आपको चाहिए फॉर गरबा नाइट विद राज गढ़वी इसके लिए आपको बस RG यानी राज गढ़वी इनके नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखना है, RG लिखना है, अपना नाम लिखना है और 5599% कर देना है. आपके पास 8 मिनटों का समय है अपनी एंट्री सेंड करने के लिए एंड आई थिंक इट्स मोर देन इनफ टाइम जहाँ पर आप अपनी एंट्रीज हमारे पास भेज सकते हैं अगर आप इस गरबा नाइट को एंजॉय करना चाहते हैं डबल पासेस जीतते हुए हमारे साथ.
3: तो शुरू हो जाए अपनी एंट्रीज हमारे पास भेजें. थोड़ी देर बाद देखेंगे आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और आपके नामों को ड्रॉ में भी हम शामिल करेंगे.
2: सो रिमेंबर RG स्पेस योर नेम 5599 पर आपको सेंड करना है.
0: बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड
4: गुंडी खड़ा हो या सीधा अंदर आओ
5: मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: ब्रॉट टू यू बाय इनडेलिबल होम्स. Build your dreams.

0: and Pooja.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस, एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक, योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट। एट अश्योर वन, नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड, नथिंग इज मिस्ड, नथिंग फॉरगॉटन, बिकॉज़ द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस, द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल। अश्योर वन, प्लान फॉर टुमारो टुडे। कॉल 0800-77 हीरा। नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड। ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस।
4: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
5: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
4: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
5: पर डेवलपमेंट के पैसे
4: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
6: Being fussy is just knowing what you want. So, be more fussy.
7: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches, because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love, delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough, serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
8: Maddie didn't think she needed a DVS system.
9: I've got a heat pump.
8: That should do, but it didn't do it. Did it, Maddie?
9: No, my windows wouldn't stop crying condensation.
8: So Maddie got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making her rooms drier, healthier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
11: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
12: What's going on?
13: तो चलिए अब डेली राउंडअप की बारी आई है और आज सुबह से अगर देखा जाए क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यूजीलैंड के खबरों के मामलों में सामने आई है, एंड इस पर कुछ डिटेल्स आपको देते हुए कहा गया है कि न्यूजीलैंड में जो एल्डरली ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर फाइंडिंग इट इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू कोप विद राइजिंग प्राइसेस फॉर एसेंशियल्स, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी, काउंसिल रेट्स और ग्रोसरीज जैसी चीज़ें शामिल हैं। बहुतों का ये कहना है कि दे हैव टू मेक टफ डिसीजंस अबाउट हाउ टू स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम। एट द सेम टाइम कंज्यूमर न्यूजीलैंड का कहना है कि हाउस होल्ड्स शुड इवेंचुअली सी लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बिकॉज जो होलसेल पावर प्राइसेस है दे हैव फॉलन, बट दोज सेविंग्स हैव नॉट येट रीच्ड द कंज्यूमर्स, वो एक अलग बात है।
14: उसके अलावा इस सप्ताह अंत बारिश और बहुत ठंडी साउथ वेस्टर्लीज जो है ये देश की तरफ बढ़ रही हैं, स्पेशली इन द वीकेंड देश के कई इलाकों पर इसका असर पड़ेगा। मेट सर्विस का कहना है कि एक ट्रफ जो है ये न्यूजीलैंड के ईस्टर्न इलाकों की ओर बढ़ रहा है एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट द लोअर साउथ आइलैंड कल बाद में चलकर विद स्नो पॉसिबल ऑन हिल्स एंड रेंजेस और लो कॉन्फिडेंस ऑफ वार्निंग जो है रेन के लिए दिया गया है ग्रे बुला और तररुआ रेंज तरना की साथ में सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड हाई कंट्री के लिए। और उसके अलावा अगर देखें तो ऑकलैंड और नॉर्थलैंड के लिए लो कॉन्फिडेंस है और दैट साउथ लो वेस्टर्लीज जो हैं यहाँ पर बहुत तेज़ हो पाएंगी। रविवार को एक लो प्रेशर का इलाका जिसके साथ एक फ्रंट है ये अक्रॉस नॉर्थ आइलैंड दिन में होकर गुजरेगा और उन मेट सर्विस का कहना है उसके साथ हाई प्रेशर का एक इलाका ये भी बिल्ड हो रहा है। एक्सटेंडेड फोरकास्ट में कहा गया है कल के लिए नॉर्थ आइलैंड में बारिश होगी नॉर्थ और वेस्ट में और हैवी फॉल्स पॉसिबल हैं थंडरस्टॉर्म्स स्कैटर्ड रेन और साउथ आइलैंड में पीरियड्स ऑफ रेन। शनिवार को ऑल ओवर न्यूजीलैंड देयर विल बी शावर्स सम हैवी ग्रेजुअली ईजिंग। संडे को नॉर्थ आइलैंड में शावर्स एंड हैवी इन द वेस्ट क्लियरिंग लेटर मेनली फाइन फॉर द साउथ आइलैंड।
13: वैसे खबर आ रही है आरएनजेड पर एक रिपोर्ट जो है ये सामने आई अकॉर्डिंग टू विच द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज़ अपडेटेड इट्स ट्रेवल एडवाइस और इन्होंने कहा है कि बिकॉज ऑफ द फाइटिंग और द वो इन द मिडल ईस्ट ये और ख़राब हो सकता है। ऑफिशियल्स आर कंसर्नड कि जो कॉन्फ्लिक्ट इन्वॉल्विंग ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स इट कुड एस्केलेट जिसका मतलब है सीरियस हो सकता है आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स एंड ट्रेड है MFAT इनका कहना है कि ये सिचुएशन अनप्रडिक्टेबल है और इसकी वजह से मिलिट्री अटैक्स एंड रिटेलिएशन जो है ये कंटिन्यू हो रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीजन। देयर कुड बी फ्लाइट कैंसिलेशंस या डिलेज, एयर स्पेस क्लोजर्स हो सकते हैं, बॉर्डर क्लोजर्स हो सकते हैं एंड पीपल बिकमिंग स्ट्रैंडेड व्हाइल ट्रैवलिंग कुड बी एन इशू। सो विच कंट्रीज आर अफेक्टेड बाय दिस? न्यूजीलैंड ने तो लेवल 3 ट्रैवल एडवाइजरी फिलहाल जारी कर दिया है विच मीन्स नॉन एसेंशियल ट्रैवल to listed countries Bahrain, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates jo hai UAE in countries ke liye ye non essential travel na kare logo se mang ki ja rahi hai and this does not mean ki aap travel nahi kar sakte hain in countries mein lekin government ka kehna hai ki wo strongly recommend karte hain against it unless and until ye bahut zaruri hai aapke liye aur इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि न्यूजीलैंडर्स दैट आर करंटली इन द अफेक्टेड कंट्रीज शुड फॉलो लोकल न्यूज़ लिसन टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज स्टे अवेयर ऑफ एनी सिक्योरिटी वार्निंग्स एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्लाइट्स और बॉर्डर्स टू क्लोज एट शॉर्ट नोटिस। सो द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट इज एडवाइजिंग पीपल नॉट टू ट्रेवल अनलेस एंड अंटिल वो एसेंशियल ना हो आपके लिए टू सेवरल ईस्ट मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और साथ ही साथ जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे ये आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे।
14: हवीक में कल शाम एक एग्रेवेटेड रॉबरी के संबंध में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये सारा मामला फेसबुक मार्केट प्लेस के एक ट्रांजेक्शन से शुरू हुआ जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया यूनियन रोड लगभग 3:45 के वक्त जहां पर एक व्यक्ति जो है ये फायर आर्म लिए हुए था और पुलिस के वहां पहुंचने से कुछ पहले ही वो पैदल भाग निकला लेकिन कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी ने पिक किया। विक्टिम को कोई चोट चपेट नहीं आई है और ईगल हेलीकॉप्टर की मदद से पुलिस ने व्हीकल को ग्लेन एनिस में स्पॉट किया और 19 साल के दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन पर चार्जेस लगाना अभी बाकी है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस से अगर कुछ आप खरीद रहे हैं मेक श्योर यू आर वेरी श्योर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन ट्रांजैक्शंस और उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से चेक कर ले एंड मेक श्योर आप अकेले नहीं जा रहे हों।

0: आज की दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, आप गौर से सुने। पहली बात कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, है ना?
1: दो ही है क्या?
0: दुनिया में सिर्फ दिल ही है।
1: ओ, दिल ही है
0: जो बिना आराम किए काम करता है। दिमाग हाँ, भी आराम कर लेता है
1: जब आप सोते हो तब,
0: हाँ,
1: बट आपका दिल तो चलता रहता है। जिस दिन दिल ने आराम किया उस दिन आपका हमेशा के लिए आराम हो जाएगा,
0: आपका काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ दिल ही है जो बिना आराम किए काम करता है, इसीलिए उसे खुश रखो, चाहे वो अपना हो या अपनों का।
1: वेरी ट्रू।
0: और दूसरी बात, अपने राज को अपने तक ही रखा करो। यहाँ दोस्तों के भी दोस्त होते हैं।
1: यस, जो हम अक्सर भूल जाते हैं ना
0: जी।
1: उम्मीद है कि आज इन बातों से आपको याद रहेगा और आप भी सही फैसले करेंगे अपने लिए, और यू नो, जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए ऐसा कुछ काम करे कि भविष्य में चलकर आपको भी बेहतर से बेहतरीन इंसान बनने का मौका जो है ये मिले। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कल एक बार फिर ठीक सुबह 6 पर। द ब्रेकफास्ट शो विद विजय पूजा लेकर हम आपके साथ जुड़ जाएंगे ज़रूर।

नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू भाई. ये फॉग में आना बहुत बहुत बड़ा काम है एंड इट वॉज अ चैलेंज, क्योंकि विजिबिलिटी कितनी पुअर होती है. ऐसे में आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो काफ़ी हद तक आपको फोकस्ड रखना पड़ता है. और जब ये समय आता है कि जब ठंड का मौसम होता है और ऐसे में फॉग होती है, फिर बाद में बारिश पड़ती है ना, तो समझो सोने पे सुहागा. वैसे घड़ी का हर पल काम आता है अगर उसे सही से जिया जाए. और अगर हम कहते हैं उसे सही से जिया जाए, तो जो भी हमारे चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं उनको हमें फेस तो करना ही पड़ता है, और वो भी मुस्कुरा के फेस करेंगे, तो समझिए कि ये सफ़र आपका बहुत जल्दी अच्छे से मुस्कुराते हुए निकल जाएगा. नहीं तो एक सफ़र बन जाएगा आपके लिए, किस तरह से आप उसको सफ़र करते हैं. माय टाइम लेकर मैं कशिका हाजिर हूँ. 12 बजे तक आपका मेरा साथ बना रहेगा और कशिश फूड्स के सौजन्य से आपके लिए 10 से 12 बजे के बीच में मुमकिन हो जाता है. और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं जहाँ पर हम कह सकते हैं दैट वो आपके लिए काम ज़रूर आता है. अब ऐसे में जब मैं बारिशों के बारे में बात कर ही रही थी, तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्लाउडी स्काई का क्या मतलब होता है. सनलाइट एक्सपोजर, आपका स्लीप, आपका मूड क्या होता है, क्या नहीं होता. चलो कोई बात नहीं, इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगी, लेकिन इन गानों के ठीक बाद. वैसे आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, बताइए. और फिर शाउट आउट देने का वक्त भी आ रहा है. स्टे ट्यून, कीप हमिंग विद मी कशिका टिल मिडडे.

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: ऐसा तो होता ही है ना कि हमें पता है कि अभी जो पूरे हफ्ते भर में क्या होने वाला है, ठंड बढ़ने वाली है, फॉग भी होगा, सब कुछ होगा। और ये एक्चुअली अगर ये मॉनसून है, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि सनलाइट स्टार्व्ड बॉडीज जो हैं विटामिन डी को ढूंढ रहे होते हैं, धूप को ढूंढ रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि कभी कभी आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, कभी आपके मूड सही नहीं होते, और कभी कभी बारिश इतनी तेज़ पड़ने लगती है कि एकदम कचरा हो जाता है, एकदम से कि यार क्या इतने अच्छे से तैयार होकर गए और फिर ये बारिश में छप छप छप छप करते हुए। तो ऐसे में बॉडी को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्रॉपर सनलाइट, चाहे वो मॉनसून सीज़न हो या कुछ भी हो, तो एक विटामिन डी की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर आप इंडोर्स मोस्टली रहते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर विटामिन डी की कमी तो होगी ही होगी। कई हफ्ते ऐसे गुजर जाते हैं जहाँ पे आसमान पर बादल रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेफिशिएंसी आपको ज़्यादा हो रही है। जिनकी विटामिन डी ऑलरेडी कम होती है उनको सबसे ज़्यादा रिस्क होती है इस बात की। एल्डरली लोग जिनकी जो स्किन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो पूरी फुल बॉडी क्लोथिंग पहनते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, उनके साथ क्या होता है, या फिर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज, ऑबेस इंडिविजुअल जो होते हैं, वो हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। अब कहते ये हैं कि ये नेचुरल सनलाइट जो होती है ये आपके इंटरनल क्लॉक को रेगुलेट करती है, आपकी बॉडी को रेगुलेट करती है, और किस तरह आपके हार्मोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी नींद, आपके अलर्टनेस, आपके मूड्स के लिए। तो ये प्रोलॉन्ग जो कंडीशंस होती हैं जैसे कि क्लाउड्स हैं, कम सनशाइन है, इससे क्या होता है मेलाटोनिन लेवल्स जो होते हैं ये आपके डेफिनेटली अफेक्ट होने लग जाते हैं, यानी कि आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कम होने लग जाते हैं। और ऐसे में आपके मूड्स, जब आप सोकर उठ रहे होते हैं आपको स्लगिश फीलिंग होने लग जाती है। तो ये जो पर्टिकुलर सीज़न होता है इसमें कहते हैं कि आवर्स तो कम हो जाते हैं, सन कम होता है, मतलब दिन छोटे हो जाते हैं, और ऐसे में जो डेलाइट आवर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो एक स्लीप और वेक का जो एक साइकिल होता है ना, कभी कभी हिंडर करने लग जाता है, लोग लेस एनर्जेटिक फील करते हैं, लेस एक्टिव फील करते हैं। व्हाई? बिकॉज उनकी जो बॉडी क्लॉक होती है वो ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही, आपको प्रॉपर सनलाइट जो नहीं मिल पा रही है। थोड़ी देर के लिए अगर बाहर आप निकल जाते हैं मॉर्निंग लाइट में, तो सोचिए कि आप फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं पूरे दिन भर के लिए। एक चीज़ जो है कि एक विटामिन डी के सप्लीमेंट्स जो होता है, थोड़ा सा मैं म्यूज़िक चला दूँ, थोड़ा ये बात हैवी है ना। ओके तो विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं बिना मेडिकल सपोर्ट के आप बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये रिस्क फैक्टर लेके आते हैं और ये सिम्टम्स जो है बॉडी में थकावट, बॉडी में पेन्स बढ़ा भी देते हैं। तो जब तक आपका जीपी आपको नहीं बताए तब तक आप डेफिनेटली, अगर आप मान लीजिए कोई डेफिशिएंसी है तो आपको डॉक्टर खुद ही बताएंगे कि हाँ ले लीजिए, ब्लड टेस्ट करने के बाद इन सप्लीमेंट्स को अपने आप मत खाइए डेफिनेटली। एक एडवांटेज जो है सनलाइट की वो ये होती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग आपकी डाइट में आप रिच फूड इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एग्स है, ऑयली फिश है, फोर्टिफाइड मिल्क है, मशरूम्स हैं, इस तरह के जो फूड है जिनमें प्रोटीन्स और कैल्शियम होती है वो आप अगर इंटेक उनका बढ़ा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक रेगुलर स्लीप पैटर्न, फिजिकल एक्सरसाइज, और जो है आप स्क्रीन्स को बिल्कुल मत देखिए। तो मैं हमेशा से कहती हूँ सोने से पहले डोंट लुक एट द स्क्रीन। मेक श्योर आपके घर में आप लोग अपनी विंडोज़ वगैरह भी खोलें, सनलाइट और जो रोशनी है उसको घर के अंदर आने दें। ये छोटी छोटी बातें हैं। ऑफिस शाउट आउट कमिंग अप नेक्स्ट।
0: माय टाइम विद कशिका।
2: आजकल तो चल रहा है बहुत न्यूज़ में, अभी तो नहीं।
3: मार्च 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
4: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए
5: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
4: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
5: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
4: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
6: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
7: हेलो एवरीबॉडी।
3: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
8: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
3: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
9: ओह, इट्स एन एड ब्रेक।
7: Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
9: Macca's weekly deals are back. That means more of your favourites for less every week. Jump on the Macca's app and check out this week's offer. Macca's weekly deals, only on the app. T's and C's apply. Ba-da-ba-ba-ba.
10: अपने सपनों की दुनिया बनाने, we all came here and we work hard to protect them. But when something goes wrong, like a cancer diagnosis, an accident or a heart attack, your insurance claims only succeed if your application was done right from the start. At AssureOne, Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured, nothing is missed, nothing forgotten. Because the right advisor knows the application process, the policy wording, and knows exactly what it takes for a claim to be successful. AssureOne, plan for tomorrow today. Call 0800-77-HEETA. North Hanvale Advisory Limited, trading as AssureOne, is a licensed financial advisor.
11: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the redeveloped Waitemata station, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends in a Kingsland restaurant! In just 13 minutes. Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
12: Looking to escape the winter chill? Qantas is now flying direct from Auckland to the Gold Coast. Enjoy meals, drinks, in-flight entertainment, Wi-Fi, and at least 30 kilos of checked baggage included in the fare when you fly with Qantas. Plus, Qantas is the only airline offering a business cabin on this route. From sun-soaked beaches and luxury retreats to waterfront dining and lush hinterland escapes, the Gold Coast is waiting. Book now at Qantas.com or with your preferred travel agent. Terms and conditions apply.
13: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
5: Office shout out.
1: चलिए ऑफिस शॉर्ट आउट पे पहुंच चुके हैं और सीधे चले जाते हैं विलिंगटन, जहां से हमारा साथ एश आप निभा रहे हैं. वेरी कोल्ड फॉगी समय के साथ सोने पे सुहागा करते हुए चिलिंग वाली वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग काशिका जी. थैंक यू सो मच, आपका टेक्स्ट आया मुझे बहुत अच्छा लगा. सो यस, दिस मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस जब आप लोग टेक्स्ट करते हैं, आप लोग कुछ बताते हैं. वैसे एक बात तो मुझे भी आपको बतानी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है. राहत फतेह अली खान ऑकलैंड में पधार रहे हैं और ये परसों परफॉर्म करेंगे एट द ट्रस्ट अरीना. Hardly 300 tickets left. तो अगर आपने अभी तक टिकट नहीं खरीदी तो dryTickets.com के जरिए आप ये टिकट्स खरीद सकते हैं. JK Star Productions, Goat Live, Dreams Entertainment, Simran Productions and Shahzada Productions आपके लिए ये एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं जो एकदम मैजिकल होने वाला है. इनकी कव्वालियाँ, इनकी पावरफुल आवाज आपकी दिल को जरूर लुभा लेगी. तो जल्दी जाइए और टिकट बुक कीजिए.
0: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

ऐसा होता है कि महंगाई के जमाने में बहुत कुछ होता है, लेकिन पापा टोयोटो इंटरमीडिएट स्कूल को जो है फोर्स करना पड़ा अपना स्कूल कैंप इस साल कैंसिल करने के लिए, क्योंकि बहुत कम फैमिलीज जो थी उन्होंने रजिस्टर किया डिस्पाइट द प्राइस, जहां 750 स्टूडेंट्स जो थे उनको जाना था, ओनली 160 जो थे उन्होंने कंफर्म किया. तो ये इन्फ्लेशन जो है ये हाईएस्ट लेवल पर ऑफ कोर्स पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, ग्रोसरी ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते चले जा रहे हैं. तो ये एक और स्कूल है जहाँ पे वो फंड रेजिंग नहीं करना चाह रहे इस बारे में. और यू नो पापा टोयोटो इंटरमीडिएट स्कूल की जो वक्ता है उन्होंने यही बताया कि ये बिकॉज ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऐसा हो चुका है. उन्होंने कहा कि ये कैंप है एवरी टू ईयर्स ये करते हैं और ये कैंप में जाते हैं अराउंड $240 जो है यू नो ये चार्ज कर रहे हैं, जबकि $350 ये चार्ज करते हैं फॉर द कैंप, बट पेरेंट्स जस्ट कुड नॉट अफोर्ड इट एंड दे आर स्ट्रगलिंग. So this is very important, you know, at the moment to know that, yes, एक यही स्कूल नहीं है, शायद और भी जगह ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन एक ही स्कूल सामने निकल कर आया है बताते हुए कि भाई पूरा कैंप जो हर साल ये करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं.

एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.

0: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers. Buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
1: Ready for a new look inside? Start with the Rosen Test Pot, then bring your room to life. 50% off test pots, 20% off interior paints. Shop online or in store. Ends 19 August. Rosen, the paint the professionals use. T's and C's apply.
2: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
3: ड्रीम डायरी में एक ऐसा सवाल आया है जो आई एम वेरी श्योर कई लोगों को आ चुका होगा ऐसा सपना और इन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंस इफ़ वी यू नो सी गॉड इन अ ड्रीम तो यही कह सकते हैं सीइंग गॉड इन अ ड्रीम एक्चुअली काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है और एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस माना जाता है अक्रॉस डिफरेंट ट्रेडिशंस कहा जाता है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है एक डिवाइन गाइडेंस है और रीअश्योरेंस है During the tough times, अगर आपके कोई tough times चल रहे हैं तो psychologically आप एक process कर रहे हैं अंदर एक guilt जो आपके अंदर हो या एक clarity ढूंढ रहे हैं और एक ongoing search आपकी चल रही है mind में definitely ये होता है especially in yogic traditions and some religions ये dream जो है एक highly auspicious माना जाता है और ये symbolize करता है removal of obstacles Divine blessings and ये progress करते हैं towards जो आपकी कोई hardships आ रही होती हैं और in Christianity and Islam ये dream of God कहते हैं या hearing a divine voice is often interpreted कि कहा जाता है एक intentional communication होती है जो offer करते हैं protection, comfort और एक moral एक spiritual growth में आपकी मदद करते हैं in either ways if you see any religion if you see It is the same thing. It is a positive, a profound experience. और ये एक spiritual awakening है, एक divine guidance भी है, एक assurance है, एक reassurance है मैं कह सकती हूँ towards the time when you feel that हाँ ये मेरे लिए बहुत ही challenging time हो सकता है. तो अपने choices को evaluate कीजिए, अपने values को समझिए and stay true to yourself. That is very very important. तो स्पेशली कभी कभी होता है डोंट फोर्स योर सेल्फ वेट पेशेंटली कि अच्छा चलो मेरे सपने में ऊपर वाले ने आके दर्शन दिए हैं तो आपको लगता है कि कुछ आपको लग रहा है वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ही इज़ गॉट अ प्लान ऑलरेडी इन माइंड फॉर यू ओके तो वी कॉन्ट डू मच ऑल वी कैन डू इज़ कि हम इस चीज़ को अपने लिए बेहतरीन बना सकते हैं ठीक है So this is what is coming from me क्योंकि मुझे ये कई बार experience होता है तो मुझे immediately ये relate मैं कर पाई

वैसे पट पट आपको जाना है क्योंकि गरबा नाइट विद राज गढ़वी जो है ये अगले सैटरडे के दिन महात्मा गांधी सेंटर में होने वाली है। eventsticket.co.nz के जरिए आप ये जाके टिकट खरीद सकते हैं। और अगर डबल पास जीतना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ आप यहाँ पे 5599 पे टेक्स्ट कीजिए RG 5599 पे, आपका नाम हम ड्रॉ में ऐड कर देंगे फॉर द डबल पास टिकट। अब RG लिखना है आपको, कहाँ से सुन रहे हैं बस आपको अपने नाम के साथ लिखकर हम तक पहुंचा देना है। मैं आपका नाम ड्रॉ में डेफिनेटली ऐड करना चाहती हूं क्योंकि मैं भी चाहती हूं कि ये लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता प्रांशी ग्रुप आपके लिए गरबा नाइट राज गढ़वी के साथ लेकर आने वाले हैं। तो याद रहे आपको RG लिखना है, राज गढ़वी का शॉर्ट फॉर्म, कहाँ से सुन रहे हैं अपना नाम लिखना है, हम तक आपको पहुँचा देना है। और डिस्को में जाने के बजाय गरबा में ज़रूर जाएं, ऐसे ऑप्शंस आपको बस आने ही वाले क्योंकि गरबा का सीज़न दरअसल शुरू हो ही चुका है।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: It feels like 10 degrees right now. वैसे आज का अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक पहुंच जाएगा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पर गिर जाएगा। हल्की हवाओं के साथ साथ बादल और बारिश ये आपको जरूर नजर आने वाले हैं। 5:30 बजे सनसेट भी बताया जा रहा है।
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil tham ke baithiye, kyunki aa rahi
2: hai. My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू पीपल, हाउ आर यू। कशिश फूड्स के सौजन्य से मैं कशिका आपका साथ निभा रही हूँ। वैसे आपको बता देती हूँ, अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। वैसे 5599 पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। सुबह के समय आपके लिए विजय एंड पूजा भी आ जाते हैं जो आपको विश भी करते हैं। साथ में एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि घड़ी का हर पल काम ज़रूर आता है अगर उसे सही से जिया जाए। तो आप क्या अपने समय को ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या अपने सही का ठीक से उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बस यही कुछ छोटी बहुत भाग दौड़ होती है जिसमें हम आपका साथ ज़रूर निभाते हैं। बाय द वे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी और भी होती हैं जिसमें हम आपका साथ निभाते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें अभी लेकर आने वाली हूँ, एक तो कॉन्टेस्ट भी लेकर आने वाली हूँ और उन लोगों को थैंक यू भी करना चाहती हूँ जो हमारा साथ अभी भी निभा रहे हैं इन माय टाइम कशिश फूड्स के सौजन्य से। ऑलराइट, नाउ 6-word story, इसका भी टाइम आने वाला है। तो कोई 5599 पे टेक्स्ट करो अगर कोई 6-word story है, मैं हम के इंस्टा पे ज़रूर उसे शेयर करना चाहूँगी।

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: Frankly, the bitch.

0: Eat better, live better.
1: Eat better, live better. और एक बात बता देती हूँ, कई बार घर में ना जब वीकेंड आने लगता है तो बहुत चैलेंजेस होते हैं. में से एक चैलेंज होता है क्लीनिंग का. अब ये क्लीनिंग का चैलेंज जो होता है वो हमारे स्टेनलेस स्टील के जो सिंक्स होते हैं वहाँ पे कभी वाटर स्पॉट्स रह जाते हैं और ये रिफ्यूज़ करते हैं निकल जाना. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इनके साथ. ये स्टेनलेस स्टील की जो रेपुटेशन होती है ना, ऑफकोर्स इट्स लाइक अ ब्लेसिंग. सॉरी आई हैड टू स्नीज, आई हैड टू पुट द स्पीकर दिस माइक ऑफ. ओके, ये हवा है, ये मौसम है ना, ऐसा होता है कभी कभी. क्या होता है, हार्ड वाटर मिनरल होता है, ड्राइड ऑन फूड होता है और ये आपके वो स्पॉट्स जो होते हैं रह जाते हैं. कुछ फैंसी प्रोडक्ट्स को आप लेकर आते हैं और उसको क्लीन करने की कोशिश करते हैं. तो एक चीज़ बता देती हूँ कि कभी भी सिंक में जब आप क्लीनिंग करते हैं, आई नो यू ऑल नो दैट, बट इट्स इम्पॉर्टेंट. कई लोग नहीं कर पाते, कई लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं. व्हाट आई डू इज़ आई स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द सिंक और फिर उसको मैं नीचे तक क्लीन करना फिर शुरू करती हूँ. थोड़ा सा स्प्रे मार के उसके बाद हॉट वाटर से उसको क्लीन करने की कोशिश करती हूँ. जो डेब्री होता है वो साइड्स पे से निकलना शुरू हो जाता है और फिर डैम्प कपड़े के साथ उसको बाद में मैं पोंछ देती हूँ. ना अगर आपका सिंक वेट है और आपका डेब्री लूज है, कई बार बेकिंग सोडा बहुत अच्छा काम आता है. ऐसे में इस सिंक को आप हल्का सा गीला कर लेते हैं जब, तो बेकिंग सोडा जो है ये जेंटल रहता है, एब्रेसिव रहता है और साथ साथ ये जो खाना स्टक हो जाता है ना नाली के आसपास, ये काफ़ी हद तक क्लीन कर देता है. तो ये आप स्टेनलेस स्टील के स्क्रैच के बिना, वो ना वो जो आते हैं ना घिसने के लिए, उससे अच्छा ये होता है कि आप इसका बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें. और कभी कभी ये बेकिंग सोडा को आप यूज़ करने के बाद साइड पे रख दीजिए अलग से. एक इसको अपने आप मैजिक पाउडर समझ लीजिएगा. हर पार्ट ऑफ द सिंक कैन बी यूज्ड विद दैट. ओके, एक बार बेकिंग सोडा जो है एब्जॉर्ब हो गया आपके सिंक में, फिर आपको उसको स्क्रब करना है. अनफॉर्चुनेटली पीपल जो है कई बार सिंक को ठीक से करेक्टली स्क्रब नहीं करते. द राइट वे प्रॉबेबली टू डू वुड बी कि एक स्टेनलेस स्टील का सिंक है आपका, कुछ फेंट लाइंस आपको दिख रही हैं और वो हमेशा आपको लगता है वो वहीं रहती हैं, ये लाइंस आपके अगेंस्ट जाती हैं, तो छोटा सा कोई ब्रश होता है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. नॉन अब्रेसिव स्पॉन्च, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ओल्ड टूथब्रश बहुत अच्छा काम देता है जहाँ टाइट स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे एरियाज़ में जाने के लिए. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे पता है हम लोग क्या करते हैं, स्टील वूल लेते हैं. इवन आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग, वायर के ब्रशेज लेते हैं. ये बहुत अब्रेसिव होते हैं और आपके स्टेनलेस स्टील के जो सिंक्स होते हैं उनको स्पॉइल करने में बहुत कामयाब रहते हैं. तो ये मेटल पार्टिकल्स कभी कभी स्टक हो जाते हैं, उसके बाद उस एरिया में रस्टिंग शुरू हो जाती है. दैट्स द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विच हैपन्स. अच्छा, स्क्रब कर लिया आपने पूरा सिंक अच्छी तरह से. अगर आपके घर में वाइट विनेगर है, एप्पल साइडर, ये भी काम कर सकता है. यू विल नोटिस कि वो फिज ज़रूर करता है. इट मीन्स दैट जो बेकिंग सोडा और विनेगर होता है वो रिएक्ट कर रहा होता है और जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है. तो कोशिश कीजिए कि बबलिंग जब स्टॉप हो जाए उसके बाद वार्म वाटर से आप इसको अच्छी तरह रिंस कर दीजिए. एक स्टेप जो है जो नॉन नेगोशिएबल है, हमेशा करा करें आप, सिंक को धोने के बाद उसे गीला मत छोड़ दें. एक माइक्रोफाइबर के साथ डेफिनेटली इसको क्लीन ज़रूर करें. कुछ लोग कहेंगे क्या बोल रही हो काशिका, तुम इतनी सारी चीज़ें हमें पता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप हमेशा रह जाता है और ये प्रोसेस जो है लगभग 15 से 20 मिनट में आपका पूरा हो जाता है. एंड प्रैक्टिकली इट कॉस्ट यू नथिंग. घर में ये चीज़ें हमारी होती ज़रूर है, लेकिन हम इन्हें किस तरह से यूज़ करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन अस. सिक्स वर्ड स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट. कोई तैयार है तो 5599 पे टेक्स्ट करो.
2: हर दिन की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते. आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने. हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं. हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने.
0: हम
3: Own the game, own the gear. It's sale time at Rebel Sport. Score an epic 20 to 40% off all clothing. There's 40% off Nike and Adidas bags, plus at least 20% off store wide. Here in Sunday at Rebel Sport. See online for T's and C's.
4: The Club Plus Smart Shopping Buddies are here to help you shop smarter at New World, Pack and Save and Foursquare. Go to clubplus.co.nz to meet yours.
5: For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel the best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, Ghee Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz.
6: ओकलेन तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477.
7: Right now, in midwinter, with ills, chills, the short week and school holidays kicking in, many of NZ Blood's regular donors are out of the game. So if you can, please make time to give blood this week. The team would really appreciate your donation. Come off the bench and make a real impact. Your donation of blood could help save up to 3 lives. Bloody legend. Give blood, save lives. Book now at nzblood.co.nz.
5: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
0: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
1: Wow, I think जितनी भी daughters हैं, ये इससे relate कर पाएंगी. And आपने अपना नाम लिखकर नहीं भेजा, but आपने लिखा है, I am my mother's daughter eternally. I am my mother's daughter eternally. Okay, your name is Mary. Thank you so much. I am my mother's daughter eternally. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Done. Absolutely right. चलो जी, आपकी story अभी हमारे Facebook के पेज पे नहीं, Insta पे जाने वाली है. And I will make sure that मैं आपका नाम ज़रूर लूँ. अच्छा, एक चीज़ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि करण औजला जब आते हैं ना, हंगामा क्रिएट कर देते हैं. पी पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर लेकर आने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्सर्ट्स ऑफ द ईयर. 25 अगस्त को स्पार्क अरीना में ये इक्की के साथ आने वाले हैं, जो इनके लिए स्पेशल एक परफॉर्मेंस देंगे. क्या डबल पास जीतना चाहेंगे आप? अच्छा, क्या करना है, आप टेक्स्ट कीजिए 5599 पे करण औजला का KA, आपका कीवर्ड है. करण औजला का कौन सा गाना आपको पसंद है, बस ये लिख डालिए और आपका नाम मैं ड्रॉ में ऐड कर दूंगी. ऑफकोर्स अपना नाम लिखना मत भूलना. ये टिकट्स आपको hum.rova.nz पे एंड livenation.co.nz पे ज़रूर मिल सकते हैं. ऑलराइट, स्पार्क अरीना 25th ऑफ अगस्त, रिमेंबर, काउंटडाउन बिगिंस.
0: टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

इतना ब्यूटीफुल सा ट्रैक था, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि कभी कभी हम सोचने लगते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं कि क्या ये हमारा हो सकता है. तो भाई एक मैसिव लोटो का जो है 35 मिलियन का पावरबॉल प्राइज हैज स्टिल नॉट बीन वन एंड इट्स रोल्ड ओवर टू 40 मिलियन फॉर सैटरडेज ड्रॉ. अब ये विनिंग नंबर्स लास्ट नाइट के थे 3, 18, 25, 26, 30 एंड 34. बोनस बॉल वॉज 37 एंड पावर बॉल वॉज 10. तो अब ये ग्रैंड प्राइज अनक्लेम हो चुका है. थ्री प्लेयर्स जो थे इनको कुछ अमाउंट अच्छा खासा मिला है विथ फर्स्ट डिविजन, और फोर्थ वन जो है दे स्कूप्ड 400,000. तो ये क्या आपने अभी तक लोटो का टिकट लिया? अभी ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ इसको करो, बट कभी कभी ये लक होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कब आपका साथ दे देता है.

0: time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: Adbhut.
3: अद्भुत तो आप लोग हैं जितने लोग 5599 पे तो नहीं buzz@hamfm.com पे हमें आप ईमेल करते हैं और आपकी कोई कम्युनिटी की न्यूज़ होती है तो हम बहुत खुशी खुशी उसे शेयर करने की कोशिश करते हैं. न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन कम्युनिटी को इनवाइट करना चाहता है फॉर द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट. ये 22nd and 23rd of August के दिन बकिनहेड स्काउट्स हॉल में होने वाला है और All are welcome to participate in this. इसके Facebook के पेज पर आप पहुंच सकते हैं, नहीं तो NZCA के प्रेसिडेंट पंकज मोगा से संपर्क कर सकते हैं 021-090-85067 पर. फिजी गिरमिट फाउंडेशन एंड एंस फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रिमेशन आपके लिए हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो 26 जुलाई आने वाले संडे के दिन करने वाले हैं A1 इवेंट सेंटर में सुबह 10 से लेकर 3 बजे तक. इट्स फ्री फॉर एवरीवन. प्रैक्टिकल लर्निंग, मेंटल वेलबींग, स्क्रीनिंग, यू नो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग है कई जगह और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन करियर बच्चों के लिए फन एंड फ्रॉलिक बहुत कुछ होने वाला है. डेफिनेटली आप भाग इसमें ले सकते हैं. श्री राम मंदिर 11 बर्क स्ट्रीट हैंडरसन आप अखंड रामायण पाठ में 1st and 2nd August के दिन पहुंच सकते हैं. 7 बजे सुबह सैटरडे के दिन होगा फर्स्ट को और संडे को सुबह 10 बजे से और महाप्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है. 8 अगस्त को रामलीला जो है श्री राम के लिए एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस इसका आयोजन किया जा रहा है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं. ऑकलैंड रामायण संस्था की मासिक रामायण कथा 31 जुलाई को 7:15 बजे जगह तो पता ही होगी आपको ARST कम्युनिटी हॉल 53 स्किप्टन स्ट्रीट मैंगरी में आप पहुंच सकते हैं. रवीन कुमार ट्रस्टी जो हैं ARST के ये आपको आमंत्रण दे रहे हैं.
0: Ladies and gentlemen,
2: unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
4: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे.
2: Unfiltered with Sandy and Rusby on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
5: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए. वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
6: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes, the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
7: Looking for that unforgettable holiday in paradise? Fiji Airways Global Sale is on now. Fly to Fiji from just $325 one way. Or enjoy a stopover in Fiji on your way to epic destinations in Asia, like Japan from $675 one way, Hong Kong from $709, or Singapore from $715. Book now at fijiairways.com or call your travel agent.
8: Does your vacuum cleaner suck? Lawnmower not making the cut? Well, book your Auckland Council inorganic collection today and we could recycle it tomorrow. We collect items on your property and do everything we can to minimise landfill waste. To find out what's accepted, where to place it and how to book your collection, search Auckland Council Inorganics online. Tāmaki Turiki, all together Auckland.
9: Enjoy maximum storage for minimum stress. IKEA family members get 15% off PAX wardrobes for a limited time. Join IKEA family today. It's free. Offer ends 10th August. Terms and conditions apply.
10: IKEA.
11: Thinking about your next phone? You could already be closer than you think. Open your One Wallet to see how many phone dollars you have. One phone dollar equals $1 off your next interest-free phone. How wonderful. One New Zealand.
0: Mid-morning massage.
12: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better month at Farmers, you can help.
1: When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support, and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.

बिफोर आई रीच देयर, मैं ध्रुवी, अनुराधा, सुबीर आपका थैंक यू करना चाहती हूँ. 8389 एंड आई थिंक शालिनी आपका नाम है. थैंक यू सो मच. 311-3159 एंड 2108 आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. नाउ कमिंग टू रीयूज मी, अगर हम करते हैं तो ग्लास जार्स, ये बॉटल्स आती हैं कांच की, जो आजकल वापस फिर से फैशन में आ चुकी हैं बिकॉज प्लास्टिक का कम हम इस्तेमाल करते हैं. तो अगर इन्हें आप क्लीन कर लेते हैं, एम्प्टी यू नो जैम की बॉटल्स हैं, कोई भी बॉटल्स अगर कांच की हैं आपके पास, पहले अच्छी तरह इन्हें क्लीन कर लीजिएगा और फिर इसमें आप जैसे कभी कुछ सोक करना चाहते हैं तो आप ओट्स को या किसी चीज़ को, जैसे बादाम है, भिगो के आपने डब्बियों में डाल के रख दिया या कुछ, या फिर ओट्स को कभी कभी यू नो क्योंकि दे नीड टाइम टू सोक, तो ओवरनाइट सोक करने के लिए ये एम्प्टी जैम की बॉटल्स काफ़ी हद तक काम आ सकती हैं. कुछ कभी कभी किसी के पास लूज चेंज होती है, कुछ क्राफ्ट के सप्लाइज होते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास ये तरीके होते हैं जो आप कांच के जो बर्तन होते हैं कुछ होता है उसमें आप इन चीज़ों को यू नो इनका बॉटल्स का ख़ास तौर पर इस्तेमाल आप ज़रूर कर सकते हैं. दिल से, दिल तक.

0: time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
2: Throwback.
3: Throwback की तरफ तो मैं पहुंच रही हूँ, but a reminder from your reminder clock, Commonwealth के games, Glasgow, Scotland में आज न्यूजीलैंड टाइम के अनुसार शुरू होने वाला है, लेकिन ओपनिंग सेरेमनी हमारे न्यूजीलैंड के जितने लोग हैं ये देख सकते हैं from 6 a.m. our time. तो कुछ हाइलाइट्स हैं जो आई थिंक आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि मेन्स सिंगल जो है ये लॉन बोल्स जो है ये होने वाला है राउंड वन वर्सेस टोंगा, और लगता है शैनन मैकलरॉय को एक जेन्युइन मेडल का चांस भी है. तो वी विल ऑल प्रे फॉर न्यूजीलैंड, जहाँ पर हमें पता है कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे मेडल के चांसेस हमारे पास अब काफ़ी हद तक हो चुके हैं. तो चलो इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार कशिका का नमस्कार. आज का दिन कहलाता है गुरुवार, वीरवार, बृहस्पतिवार. मेरी मुलाकात आपसे हो कब होगी? कल होगी ना, शुक्रवार कहलाएगा वो दिन. तो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, मैं आपका साथ निभाने आ जाऊंगी मैं TGIF डे में. लेकिन अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में सभी को याद रखिएगा. केतन कमिंग अप नेक्स्ट विद यू. दिस इज कशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम द हम स्टूडियोज़.

0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere.
2: अच्छा, Hunua west में.
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manukau. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.